उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं, हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल, अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं है। ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न कर, मालिक हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख, हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर, तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा, तू रहमान है, तू रहीम है, हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: On the main line from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मधुबन रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

tune in to the Wannabox 101 FM. Mix FM, yeah. 101 FM.

0: Righto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, and of course, assalamu alaikum, main ahle Pakistan, janab se mukhatib aapka host, aapka dost DJ Sahil signing in. Aur janab, kaise hain tamam log? Yakeenan theek thaak hain, wane fit hain, maze mein hain, khoob enjoy kare apni zindagi ko. Well, today it's 12th of September 2026 and the time is 8:24 on the dial. Mujhe kehte hain Sahil aur mere sath maujood ek aur awaaz
1: jise kehte hain Rebecca Abdul. Assalamu alaikum Sahil, good morning.
0: मैंने कहा आपकी ओपनिंग भी मैं कर दूं जी. गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: अल्हम्दुलिल्लाह. सुबह आज, अब आज की नहीं सुनेंगी मुझसे, आज मैंने आज क्या क्या मुसीबतें झेली हैं नहीं सुननी आपने, तो बता
1: दो शख्स आदमी. मैम प्लीज मेरा शो बता. मैम अगर खुद कह देना, मैं बोलूंगी देखिए साहिल मैम मुझे फोर्स करनी है कि अब आप साहिल के साथ शो नहीं कर सकती. मैम आप इशारा तो समझ आया करो ना
0: भाई. आज

0: सारी
1: आज मैं सुबह उठा, पहले तो मैं कल सुबह उठा कल की तो सुने ना,
0: मैं परसों भी उठी थी सो के इंटरेस्टिंग
1: मैं सुबह उठा, मैं रेडियो आया, रेडियो से वापस गया घर, फिर मुझे फॉरन कॉल आ गई कि आप जल्दी से ऑफिस आ जाएं क्योंकि हमारी सेलिब्रेशन है, उसकी ट्रॉफीज आई हुई थी,
0: अच्छा
1: उसमें से फाइनलाइज कर दें तो हम उसको फिर आगे भिजवा देते हैं प्रिंटिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट नीचे उतरा, उतरा नीचे तो पूरी बाइक का ऑयल निकल गया।
0: यल्ला इस आदमी के पास बैठते शो करते हुए हफ्ता इतवार ये मुझे भी कह रहे थे, तुम कहती हो पेट खराब हो जाता है, मैंने कहा मुझे स्ट्रेस से
1: मेरी तो चीजें खराब हो
0: जाती हैं, मैं यहां पर आ रही होती मुझे स्ट्रेस से ना अल्लाह माफ
1: खराब हो जाती हैं। अच्छा फिर उसके बाद मैं इसी तरह पेट का, फिर मैंने बाइकिया वाला पकड़ा, इतना बड़ा मैं भी गए पिंडोरे वाले ना वहां से मैं उतरा पैदल गया दूसरी तरफ, वो ऊपर से आया अकेला,
0: वो छोड़े उसकी बाइक ठीक है।
1: अब ये मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैं क्यों पूछूं भाई, मैं अल्लाह माफ करे,
0: मैं क्यों भाई आपकी वजह से किसी पर मुसीबत आई और आप उसको पूछेंगे भी नहीं।
1: अच्छा फिर उसके बाद जो है ये क्या हो जाता है बीच में आवाज,
0: ये इसका थोड़ा सा आई थिंक हेडफोन का प्रॉब्लम है, आप कैरी ऑन।
1: कॉलेज रोड से तो नहीं खरीदे तुम लोगों ने। अच्छा फिर उसके बाद मैं वापस आया उसी तरह बाइक पे आगे आया तो बच्चों को लेने का टाइम हो गया, फिर वो लेने गया उनको वापस से मैं आया, मैं बाइक उस दौरान बीच में सेट करा चुका था, वापस आया तो अब बाहर ऑयल सारा पड़ा था, मैंने कहा जी मैं ऑयल साफ कर लेता हूँ ना, मैंने पीछे पाइप वगैरह लगा कर सारा पानी खींचने की कोशिश की, साफ कर रहा था, पीछे से पाइप खुल गया, पाइप खुला तो जहाँ खुला वहाँ सारा पानी जमा हो गया। वो मैंने साफ करने के लिए जब मैं अंदर बना तो मुझे जहन में नहीं रहा कि मैंने कैप पहनी हुई है, तो मुझे सामने वाली ना शेड में दीवार नजर नहीं आई, मैंने दौड़ करके सर मार लिया अपना जाके वहां पे, को 15 मिनट बाहर गली में बैठा रहा कि मुझे क्या ही हो गया आज ये इसके मेरा
0: मैं एक्चुअली पता क्या सोची, सॉरी
1: मुझे पता है कि हाँ मुझे मालूम है दोस्त, पर बेफिक्र हो जाए, इसीलिए मैं तो मैं अब कभी कॉल नहीं करूंगा क्योंकि क्या मुझे शक होना शुरू हो गया अपने ऊपर भी कि किसी के लिए मुसीबत का भाई सा बन जाओ।
0: बच्चा अपना काम लिख रहा है, काम लिखते
1: हुए मैंने नई बाइक ली, इनको बता दिया मैंने,
0: उसने आपको देखा है, कुछ भी हो जाए ये अगर आपको कभी कहे कि मुझे ड्रॉप कर दो या पिक कर दो, को बाइक चल नहीं रहा, बाइक हाँ। बंद हो गया, जाम हो गया, टायर पत्थर हो गए,
1: नहीं बच्चे इसकी बातों में नहीं आनी। अच्छा
0: मेरी बातों में नहीं आना, आगे देखो तुम जिम्मेदार, तुम ये ना कहना बड़ी बहन होने के नाते मैंने
1: फिर उसके बाद मैं घर बैठ गया, फिर मैंने
0: घर वाले ठीक है
1: हाँ, और फिर मैं जब घर पहुंचा तो मना की आदत है, मना बच्चा ना स्कूल से फौरन शावर लेते हैं ना नहाने के लिए जाते हैं, मैंने कहा तुम लोग हट जाओ, मुझे जाने तो पहले
0: मुझे शावर करने दो,
1: मुझे जाने तो पहले मैं जाऊंगा, तो पापा आप ही चले जाएं, जो आपकी हालत लग रही है ना आप ही चले जाएं, लेकिन बेचारे बच्चे बड़े परेशान हुए, देखे हमारे बाप को क्या हो गया। फिर इसके बाद मेरी बेगम आई, उनको मैंने सारी रुदात सुनाई, वो अपनी सुनाना शुरू हो गई, मैंने कहा मैं ऐसे अपनी क्या सुनाऊं,
0: तुम मुझसे ज्यादा दुखी हो, बैठो
1: बैठो। बहरहाल ये सारी सिचुएशन रही, आज सुबह उठा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी ना सामने लगवा दें, सारा ऑयल साफ, मेरे पे मेहरबानी कर रहे थे,
0: मालिक चढ़ा रहे थे बेचारे,
1: हम करवा देते हैं कोई मसला नहीं, मैं पता है कि परेशानी आ जाती है हो जाता है, हम साफ करवाएंगे, हमारी काम वाली आएगी भी कर देंगी। मैंने कहा जी मैं भी मैं ऊपर नीचे, मैंने चाबी ना मिले गाड़ी दी,
0: बस कर दो अल्लाह का वास्ता, मैंने भी आज का पूरा शो कल का भी करना है, मेरा इरादा खत्म हो जाएगा।
1: मेरी गाड़ी की चाबी मेरी गाड़ी में फंसी हुई, पिछले डेढ़ हफ्ते से गाड़ी खड़ी हुई, इसमें चाबी फंसी, हमें पता ही नहीं
0: अंदर रखी हुई है।
1: तो ये है सिनेरियो, लीड्स एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड डीजे साहिल ऑन योर एफएम डायल।
0: शो कीजिएगा, मैं ठंडा पानी पी लूं, प्लीज आई रियली नीड ठंडा बर्फ पानी,
1: ठंडा बर्फ पानी। अच्छा मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैम को पिक्चर भेजनी है, तो पिक्चर्स कहाँ से भेजें, मैम के पास काफी सारी वैसे तस्वीरें हमारी हैं, इसमें से एक भेज देते हैं, हम ये वाली भेज देते हैं, अब भी नहीं कह रहा हूँ क्या नाम है तुम्हारा लड़की, रिबेका, हमने काफी अच्छे से पिक्चर्स ही बनाए हुए, अब हम बनाएंगे,
0: आज हम दोनों ने ब्लैक पहना हुआ है ना तो अच्छा आएगा पिक्चर,
1: मैं तो तैयार होकर आज तो मैं वेस्ट सूट के आ गया, तुम्हें पता है मैं कपड़े कितने अच्छे पहनता हूँ,
0: नहीं वो तो खैर है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आज आप तैयार होकर नहीं आया है,
1: कपड़े कितने अच्छे पहनते हैं, वाकई हमेशा मैंने देखा एक से ही पहनते, कभी अपने अपने आपको अपना इमेज खराब नहीं होने
0: देते, नहीं आपने कहा है ना देखो मैं कितना अच्छा तैयार होकर आता हूँ, आज मैं उठ के आ गया, तो मैं ये सोच रही थी, मैं तो शौक में चली गई कि आप बाकी दिनों में तैयार हो कैसे, मुझे पता नहीं चला,
1: देखें इस तरह की बातें ऑन एयर ना करें, अभी रात बानो की कॉल आ जाएगी,
0: किसकी
1: रात बानो की, की पाया
0: इतनी प्यारी है कैसे,
1: की पा के आए ने सुहेल यूसुफ, तू की पाए,
0: मैं कल अपने घर में भी बात कर रही थी ना, तो मैंने कहा वो हमारी इतनी प्यारी लिस्नर कॉल करती हैं, तो वो ना सुहेल के बारे में बात कर रही थी, अब मेरे पेरेंट्स को लगा अब सुहेल किसी का जिक्र करेंगे, मैंने सारी बात कर दी तो वो बात, अच्छा क्योंकि मेरे लिए तो वो अनकॉन्शियसली मैं बात करती हूँ, सारी बात होगी तो वो कहते हैं अच्छा तो ये सुहेल कौन था, मैंने कहा है साहिल, साहिल सुहेल है, मैंने कहा हाँ सुहेल यूसुफ है, कहती अच्छा हमें नहीं पता था. सो दैट्स ऑल जनाब, आप कॉल करेंगे अपना फीडबैक हमसे शेयर करेंगे और हम इस वक्त एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं. ट्रैक के बाद वापस आते हैं, फिर बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे. आप हमारा साथ देंगे, टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा ओपनिंग का एक हिस्सा हमने मुकम्मल किया, एक हिस्सा हम शेयर जरूर करेंगे.
2: तीसरा करके हम निकलेंगे,
0: तीसरा करके तो घर जाएंगे.
1: जी सो हियर वी गो, द ट्रैक इज दरबदर. सुना आपने नाम मालूम अफराद का?
0: नो,
1: नहीं सुना.
0: नो,
1: अच्छा गाना. Here we go.

Tune into the one above 101 FM. Mix FM, yeah. 101 FM.

0: वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मौसम ने जो है वो अंगड़ाई ले ली है, एक और तरह की
1: ने ली अंगड़ाई।
0: कितना अच्छा होता जा रहा है मौसम माशाल्लाह से, और लाइक एवरी सिंगल टाइम आई प्रे गॉड प्लीज मौसम अच्छा हो जाए। ये गर्मी साहिल कोई तूफानी गर्मी थी, तूफानी गर्मी थी।
1: देखिए मेरे साथ क्या क्या कल हुआ, और मैं वही कहता मेरी जिंदगी के वर्स्ट डे में से एक दिन था ये, जो मैंने इतना बुरा गुजारा। कसम से मैं लिटरली हो जाता है कि अब मैं तंग पड़ता हूँ ना, मेरे आंसू भी आ जाते हैं कि अल्लाह मैं इतना ज्यादा हो गया, बस अल्लाह जी कम से कम मौसम तो अच्छा करे। मौसम अच्छा हो ना तो सुकून आ जाता।
0: अच्छा बाकी
1: मैं बिल्कुल भी ना, मैं जून बर्दाश्त कर लूंगा, लू बर्दाश्त कर लूंगा, मुझसे जुलाई अगस्त सितंबर बर्दाश्त नहीं होता। ये वाली जो मसले ना उसमें फिर क्या होता है, मेरे साथ बड़े मसले होते हैं, वो बताने वाले मसले नहीं है। मतलब मैं कपड़े पहन रहा हूँ तो मैं कपड़ों में फंस जाता हूँ यार, मेरी मुझे अजीब चीज है, मुझे मजा नहीं आता इन चीजों का।
0: साहिल पता है ये
1: मुझे नहीं अच्छा लगता, गंदा लगता है। हाँ। मतलब ये
0: और अभी आज तो वैसे आप क्योंकि तैयार होकर नहीं आए ना, अगर आप तैयार हो
1: क्या आता तो आप देखें जरा।
0: मैं कहती हूँ आपके लश्कों से ये जो फ्यूज बत्तियां है हमारे, कल मैं लाइव गई और मुझे रियलाइज हुआ एक तो मैंने चिट्टा जोड़ा पहना हुआ, क्योंकि व्हाइट में आप वैसे भी थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क लगता है। और मैं ये सोचूं मतलब आई रिग्रेट फॉर माई लाइफ, आई लाइक मैं क्यों चली गई लाइफ, हुआ क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा फैसला, मैंने क्यों किसकी इजाजत से कहा है, क्या निकाल रहे हैं?
1: अच्छा नहीं ऐसे ही मैंने कहा किसी को दिखाए ना भाई। जी तो क्या कह रही थी आप?
0: क्यूट।
1: हाँ जी ऐसे गिर ओहो ऐसे रहो।
0: साहिल ने मुझे उन्हें दिखाई, ये सेम मेरा है जिसपे मैं अभी अपना सारा वीडियोस नहीं बना रही।
1: यार खोलना नहीं आता मुझे यार,
0: इधर दिखाए मैं हूँ ना, इधर ना करें,
1: ये प्रेस करें ना।
0: अरे यूं नहीं नहीं नहीं नहीं
1: प्रेस करेंगे ये।
0: अच्छा ये प्रेसिंग वाला है, ओके
1: ये है
0: नहीं मेरे पास
1: ये। और ये बहुत ऊपर तक चला जाता
0: है साहिल, बहुत अच्छा किया। कितने में आया
1: यार ये? मैंने
0: नकली नकली प्राइस बता दे, बेशक
1: है
0: नकली नकली, बेशक बता।
1: नहीं नहीं मेरे ख्याल से बहुत सस्ती लिए, मेरे ख्याल से 1300 की शायद मैंने लिए ये। और ये मजे की बात है, मैं आपको बताऊं कि ये मैं गया दुबई प्लाजा में तो वहां ये 2600 की मिल रही थी, और कमर्शियल मार्केट में बंदा था उसके पास ये एक ही पड़ी हुई थी, शायद उसको बेचारे को नहीं पता था। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला 1500, तो मैंने 1200 तक पे मैं आया, 1000 1100 1200, लेकिन नहीं कहता नहीं भजन 1300 मुझे वारा नहीं करा। मैंने कहा दे दो भाई, मैं इतना खुश था, मैंने कहा ये आगे मुझे 2600 रुपए की बता।
0: मेरे पास जो ये सेम ऐसी सेट है ना, सेम ये वाली है जो, लेकिन वो मेरा स्टूडियो जो है वो मैंने उसमें रखी हुई है। एक मेरे पास ट्राइपॉड है, उसके साथ मोबाइल की भी मैंने सारी एक्सेसरीज ली हुई है, और एक पतले वाला ये रखा हुआ है। तो मैं एटलीस्ट एक वक्त में दो मोबाइल फोन है आपको पता है मेरे पास, मैं दोनों के साथ शूट करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी ठीक है कंफर्टेबल है, वेरी गुड।
1: तो इसमें ये कि आप इसको ऐसे रख कर ना,
0: नहीं इधर डू दिस, मुझे पता था आपको पता नहीं है।
1: यहाँ भी लग जाती है ना दूसरी
0: See,
1: वाली।
0: अब आप इसको जब फिक्स करेंगे,
1: हाँ
0: ये,
1: हाँ जी
0: ये तो सारा आपको
1: जी जी
0: होगा, लेकिन ये याद रखें ये यहाँ से
1: यहाँ से
0: यहाँ पर लूज हो जाएगा, फिर आप इसको रोक देंगे, पक्का कर देंगे
1: ठीक।
0: मेरे वाले का ये जो इसको ब्लूटूथ के साथ करने वो यहाँ पर लगी, एक्चुअली वो ए क्वालिटी का है ना चाइना से,
1: ये डबल ए क्वालिटी,
0: डबल ए क्वालिटी वहीं से आया है, वहां से यहाँ पर आया है, मैं वहां से डायरेक्ट आई।
1: ये लेकर आया था कि यार वो तुम वीडियो बनाती हो तुम अच्छी तरीके से, मुझे हाथ में पकड़ के बनानी पड़ी होती, तो फिर मुझे होता था कि यार ये गुर्बत कब खत्म करूंगा।
0: बेस्ट बाइंग, बेस्ट बाइंग है। आप कहीं चले जाओ आपके बैग में कितनी चीजें होती हैं, उसमें ये एक बेचारा पड़ा हुआ तो उसमें क्या होगा।
1: मेरे बैग में तो पता नहीं क्या है, क्या है?
0: इस बेशक बॉक्स को रिमूव कर दीजिएगा, हाँ बैग आपको हैवी लगे तो ये जो बैग शॉपर था आपने उसके अंदर डाल देना, इतना कंफर्टेबल रहेंगे आप। वो व्हाइट वाला पता नहीं अब है, मेरी असल में नीज खेलती है उसके साथ,
1: सही सही काश तुम लाइव। अच्छा ओके फाइन, तो मेरे पास आज जो है वो न्यू ट्राइपॉड है, सो

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि किसी भी इलाके में लोड शेडिंग को 2 घंटे तक महदूद रखने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। हुकूमत ने आज से आइंदा 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 61वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बर्मिंगम में पाकिस्तान के खिलाफ 3रे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के 4थे रोज इंग्लैंड आज अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Alright जी, welcome back once again, आपसे F101, मैं हूँ साहिल, बिल्कुल तैयार हूँ मैं अपनी सेल्फी ट्राइपॉड स्टिक के साथ. सो मैं जब तक इसको स्टार्ट करता हूँ, जी रिबेका आप कुछ बोले ना, आज क्या बात है रिबेका, लगता है किसी ने वीडियोस नहीं बना.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की है कि वो किसी भी इलाके में लोड शेडिंग को 2 घंटे तक महदूद रखने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। हुकूमत ने आज से आइंदा 3 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल किया है। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 61वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के 4th रोज इंग्लैंड आज अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू करेगा। खबरें
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

तेरा ही हूँ मैं, जाने दे अब मुझ पे जो गुजर रही, तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की है कि किसी भी इलाके में लोड शेडिंग को 2 घंटे तक महदूद रखने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 61वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान का बहरी शोबा मौसर नज्म व नस्क जदीद बुनियादी ढांचे और शफाफ निज़ाम के जरिए एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। बर्मिंगम में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज इंग्लैंड आज अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: कहा, इसका मतलब है कि ये तो मजहब का हिस्सा है। तो क्या उन्हें मजहबी कवानीन या और कवानीन का पता है? और अगर नहीं है तो आपके ख्याल में, क्योंकि आप हैं सोशल मोबिलाइजर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन तक ये आगाही पहुंच सकती है?
1: हाँ जी बिल्कुल, जब हमने कवानीन पे बात करनी शुरू की थी तो हमें समझ आ गई थी। आपने तो दही इलाकों की बात की है, वहाँ तो ये है ही कमी, लेकिन शहरी इलाकों में भी अवेयरनेस की बहुत कमी है कम्युनिटी के अंदर। तो हमने फिर एक पूरे मुल्क में ये कैंपेन चलाई, हम कोई 24-25 लोग जो हैं, हमने ये किया कि हम ग्रास रूट्स लेवल पे हमने जो चर्चेज हैं उनके पादरी साहिबान के साथ रबते किए, और हमने ग्रास रूट्स लेवल पे जाके कम्युनिटीज़ को चर्चेज के ज़रिए से आगाही देने की कोशिश की है। और अब हमने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे हैं, और हमने बड़े आसान लफ्ज़ों में, एक तो ये कानून के अंदर जो सुकम मौजूद हैं इनके बारे में हमने वजाहत की है, फिर उनके राइट्स क्या हैं इसके बारे में वजाहत की है, फिर चर्च उनकी मदद कैसे कर सकता है इसके बारे में हमने उनको आगाही दी है। और बहुत सारी जगहों पे लोगों के ऐसे केसेस थे जो बड़े परेशान थे, जिनको वे आउट नहीं नज़र आ रहा था, कोई समझ नहीं आ रही थी किधर जाना है। जब हमने ये वजाहतें दी हैं और उनकी आसान लफ्ज़ों में जाके उनके दरमियान बैठ के, तो बहुत सारे लोगों ने अपने मसाइल को हल करने की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। जिनकी बात चर्च के साथ बन रही थी वो चर्च के पास, जिनकी बात अदालत से बन रही थी वो अदालत के पास, और ख़ास तौर पे लोगों ने जब सुना सेक्शन 7 के बारे में तो उन्होंने कहा हाँ ये हमें थोड़ा रास्ता दे रहा है, हम अपनी बेटी को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई पेरेंट्स ने ऐसे कहा, तो हमें लगा कि ये तो बहुत ही ज़रूरी थी अवेयरनेस। अभी भी हमने इस कैंपेन को रोका नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ मुमकिन है और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हम नहीं अभी पहुँचे, हम पादरी साहिबान के ज़रिए से, लोकल चर्चेस के ज़रिए से हम कम्युनिटीज़ के पास जा रहे हैं और हम कंटिन्यूसली उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, और लोगों को ये बेहतर लग रहा है। और वो जब हम पुराने कानून के अंदर जो लैकूनाज हैं, जो उनकी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, उनकी वजाहत करते हैं, और नए को जो हमने प्रपोज़ किया हम बताते हैं, तो वो आगे से कहते हैं जल्दी करें, नया कानून फिर क्यों नहीं पास हो रहा, इसको जल्दी करें क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में कुछ आसानी आ जाए। तो बिल्कुल आगाही की बहुत ज़रूरत है, और इसको हम इसका लेवल जो है वो बढ़ाते रहते हैं। अब बहुत सारे पादरी साहिबान को भी एजुकेट किया और वो भी कहते हैं हमें नहीं पता था इन चीज़ों का, हमें अब समझ आई है, तो हम बेहतर तौर पर अपने लोगों को भी गाइड कर सकते हैं और अपना काम भी बहैसियत मजहबी रहनुमा जो है हमारी ज़िम्मेदारी जो बनती है हम भी बेहतर काम करेंगे।
0: अब मैं रुमाना से चाहूँगी, रुमाना बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं आपसे चाहूँगी कि आप आखिरी 7-8 मिनट जो हैं, ज़रा जो नया कानून आ रहा है उसके क्या फ़वाद होंगे औरतों को, मर्दों को, किस तरह ख़ानदानी निज़ाम पनपेगा, आप उस कानून पे किस तरह का अमल दरामद चाह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि अभी भी वो सिविल अदालतों में रहें कि फैमिली कोर्ट्स में चला जाए मामला, या किस तरह आप इसको देखते हैं, वो ज़रा आप हमें थोड़ा सा बताइए जो आपकी काविश है।
1: बहुत शुक्रिया शिबाना, ये बड़ी अहम बात है कि ख़वातीन को इसमें कैसे फैसिलिटेट। एक तो ख़वातीन के लिए हमने वे आउट निकाल दिया कि अगर किसी की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल में आई है, जुल्म की जद में है, तो जुल्म से निकलने का रास्ता उसके पास दोनों मौजूद है, मैंने पहले भी बता दिया।
0: बिल्कुल ठीक,
1: इससे मैं आगे बढ़ती हूँ। ख़वातीन जो है वो, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई शादी करके चला जाए साल हर साल तक वापस ना आए, इसको भी हमने सर्टन टाइम पीरियड दे दिया कि अगर वो बंदा उसका अता पता नहीं है तो शादी आगे करने का जो है वो हक रखती है ख़ातून, और उसके माँ बाप उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला बेहतर कर सकते हैं। चर्च से भी नहीं मिल रहा था कि जायदाद की तकसीम कैसे हो, औरत को कैसे उसमें हिस्सा मिलेगा और क्या उसका शेयर होगा, तो उसमें बड़ा क्लियर किया हमने। जो नया कानून लिखा है हमने जगह जगह लिखा, जब भी ये सवाल उठा तो हमने लिखा उसमें कि जो कंट्री लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। कंट्री लॉ क्या है? 1925 का सक्सेशन एक्ट जो है ये मसीहियों की जायदाद की तकसीम का कानून है, जो कि अदालतों में भी नहीं इसको इससे काम लिया जाता, पता ही नहीं होता, तो फिर सवाल पैदा नहीं होता, फिर जो लोग हैं उनका जो फैसले हैं मसीहियों के जायदाद की तकसीम के वो फिर इस्लामी कानून के मुताबिक हो जाते हैं। जबकि मैं बताना चाहती हूँ आज कि जो मसीहों का 1925 सक्सेशन एक्ट है इसके मुताबिक बेटे और बेटी का हिस्सा बराबर है, और वाइफ जो है, बीवी जो है, उसका तीसरा हिस्सा है जायदाद में 1/3। और इस ये जो लॉ बना हुआ है, जो सुनने वाले मसीही लोग हैं उनकी तसल्ली के लिए ये बताना चाहती हूँ कि ये बाइबल بائبل مقدس کے مطابق بنا ہوا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: یہ چیز بائبل

right, jenab. Assalamu alaikum and assalamu alaikum FM 101. FM का लाहौर स्टेशन और FM 101 के लाहौर स्टेशन से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे और आपकी प्रेजेंटर निम्रा अरूज। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ। लेट क्यों हूँ मैं? वैसे यहाँ पे जो है ना तकरीबन 10:30 की मौजूद हूँ। कुछ कमर्शल्स हैं हमारे पास, वो आप लोगों को सुनवाना बहुत ज़रूरी थे। आप लोगों ने वो सुना, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि जी ये पोस्ट लगा के कहीं गायब हो गई है। ऐसा नहीं था। ऑफिशियली जो चीज़ें लाइन अप हुई हुई थी उनको हमने ऑनर किया। एंड देन थोड़ी सी जब ख़वातीन इकट्ठी होती हैं तो फिर कोई चुगलियाँ शुगलियाँ, कोई दिल की बातें, वो सारा कुछ भी चल रहा होता है ना। तो वो भी ज़रूरी था ना, पेट्रोल होता है हमारे लिए, पेट्रोल होता है वो। तो बहरहाल जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तमाम लोग जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज है जनाब सैटरडे और सैटरडे को हम करते हैं मौज मस्ती, फ़न, ढेर सारा म्यूज़िक होता है, ढेर सारी गपशप होती है। और आज जो है ना, वैसे सोचा हुआ मैंने बहुत कुछ था और जो कुछ मैंने ऑन एयर बोलना था ना वो आज मैंने सुमेरा आपी के साथ बोल दिया। कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम, अपनी पुरानी यादें, किस तरह से हमारा बचपन गुजरा, किस तरह से हम रहते थे, हमारे वो तमाम रिश्ते जो इस वक्त दुनिया में तो मौजूद नहीं है लेकिन जब भी याद करते हैं तो खुशी होती है। और बस खुशी होती है उसमें, वैसे बिछड़ जाने का गम होता है लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ों के आगे ना इंसान बहुत बेबस हो जाता है, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। तो बस उनके लिए दुआ है। तो बहरहाल जी, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं पिछले एक घंटे से ऑफ एयर शो कर रही थी। एनीवेज जी, आप लोगों के साथ भी ढेर सारी बातचीत करेंगे। टाइम हो चुका है 11:43, 11:43। डेट हो चुकी है आज सितंबर की 12 और सन है जी 2026। मुझे कहते हैं निम्रा अरूज और प्रोग्राम का नाम है लेडीज लाउंज, जो कि हर सैटरडे को होता है मेरा आप लोगों के साथ 11 से 1। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे। और अच्छा, टॉपिक में मेरा ख्याल है मैं फ़ौरन से बता देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और ये टॉपिक जो था ना मैंने बेसिकली पिछले हफ्ते के लिए प्रिपेयर किया हुआ था लेकिन लास्ट वीक जो है मैं पूरी तैयारी के बावजूद नहीं आ सकी थी क्योंकि थोड़ी सी एंड टाइम पर ना तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा जी रेस्ट कर लेना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, तो बस फिर मैं इसलिए नहीं आई थी। तो लास्ट वीक जो है ना एक दिन ना इसी तरह ऑफिस में बैठे बैठे ना लंच ऑर्डर करने की बात हुई तो मुझे बिरयानी खाने को मेरा बड़ा दिल था यार, कोई चटपटी सी मज़ेदार सी बिरयानी मिल जाए। नॉर्मली होता है कि मैं घर से खाना लेके जाती हूँ बट उस दिन मैं लेके नहीं गई थी। तो मेरा प्लान ये था कि जी मैंने कोई अच्छी मज़ेदार किस्म की ना बिरयानी खानी है। तो जो हमारे वर्कर हैं ना वो आए हैं, भाजी क्या मंगवाना है? मैंने कहा बिरयानी चाहिए मुझे अच्छी मज़ेदार किस्म की। तो उन्होंने मुझे खैर बिरयानी का बताया, जी फलानी जगह से बहुत अच्छी मिलती है और ये वो, लेकिन मसला ये है कि उसके साथ ना रायता आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। अब मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मुझे रायते की परवाह ही कोई नहीं है। मैंने कहा रायता ही है ना बिरयानी पे, मैं तो मैं वैसे भी रायता डाल के नहीं खाती। लेकिन वहाँ से ना एक चीज़ मेरे माइंड में आई कि यार मैं बिरयानी और रायते का कॉम्बिनेशन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे होता है यार चावल जो है ना ठंडे हो जाते हैं, मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब बिरयानी के साथ आपने कोई मीठे चावल भी मिक्स कर दिए हैं या कोरमे के ऊपर जो है ना वो मीठे चावल डाल के खा रहे होते हैं या फिर चाय में केला डुबो के खा लिया। है ना, ऐसे कॉम्बिनेशंस कभी सुने? या फिर जो है वो जर्दे के ऊपर या वो जो सेवइयों की शीर बनती है उसके ऊपर जो है ना कबाब और इस तरह की चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें मिक्स करके खा ली। देखा जैसे आप मुंह बना रही है ना ऐसे मेरा भी मुंह बन रहा था। तो बहरहाल जी, आप लोगों ने मुझे ये बताना, इतनी लंबी तमहीद के पीछे सवाल मेरा ये है कि आपका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो अजीब व गरीब किस्म का तो वो क्या है, या आपने कभी कोई इस तरह की चीज़ ट्राई की है, हमारे से जाके ज़रूर शेयर करें और बताएं कि वो कैसा लगता है, मज़े का लगता है? कोई दूसरा बंदा जो है उसको ट्राई करे कोई भी उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन कभी आपने? हाँ मैंने एक चीज़ ना ट्राई की थी, ये मेरा ख्याल है कि 2 साल पहले की बात होगी। फैमिली में एक शादी थी और वो शादी मेरे कज़न की थी तो मेरे मामू ने ना मुझे वो दिया था कुल्फ़ा आइसक्रीम जो होती है वो और कोल्ड ड्रिंक उसमें मिक्स करके, और मुझे बड़े मज़े से कहते हैं, मैं पहले उनको देख रही हूँ ये कर क्या
अच्छा जब मैंने उनको देखा है ना इस तरह से मिक्स कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे आगे कर दिया, ये बड़े मजे का है भाई, तुम पी के देखो। अच्छा जी, मैं भी इसी तरह नाक, मेरी वो बकायदा वीडियो उन्होंने बनवाई हुई है, बच्चियां साथ ही उसी टेबल पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है कि भाई निमरा बाजी पी रही हैं, तो इनका फेस एक्सप्रेशन जो है ना वो इनको बाद में दिखाने चाहिए। और बड़ी अनएक्सपेक्टेड वीडियो थी जो कि मुझे बाद में उसने शेयर की, और मुझे बड़ा खुशी हुई, बड़ा मज़ा आया उसको देख कर, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज था। बहरहाल उन्होंने ना वो मिक्स किया और मुझे दिया पीने के लिए, मैं ना वो बना बना के उसको पी भी रही हूँ और खा भी रही हूँ। तो इस तरह का आपका कोई फ्लेवर है, इस तरह आपने कभी कोई हरकत की है किसी शादी पर, किसी इवेंट पर, घर में, ईद त्यौहार पे, कभी कुछ इस तरह का उल्टा सीधा आपने कॉम्बिनेशन बना कर खाया है, और अगर खाया है तो वो कॉम्बिनेशन क्या था, हमारे से ताकि ज़रूर शेयर करें। मुझे कहते हैं निमरा अरूज, आप लोग सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मेरे साथ शामिल हो सकते हैं आप फिलहाल फेसबुक पर, हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 लाहौर का, उस पोस्ट पर जाइए, जाकर हमारी पोस्ट पर, उस पेज पर जाइए और हमारी पोस्ट पर कमेंट कीजिए। इसके साथ आप लोग 4471 पर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। 101 लिखिएगा अपने राइट मैसेज ऑप्शन पे और स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, मैसेज लिखिएगा और उसको सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। Stick around to FM 101, I will be right back.

यार वैसे ना एआई ने कमाल कर दिया है, मज़ा आ गया है। एआई ने इतनी चीज़ें रिक्रिएट की हैं और जिन्होंने करवाई हैं, मज़ा ही आ गया है। वैसे मैं ऑन एयर हूँ कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है अच्छा जी आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे ऑफ एयर जॉइंट फैमिली की, क्योंकि अब जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा कम देखने में आता है, और जहाँ पे देखने में आता है ना, वहाँ पे आपस में बुग़ज़, चपकलेश और लड़ाई झगड़ा बहुत शदीद किस्म का हो रहा होता है। अक्सर घरों में जो है ना वो भाई भाई जो है एक दूसरे की शक्ल देखने का रवादार नहीं होता। मैं अपना टाइम याद कर रही थी कि हमारा बचपन भी जो है ना वो जॉइंट फैमिली में गुजरा है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा गुजरा है, बहुत प्यारा गुजरा है। आज भी हम उस वक्त को याद करते हैं। मैं अपने बच्चों को किससे कहानियाँ सुना रही होती हूँ उस वक्त की, कि भाई हम तो ऐसे रहते थे, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। तो अब जो है ना वो वाली चीज़ देखने में नहीं आती। हमारा तो ये हाल था, हम हमेशा मैं ये बात करती होती हूँ कि जब मेरे अम्मा अब्बा ने कहीं जाना है ना, तो हमें संभालने के लिए ना हमारी ताइम्मी और ताइम्मी के बच्चे होते थे, उनकी बेटियां होती थीं, और हमें पता होता है यार हमारे सर पे ना बड़ा मौजूद है, हमने अगर कोई कार्रवाई डाली तो छितर इधर भी आ सकते हैं सही है ना, थोड़ी सी पंजाबी मेरी यू नो वीक है, तो छितर वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक आपका बड़े छोटे का एहतराम, अदब, सारा कुछ था ना। और फिर उस वक्त ये भी होता था कि कोई बड़ा इस चीज़ को माइंड नहीं करता था कि आपके बच्चे को किसी ने क्यों डांटा है। उनको ये पता होता था कि अगर बच्चे को डांट पड़ी है ना, तो यकीनन किसी जिस बड़े ने डांटा है, तो यकीनन उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो डांट के काबिल थी। मतलब ये कि कोई माइंड नहीं करता था। अब जो है ना वो मेरा ख्याल है कि लड़ाइयाँ शुरू ही बच्चों के पीछे होती हैं, और उसके बाद जो है बच्चे फिर से एक हो जाते हैं, और बड़े जो है ना वो एक दूसरे से मुंह बना के बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो मतलब बड़ी अजीब जा रही हैं। और ये पता नहीं मुझे, मैंने लास्ट वीक जब मैंने अपना माइंड बनाया था कि यार मैंने ये बातें ज़रूर करनी है, तो क्या था, किस वजह से मेरे माइंड में आई थी मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन बहरहाल ये मेरे माइंड में थी ये चीज़ें, कि अब वो वाला दौर नहीं रह गया। अब अगर आपने अच्छे से चलना है ना, तो उसके लिए मेरा ख्याल है फिर बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं ना, तो उसी टाइम उनको बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े तरीके के साथ ना उनका किचन सेपरेट कर देना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप घर अलग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम जो है ना किचन उनका अलग होना चाहिए, ताकि लड़ाई झगड़े की नौबत ही ना आए। यकीन माने जब प्यार मोहब्बत से थोड़े से डिस्टेंस पर आ जाते हैं ना, तो एटलीस्ट भरम कायम रह जाते हैं, इज्जतें कायम रह जाती हैं, और एटलीस्ट ये हो जाता है कि जब कोई कमी खुशी होती है तो आप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज उस चीज़ का फ़ायदा ही कोई नहीं है कि जब आप जो है वो लड़ झगड़ भी लें और उसके बाद जो है वो साथ भी रह रहे हों, तो फिर खुदा ना खासा जब कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है ना, तो फिर बंदा सबसे पहले भागता है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ना, वो आजकल एक ड्रामा चल रहा था दीवार, वैसे मतलब उसमें बड़ी सारी बोंगियाँ भी मारी हुई हैं, लेकिन यह है कि उसमें जो बड़ा सही दिखाया हुआ है कि एक बड़ी बहन जो है वो किस तरह अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती है, उसकी खुद की शादी ख़राब हो जाती है, बेवा हो जाती है, और उसके बाद जब उसकी नौकरी चली जाती है ना, तब उसके बहन भाई असल रंग उसको दिखाते हैं, उसके भाई उसका साथ छोड़ देते हैं, उससे मतलब किनाराकशी कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि किस तरह उसने उसके मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया होता है। माँ बाप का मतलब जो एक ट्रेंड था, या माँ बाप की जो विरासत थी, वो संभाल रही होती है, सबको ले के साथ चल रही होती है। तो बहरहाल ये बड़ा मतलब हैं ये चीज़ें, मुश्किल वक्त में ही आपको पता लगता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन वाकई आपसे सिंसेयर है। लेकिन जहाँ पे बात आती है ना बहन भाइयों की, बहन भाइयों को इस तरह नहीं होना चाहिए, बहन भाइयों को एक ही होना चाहिए। एटलीस्ट ठीक है, ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात बुरी लग जाती है किसी की, तो बंदा उसको लेट इट गो करे, एहतराम रखे एक दूसरे का, और उसके बाद खुदा ना खास्ता किसी पर कोई मुश्किल टाइम आता है, तो फिर आप एक दूसरे के लिए खड़े हों, आपको मालूम हो कि यार हाँ ये मेरी बैक में मौजूद है, असल ये ताल्लुक़ होता है। एनीवेज जी, नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ट्रैक कौन सा है, नेक्स्ट ट्रैक जो है ना वो मैं प्ले करने जा रही हूँ, एक और AI वर्जन है जी। आई जस्ट होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। ओरिजिनली जो है ना वो आरिफ लोहार साहब का है ये, और अब हम इसको AI वर्जन में प्ले करने जा रहे हैं।
انجوائے کی جگہ اس کو میرا ساتھ دیجیے گا. 12 بجے ہم بڑھیں گے نیوز بریک کی جانب, اس کے بعد واپس آئیں گے, تب آپ لوگوں سے لگائیں گے گپے. 04-2111-0101 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے, اس نمبر پر کال کیجیے گا اور پروگرام میں شامل ہو جائیے گا. اس کے علاوہ جی آپ لوگوں کو ٹاپک ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں, جس طرح ہم لوگ الٹے سیدھے کمبینیشنز بنا کے کھانا کھاتے ہیں نا, جیسے میں نے مثال دی کہ چائے کے ساتھ بسکٹ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن چائے کے ساتھ کیلے کا جو ہے نا وہ کمبینیشن سمجھ نہیں آتی ہے. زردے کے اوپر قورمہ ڈال کے کھانا یا زردے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور سالن ڈال کے کھانا یا زردے کے اوپر رائتا ڈال کے کھانا, اس طرح کا کبھی کوئی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے, کوئی عجیب و غریب قسم کا کمبینیشن بنا کے کھایا ہوا ہے آپ نے؟ اور اگر کھایا ہے تو مجھے کمبینیشن بتائیے گا. فل موتی دمار کے جگہ سنیے, انجوائے کی جگہ اس کو, اس کے بعد واپس آتی ہوں. اسٹک اراؤنڈ.

0: Music with FM 101.
1: Step into the world of women and talk about everything that matters to you, from fashion to feelings and everything in between. Welcome to Ladies Lounge with your favorite RJ, Nimra Arooj.
2: All right, welcome back. Once again, आपको खुशामदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज और आप लोग सुन रहे हैं फ्रॉम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से. तो जनाब टाइम हो चुका है 12:03. अगर आप लोग इस टाइम रोड्स पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको कहेंगे ड्राइव रियली वेरी केयरफुली. मौसम की बात करते चलें जी. मौसम जो है ना बड़ा अजीब सा हुआ है. दिन में गर्मी होती है और रात में थोड़ी सी ना बाहर निकलें, घरों के अंदर की बात नहीं मैं कर रही, घरों के अंदर मुझे लगता है कि गर्मी ही है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं ना, बाइक शाइक पे निकलें, तो जो हवा लग रही होती है ना वो बड़ी खुनकी वाली हवा होती है, तो उससे कभी कभी लगता है यार बस मौसम चेंज होने ही वाला है. और सबसे बड़ी निशानी जो है ना मौसम चेंज होने की आजकल क्या है, हर घर में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी चल रही है. हमारे यहाँ भी जो है ना वो यही सौगात है. अभी सुबह भी आते हुए जो है ना वो बच्चों को दवाई दे कर आई हूँ मैं, और ख़ुद भी जो है ना मैंने सुबह 5:30 उठ के अपनी जो कौमी हमारी मेडिसिन होती है ना मैंने खा ली है, और उसके बाद मैं थोड़ा सोई हूँ, मेरा बुखार उतरा है, और फिर मैं आने के काबिल हुई हूँ. तो ये सिलसिला जो है ना वो चारों तरफ चल रहा है. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जी गर्मी लगती है जब हम दिन में कहीं बाहर जाते हैं और वापस जल्दी से आए हैं, जल्दी से पंखे के नीचे चले गए हैं, या फिर जो है ना वो हम ठंडा पानी पी लेते हैं, फ्रिज खोला, बॉटल निकाली, जल्दी से पानी डाला और पी लिया, चाहे वो जितना मर्जी ठंडा क्यों ना हो. उस टाइम तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है पीते हुए, उसको दिल करता है यार ठंडा ठंडा कोई मिल्क शेक मिल जाए, इस तरह की कोई चीज़ मिले. लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं. और आजकल ना बच्चों के हाथ में वो जो गंदी वाली आइसक्रीम आई हुई है, वो जो आइस लॉली टाइप की कोई होती है, बड़ा रंग बिरंगा सा बर्फ़ वाली जो होती है ना आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे बर्फ़ का गोला ही होता है वो. तो बहरहाल हमारे टाइम में बर्फ़ का गोला और तरह का होता था. अब जो है ना वो थोड़ा फैंसी तरीके से उन्होंने लेटेस्ट तरीके से जो है ना वो पैक करके मार्केट्स में आ गया, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं. उस टाइम तो लग रहा था यार बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा खट्टा मीठा, ज़ुबान जो है वो लालो लाल हुई हुई होती है, अंदर तक जो है ना कोई नीला पीला हुआ हुआ होता है. लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो आपको थोड़े दिनों के बाद पता लगते हैं. गला ख़राब होगा, इचिंग होगी, बुखार होगा, और अभी बच्चों के पेपर भी शुरू होने वाले हैं. लेकिन जो है ना बच्चे हर दूसरे घर में बीमार पड़े हैं, और रीज़न यही है कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं. ये जो बदलता मौसम है ना इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है. तो प्लीज़ ख्याल रखें अपना भी, अपने साथ वालों का भी, और ये जो बदपरहेजियाँ हैं ना ये थोड़ी कोशिश करें कम कर दें. जैसे रात को मेरा बहुत दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, ऑर्डर करने का, लेकिन मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, हर चीज़ देख ली, लेकिन मैंने जहाँ पे प्लेस ऑर्डर आ रहा होता है ना उसको बस हाथ दूर रखा हुआ था, यार दबाऊँ ना दबाऊँ. 10 मैंने सोचा है, फिर मैंने कहा यार नहीं दबाती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये ना हो कि मैं ज़्यादा लंबी पड़ जाऊँ, और वो मैं पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकती अभी. तो बहरहाल फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया. तो इस तरह के जो ड्रामेबाजियाँ हैं ना वो मत लगाएं, प्लीज़ छोड़ दें, थोड़ा एहतियात कर लें, अभी एहतियात कर लें, आगे जो है ना वो सारी ज़िंदगी खाना ही खाना है, बस सारा सारा दिन बस खाना ही खाना है, इसके अलावा मुझे लगता है कि और कोई काम नहीं है. एनीवेज जी, आप लोगों ने कोई अजीबो गरीब किस्म के कॉम्बिनेशंस बना के खाए हैं तो मेरे साथ आके ज़रूर शेयर करें. अच्छा, मेरे साथ जो है ना वो 4-4-7-1 पर कौन कौन मौजूद है आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ. निमरा अरूज को बहुत सारा प्यार और सलाम. अच्छा जी, ये ओके, अब्दुल हमीद साहब हैं जी बर्फ़ी वाले, बहुत शुक्रिया सर आपका. और अच्छा, अगला जो मैसेज है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से है, लेकिन है मेरे लिए. उमरकोट सिटी, उमरकोट से निमरा जी, प्रोग्राम बिल्कुल लश पश हो रहा है, आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम शामिल हो रहा हूँ, सलाम ऑल 101. अच्छा वासिफ, ओके, आपने अपनी वाइफ किरण को गाना डेडिकेट करने को बोला है, ठीक हो गया जी. आपने अपना नाम तो बताया नहीं है वैसे. हाँ, मुझे इस मैसेज पे कहीं भी आपका नाम नजर नहीं आ रहा. तो बहरहाल जी थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन. और लेट्स सी हमारे साथ फेसबुक पर कौन कौन मौजूद है. फिरोज आलम जान हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने छोटी सी पोइट्री सेंड की है, बहुत शुक्रिया सर आपका. और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, शो इज़ ऑलवेज गुड, शो इज़ गोइंग ऑसम, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आपको कोई गम ना दे, आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, आपको हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, नेक दुआएं नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आमीन सुम्मा आमीन, इतनी खूबसूरत सी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी सलामत रहें, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, जज़ाकअल्लाह जी। और कह रहे हैं जी हमेशा की तरह खूबसूरत एंट्री, वेलकम जी वेलकम फ्रॉम सऊदी अरब, थैंक यू सो मच, ढेर सारे फूल बूटे आपने भेज दिए हैं, बहुत शुक्रिया। एम एजाज अली हैं शरकपुर शरीफ लाहौर से, और अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल हैं, आपने कहा है जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और साथ ही ऐसा करते हैं कि गाना भी प्ले करते हैं और उसके बाद ना फिर आप लोगों के कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे हैं जी वेलकम खुश आमदीद, जी आयनू बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, शमसी रेडियो लिसनर क्लब लाहौर की जानिब से खुशामदीद। कह रहे हैं जी लोगों के रवैयों का जहर चक्कर वहीं पर थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। नाइस। और क्या कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम माय बेस्ट फ्रेंड्स अमरजा चौधरी, अहसन खान, सज्जाद अली लादला, बेस्ट विशेस दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं हमारे साथ शाहदरा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमदुल्ला मलाखेल हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम कोयटा पाकिस्तान, लाहौर कोयटा से, ये क्या हो गया भाई मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी, नॉर्मली लाहौर से आते हैं, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। इब्राहिम कलेरी साहब मौजूद हैं डेरा गाजी खान से, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एम नईम टेलर हैं माशाल्लाह गुड आरजे, अच्छा टेलर से मुझे याद आया, मैं भी ना लास्ट वीक अपने कपड़े देकर आई टेलर को, तो काफ़ी अरसे के बाद मैं उनके पास गई थी, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो रेडीमेड मैं ले लेती हूँ कपड़े, तो जब कुछ स्टिच करवाना होता है तो मैं फिर उन अंकल को अप्रोच किया मैंने, फिर मैंने जब सिलाई पूछी ना मेरी आंखें खुली के खुली फटी के फटी रह गई, अंकल इतनी सिलाई वो भी सादे सूट की, मैं हैरान परेशान यार, नॉर्मल कपड़ों की एक सादे सूट की सिलाई जो है ना वो 2000 रुपये ले रहे हैं दर्जी, मैं तो सर पकड़ के रह गई, मैं कह यार शर्ट इतने की नहीं है, सूट इतने का नहीं है जितनी सिलाई जा रही है, लेकिन अब मैं ले चुकी थी अनस्टिच तो मुझे सिलवाना भी ज़रूरी था। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि कहीं वैसे आउटिंग के लिए गई हूँ, मॉल वगैरह गए हैं हम, बच्चों को झूले झूले दिलवाए हैं, उसके बाद जो है ना मैंने एवं एक दो ब्रांड्स का विज़िट कर लिया, और नॉर्मली मैं ले के रखती नहीं हूँ, मुझे ये होता है अच्छा बस जितनी ज़रूरत है उतना ले लिया, उसको पहन लिया और बात ख़त्म। बट उस दिन जो है ना वो मैंने, मेरा ख्याल है लास्ट 2 महीने पहले की बात होगी, हम गए भी, मैं जूबिया के साथ थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, आपकी बहुत प्यारी आरजे हैं, तो वहाँ उनके साथ भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, उन्होंने तो सिलवा भी लिए कपड़े, और मेरे जो है ना अभी तक पड़े हुए थे, फिर मैंने उनको फाइनली मैसेज किया जूबिया मैं अपनी शर्ट दे आई हूँ तो बहरहाल जी आपने सोचा कुछ होता है और हो कुछ जाता है, तो अब आज का उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ था, नॉर्मली वो अपने वादे पर जो है ना पूरा नहीं उतरते, मतलब अंकल जो है ना जो वो दिन डिसाइड करते हैं ना कि भाई इस दिन आपको मैं कपड़े दे दूंगा, नॉर्मली ये होता है कि वो उस दिन कपड़े नहीं मिलते, बट आज मैंने उनको रिमाइंडर तो भिजवाया है कि भाई अंकल आपने आज का वादा किया हुआ था, अब मैं जब जाऊंगी ना फिर पता लगेगा कि वो वादा पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। एनीवेज थैंक यू। कह रहे हैं जी एम नईम टेलर कह रहे हैं मेरा बेटा हसीब आपको सुन रहा है, हसीब भी सुन रहा है, चलें जी हसीब बहुत शुक्रिया आपका भी। नज़ीर खोसो साहब मौजूद हैं सोबतपुर बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका। एम रज़ा चौधरी साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक ठाक हैं? और बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 04221100101 पर, और जो लोग कॉल नहीं कर सकते वो हमें हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करके शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में, फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 लाहौर का, उस पेज पर जाइए, हमारी पोस्ट पर कमेंट कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इसके अलावा 4471 पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पर जाएं, वहां पर लिखें 101, एक अदद दें, स्पेस, अपना नाम लिखें, अपना मैसेज लिखें और उसको सेंड कर दें 4471 पर। फिलहाल ये गाना इंजॉय कीजिएगा, इसके बाद वापस आती हूँ, देन आप लोगों की लूंगी कॉल 04221100101 पर और आपने मुझे बताना है कभी आपने कोई अजीब गरीब किस्म का कॉम्बिनेशन खाने का बना के खाया है। और थोड़ी सी डिटेल बता दूँ लोगों के लिए जिनने अभी अभी FM 101 ट्यून किया है, ये अजीब गरीब कॉम्बिनेशन क्या है। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जरते के ऊपर कोई नमकीन चीज़, कोरमा हो गया, कोई रायता हो गया, वो डाल के खा लिया, या चाय में केला डबो के खाया हो आपने कभी, कोई भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आपने बना के खाया हो अजीब गरीब किस्म का जो कि नॉर्मल नहीं होता, तो मेरे साथ आके ज़रूर शेयर करें। स्टिक अराउंड टू FM 101, मुझे कहते हैं निमरा आरू।

0: ऑल राइट जी, ज़िशान अली की आवाज़ आप सुन रहे थे और जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस ऑन एयर कर देती हूँ। अमरजा चौधरी कह रहे हैं जी, काफ़ी अरसे की बात है कि मैं आपके शो में कॉल भी करता था और कॉल मिल भी जाती थी। अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, ना तो कभी मैंने कोशिश की है ना ही मेरी कॉल मिली है, कि ये सारी टेंशन है आपके शो में कॉल करने की। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी टेंशन ली हुई आपने। चलें जी, दिल से कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपकी कॉल मिलेगी। फरहाद मेमन साहब मौजूद हैं हमारे साथ और इन्होंने बर्फ़ी भेजी, सॉरी गुलाब जामुन है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मिठाई के साथ चाय का कॉम्बिनेशन भी रखते हैं, हालांकि मुझे समझ नहीं आती, आप अगर मिठाई खा लेते हैं तो उसके बाद चाय ना फीकी लगने लग जाती है। तो पता नहीं, बहरहाल मुझे तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है, चाय के साथ मिठाई कौन खाता है, लेकिन खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। अक्सर जो है ना, आप किसी के घर चले जाएं, कोई किसी इवेंट पे, मतलब किसी को मुबारकी देने, किसी कोई अच्छी खबर पे, तो मिठाई के साथ चाय का कॉम्बिनेशन होता है। फरहाद मेमन साहब ने दोबारा से एक थाल भेजा है जिसमें लड्डू हैं, बर्फ़ी है और पता नहीं कौन कौन सी मिठाइयां हैं। बहुत शुक्रिया, चाय भी भेजी है, फिर उसके बाद ये आपने काम की चीज़ भेजी है जी, ये जो जिसमें पकौड़े हैं, जिसमें समोसे हैं, मिर्च वाला। अच्छा, मिर्च वाला मैं नहीं खाती वैसे, लोग बड़े शौक से खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती। और बहरहाल थैंक यू सो मच। हिदायत सलारज़ई मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। लेट्स सी फर्स्ट लकी कॉलर कौन है, आप लोगों की कॉल्स की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
2: सलाम।
0: आप पहले ना अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें या बंद कर दें।
2: मैं लारेंस रोड लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: कौन बोल रहे
2: हैं? लारेंस रोड लाहौर से।
0: जी जी,
2: आसिफ अलीम।
0: आसिफ अलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं लारेंस रोड से, राइट
2: जी।
0: सर कैसे हैं आप? आपने पहली दफा कॉल की है?
2: जी, इस प्रोग्राम में पहली दफा कॉल की है।
0: ओके, चलें वेलकम कहती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। और मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप?
2: मैं अब फिलहाल तो मैं फारिग हूँ। अब जैसा कि घर से भी निकलना बहुत कम होता है, कहीं जाता हूँ तो वॉकर लेके जाता हूँ।
0: अच्छा, ओके। अच्छा, आप पहले आपने रेडियो ऑन किया हुआ अभी भी?
2: मैं इस पर फ्रीक्वेंसी पे सुन रहा हूँ ना।
0: अच्छा, क्योंकि ना मेरी आवाज़ मुझे एको के वापस सुनाई दे रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अगर अच्छा है तो आप इसको बंद कर दें और मुझे ये बताएं कि आप, बाकी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी दुआएं आपके।
2: जी, तो मैं वैसे रेडियो पाकिस्तान का आर्टिस्ट भी रह चुका।
0: अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड।
2: मैं बहुत से प्रोग्राम्स भी किए हैं।
0: चले माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: मैं किसी दिन आपके प्रोग्राम में ना अपना ही लिखा हुआ माया सुनाऊंगा।
0: जरूर जरूर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, टॉपिक सुना है आपने?
2: जी, जर्दे के साथ।
0: उल्टे सीधे कॉम्बिनेशंस पूछ रही हूँ मैं आपसे, मतलब स्पेसिफिकली जर्दा नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे लिए जो है ना, बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि हमने 2-4 चीजें कॉम्बिनेशन करके खानी है।
2: जी,
0: तो आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया है?
2: समोसे पे मीठी चटनी वो डाल के खाता हूं।
0: अच्छा, वैसे वो तो मेरा ख्याल है जो बड़े समोसे मिलते हैं उनके साथ तो मीठी चटनी मिलती है बाजार से भी, है ना?
2: जी,
0: हाँ, चलें, अगर आपको लगता है वो यूनिक है तो ओके, कोई मसला नहीं है।
2: और जर्दे पे मैं सालन की बोटी जरूर
0: डालते। हाँ। चलें चलें, ठीक हो गया सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और जी, ये तो थे हमारे साथ, सॉरी मैं लारेंस से हमारे साथ मौजूद थे, आई एम सो सॉरी। एनीवेज जी, लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है। और मेरा ख्याल है कि समोसों के साथ जो है ना, वो बाज़ार से भी वो वाली चटनी मिलती है, मीठी और नमकीन, चनों वाली और मीठी चटनी। अच्छा, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मुझे ना मीठी चटनी बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं समोसा भी खुश्क खाती हूँ, ऐसे ही रूखा। और जब हमने कोई गोलगप्पे खाने हैं या कोई दही बल्ले खाने हैं तो उसके साथ भी लोग ना मीठी चटनी डलवाते हैं, मैं वो भी नहीं डलवाती। मुझे सिर्फ नॉर्मल सा चाहिए होता है, मतलब मीठी चटनी मैं अलग से एंड पे खा लूँगी मुँह मीठा करने के लिए, लेकिन उसके अंदर बीच में डाल के नहीं खानी। तो लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। आज आपकी चहचहाट कहाँ पे है? आपकी आवाज, आपकी आवाज में ना लाइन में कोई डिस्टॉर्शन फील हो रहा है मुझे,
3: लेकिन मुझे बिल्कुल
0: अब ठीक है, अब ठीक है, पहले फील हुआ था। अच्छा जी, शमीमा आप ही हैं हमारे साथ, कैसी हैं आप?
3: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
0: सही।
3: मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर से बाहर गई हुई थी।
0: ओके।
3: तो कल ही मेरी वापसी हुई।
0: अच्छा, मैं भी पिछले हफ्ते नहीं आई थी। ठीक हो गया, हिसाब बराबर हो गया। सही। शमीमा आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कभी आपने कुछ अजीब गरीब सा किया है?
3: मैं अभी आपको बताती हूँ।
0: जी जी।
3: मुझे ना एक दिन मैंने चाय ला के दी घर वालों ने, गर्मा गर्म, बहुत गर्म चाय थी। अब और मैंने चाय पीनी भी थी।
0: ठीक है।
3: मैंने कहा अब इसका मैं क्या करूँ, मैंने ना बाहर जाना था घर से, कुछ बहुत
0: अजीब गरीब सा किया है।
3: चाय अभी आपको बताती हूँ।
0: जी जी।
3: मुझे ना एक दिन मैंने चाय ला के दी घर वालों ने, गर्मा गर्म, बहुत गर्म चाय थी। अब और मैंने चाय पीनी भी।

0: कैसी चाय बनी होगी वो।
1: बहुत मजा किया, सब हंस रहे थे
0: घर में। ओके,
1: क्या हो गया मुझे।
0: जबरदस्त जबरदस्त, वाह जी वाह,
1: सब बहुत हंस रहे थे। तो मेरे ये किसी ने भी किया होगा ऐसा काम।
0: बिल्कुल भी, लेकिन मैंने ना इसका मैंने सुना है, मतलब जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उन्होंने चाय भी पीनी है, तो वो क्या मतलब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किसको देखा है ये करते हुए, वो ना चाय में पानी इसलिए कि भाई इसकी जरा तासीर ठंडी हो जाएगी ना, तो बीपी नहीं हाई होगा। अब अल्लाह जाने उसकी तासीर कैसी ठंडी होती है।
1: मैंने तो ऐसे किया ना कि ठंडी करने के लिए।
0: आपने तो हाँ, आपका मकसद था कि चाय ठंडी हो जाए, वैसी
1: जल्दी ठंडी
0: जो हम चाय के कप में वो होता है ना दूसरे ग्लास में उलट पुलट कर लेते हैं भाई ठंडी हो गई। वो वाला काम आपने ऐसे किया था।
1: निंद्रा जी, वो एक गाना, तू डोला फूल गुलाब दा,
0: तू डोला
1: फूल गुलाब दा, कुछ ऐसे ही
0: है। हले भी गुलाब ताजा आएगा। अच्छा जी, किसका गाना है?
1: मुझे सिंगर का नहीं कुछ मालूम, ये बोल है गाने के,
0: तू ढोला फुल गुलाब दा,
1: तू फुल गुलाब दा।
0: अच्छा जी,
1: अगर प्ले हो जाएगा तो ठीक है, तो बाकी है कि तारिक भाई कुवैत वाले नहीं भी अनिल भाई भी सुन रहे हैं।
0: अच्छा, ये मैंने
1: भी सुन रही है। और मुझे ना सॉरी, मैं हफ्ता रही हूँ ना बाहर, मुझे बहुत से कॉलरों ने बताया कि आप ही, आपको सब लोग इतना मिस कर रहे थे,
0: सही सही,
1: तो मैं किस जुबान से कैसे उनका शुक्रिया करूँ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मिस किया था मुझे।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले।
1: और आज भाई कब शो है, रात को?
0: होपफुली है, उम्मीद तो है कि है।
1: नहीं,
0: असल में लास्ट वीक जो है ना वो कुछ थोड़ी सी इमरजेंसी भी हो गई थी, और सुबह में मेरी पूरी तैयारी थी, सारा कुछ था, उससे पिछले हफ्ते इन्होंने शो किया था। लास्ट वीक जो है ना थोड़ी सी मेरी तबीयत अपसेट हो गई थी, तो मैंने तो एंड टाइम पे जो है ना वो रिफ्यूज किया था, तो ये सीन हो गया था मेरे साथ। तो थैंक यू, सेम हियर, चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। भाई ये तो थी हमारे साथ चिमी मापी। अच्छा, इससे ना मुझे चाय में पानी डालने से ना मुझे एक बात याद आ रही थी, मेरे मियाँ साहब क्या करते होते हैं, हम एक जगह जाते हैं वो रबड़ी दूध पीने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा मीठा होता है और मेरे मियाँ साहब को ना मीठा इतना को ख़ास पसंद नहीं है, उनको होता है बड़ी माइल्ड सी चीनी हो, मैं मीठे की शौकीन हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने ग्लास में ना एक सादे पानी का भी ग्लास मंगवाते हैं और उसमें जो है ना वो थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, और मुझे अक्सर कहते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ यार आज मीठा बहुत ज़्यादा हो गया, कहते पानी डाल लो, मैं कह यार पानी डालने से तो वो दूध अलग कच्चा पक्का मतलब अजीब सा नहीं फील होगा, मुझे हमेशा उसको देख के ना अजीब सा फील हो रहा था जब ये काम कर रहे होते हैं, जब मुझे भी उन्होंने कहा है तो मैंने नहीं किया ये काम, तो अभी भी जब मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे ये क्या हो रहा है, तो मेरे लिए वो अजीब सी चीज़ है कि यार दूध में आप इस तरह किस तरह से मतलब पानी डाल के और डायरेक्ट आप वो भी रबड़ी दूध आप पी रहे हैं और उसके अंदर जो है ना वो आप ऐसे ही पानी डालें और वो पी लें, मुझसे तो ये काम नहीं हो सकता। मुझे तो वो कड़ा हुआ दूध ही अच्छा लगता है अगर मैंने कभी पीना है, अदरवाइज मुझे दूध हज़म ही नहीं होता, मतलब जो जिसमें वाइट लुक आ रही होती है, जिसमें स्मेल आ रही हो ना दूध की, जो अजीब सी वो हमक सी आ रही होती है, बाकी दूध अच्छी तरह पका हुआ हो ना फिर उसमें ज़रा खुशबू सी आ रही होती है वो पी लिया जाता है। तो बहरहाल अपनी अपनी पसंद है जी, क्या ख्याल है, एक कॉल और ले लेते हैं उसके बाद हम फिर नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे कर लें, मेरा ख्याल है हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये तो थे हमारे रेगुलर कॉलर, थैंक यू फॉर योर कॉल। सो जनाब 04211100101 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
2: वालेकुम सलाम,
0: कैसी हैं आप? और जो आपने ऑन एयर कहना है ना वो मैंने कहना है, आपको पता है मैं वेट कर रही हूँ किसी का। हमारा आप जैनब के लिए कोई मैसेज तो नहीं देना चाह रही?
2: हाय सदके।
0: मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि जैनब आएंगी, और मैंने उसको ना मैसेज नहीं किया हुआ, ठीक है उसकी बर्थडे है ना, तो मैंने उसको मैसेज नहीं किया हुआ, मैंने इसलिए मैसेज नहीं किया कि वो जब स्टूडियोज आएगी ना तब मैंने उसको
2: पहुंच चुकी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप भी दें,
0: बस मैं सरप्राइज देना चाह रही थी,
2: पहुंच गई हैं और अभी भी सुबह पहुंच चुकी हैं,
0: वेरी नाइस,
2: मैं चाह रही हूँ कि आपकी तरफ से और मेरी तरफ से एक साथ पहुंचे,
0: चले ठीक,
2: आपने मेरे दिल की बात मेरे कहने से पहले,
0: हाँ मुझे आइडिया था इसलिए मैंने पहले आपको रोक दिया कि वो मैंने कहना है।
2: ठीक है।

0: और आ रहा है ना आपकी कॉल के अंदर है? और मैं अंदाजे से आपसे बात
1: हाँ,
0: कर रही हूँ।
1: हालांकि अभी शमीमा आप ही आई थी, वो कह रही थी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, तो चलिए कोई नहीं।
0: आपकी नहीं आ रही, और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने ऐसा कोई नहीं काम किया जो ये जर्दे के ऊपर या मेरी आप ही है वो बिरयानी के ऊपर मसर डाल के खाते
1: हैं। बिरयानी के ऊपर मसर, वेरी गुड, ये एक न्यू कॉम्बिनेशन मुझे पता लगा।
0: ना उनके सामने पूछिएगा, उनसे पूछिएगा वो क्या करती हैं।
1: ज़ैनब मसर डाल के खाती है, ये एक नई इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, ये सच्ची नई इन्फॉर्मेशन है, मैंने आज तक नहीं देखा उसको इस तरह करते हुए।
0: आपकी आवाज नहीं सही।
1: अच्छा चलें, ठीक हो गया, मैं ऑन ए करती हूँ, ठीक है, थैंक यू हमारा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हैं ज़ैनब, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप मसर डाल के खाती हैं, मेरे सामने तो आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। चलो अभी अगर आती है ना तो फिर मैं ज़रूर पूछती हूँ। और ज़ैनब की जी बर्थडे है आज, ज़ैनब को मैंने विश नहीं किया था, और मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पर आऊँगी ना, तब जब ज़ैनब स्टूडियोज़ में आएंगी तब मैं उनको विश करूँगी, तो आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो आई हैं, तो जैसे ही आती हैं ना फिर ज़ैनब हम आपको विश करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ 4471 पर हैं जी। आई एम अलीशा, मैं आपका शो सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम इन है। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम शो में मैसेज किया है, ओके, वेलकम कहते हैं अलीशा आपको, थैंक यू। अच्छा जी, हम बढ़े हैं एक अदद ट्रैक की तरफ, ठीक है, ट्रैक के बाद वापस आते हैं, देन आप लोगों की मजीद कॉल्स लेते हैं। 12:00 हो चुके हैं 29 मिनट, स्टिक अराउंड एफएम 101।

0: ऑलराइट, इतना मीठा सा प्यारा सा गाना है, इसको हम ब्रेक लगाते हैं और लेट्स सी हमारे साथ कौन है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम,
1: शुक्र है दोबारा
0: मिल गई। जी हमारा कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसी हैं?
0: आगे
1: तो आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं थी आ रही। मैं
0: अच्छा, फिर आपकी तरफ से इशू था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मतलब जितनी भी कॉल्स गई हैं किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कुछ भी,
1: पता नहीं क्या वजह थी।
0: मैं तो मानना ही नहीं है, मैं तो मानना ही नहीं कि मेरे पास कोई इशू था।
1: और
0: जब आपकी कॉल मिलती है मैं गायब हो जाती हूँ, है ना?
1: बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे दिल की बात मान पहले से ही समझ कहने से पहले ही। और ये कभी कभी होता है कि कोई दिल में बात हो तो सामने वाला फौरन से नेक्स्ट ये बात करने वाला है। तो बहुत शुक्रिया, अगर आप भी आई नहीं है अभी तो आएंगी तो फिर जरा धूमधाम से मेरी तरफ से और आपकी तरफ से हमें विश कर दीजिएगा।
0: ठीक,
1: और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए भी, मसूद भाई के लिए भी और आपकी फैमिली के लिए। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत लाइन लगी आगे आपके कॉल।
0: नहीं कोई बात नहीं, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: थैंक यू, अल्लाह
0: हाफिज़। और जी ये तो थी अमारा हमारे साथ। और आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है? अच्छा फिर सब्र करें ज़रा,

जी हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके नसीब अच्छे करे और जो आपकी दिली ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनको पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये अमारा बेग आई थी, उनकी तरफ से भी था और मेरी तरफ से भी था।

0: थैंक यू, मुझे आपने बताया नहीं, आप मेरी वीडियो बना रही थी। देखें जी, आज तो मैं ऐसी उठ के आ गई हूँ, बीमार बच्ची थी, आज मैं ऐसी आ गई थी। एनीवेज जी, थैंक यू। कॉल ले लेते हैं, मेरा ख्याल है एक और। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आप जी की हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइएगा और सुनने वालों के लिए नाम बताइएगा सबसे पहले।
1: आपकी जी, मैं बोधी जट गल कर रहा, रावी तो।
0: जी बोधी जट साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं?
1: ठीक ठाक आप जी, शुक्र है अल्लाह। आप जी, पहली बार थोड़े शो च कॉल की, वैसे थोड़ा शो सुनते रहे आप जी।
0: हाँ जी,
1: सलामत रहो।
0: बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह।
1: शमशी रेडियो क्लब मैं मेंबर आप जी, अल्लाह साहब आए सुनके माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। शहजाद अली लाडला साहब भी सुन रहे थे।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
1: असल दे विच ला तुहाडे टॉपिक ते गल करिए, ते पहले जो बचपना सी उदो किसे शादी विआह ते जाईदा सी, ते जरदे दे उत्ते सालन पा के खाईदा सी, ते हुण कदी कदी हो जांदा अज दा मौजू के बिरयानी खा पक्की है, उत्ते चीनी पा ली, दुध पा ली।
0: अच्छा, बिरयानी के ऊपर चीनी और दूध?
1: हाँ जी।
0: ओहो, उसका टेस्ट कैसा आता होगा फिर? जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।
1: आपकी जी सदा सलामत।
0: थैंक यू, आमीन।
1: मेरा सलाम से पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, बिरयानी के ऊपर चीनी और दूध, वाह जी वाह। अब मुझे तो एक और चीज भी पता लगी, आप बिरयानी के ऊपर मसर डाल के खाती हैं, ये कब हुआ? ये मेरे सामने तो नहीं हुआ कभी। देखो, कुछ हिडन टैलेंट भी होते हैं, हर बात बतानी थोड़ी होती है। खैर जनाब, आपके हिडन टैलेंट्स क्या हैं? आप क्या अजीबो गरीब किस्म के कॉम्बिनेशंस खाते हैं, मुझे जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। अभी वालेकुम सलाम, क्या बात है? आज मीठिया चौला ते तलना ते बिरयानिया ते
0: बिरयानी
2: चीनी पा लेना, दुध पा लेना,
0: वाह
2: कर ले। बाकी मैं आप ही ना गुड़ वाले चौला ते चार वगैरा ते ओ ए मेरा कभी गुड़ वाले ते चौला ते चार चार रख के खाओ ना, बड़ा ही मजा आंदा।
0: अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड,
2: क्या बात।
0: चलिए, मैं बहुत सारी दुआएं कह सकती कि मैं भी ट्राई करूंगी।
2: नहीं गोड़ा तुझी करे हो ना?
0: नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे कोई काम नहीं।
2: बाकी हो ना आपकी जन्म वर्ष दिया सालगिरह, बहुत सारी दुआएं आपके वास्ते, क्या बात है। और ना महाराज ने दसिया ना, मैं क्या बात, पता नहीं काल मिलनी कि नहीं मिलनी, होने वालों कह लीजिए आपकी जन्म।
0: थैंक यू सो मच। ठीक है
2: आपकी, रब रखा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
0: और जी, ये तो थे अब्दुल हमीद और बर्फ़ी वाले। अच्छा, मैं ना कुछ दिनों से सोच रही थी, गुड़ वाले चावल से मुझे याद आया, मैंने ना कभी भी ज़र्दा नहीं बनाया था। फिर एक झिझक भी थी, और मुझे कुछ ख़ास ज़र्दा जो है ना मीठे के तौर पे इतना पसंद नहीं है। तो होता ये था कि मैं ज़र्दे के ऊपर कोई खोया डाला हुआ कुछ है, मैं वो चुन चुन के खा लेती होती थी। लेकिन कभी होता है कि अच्छा जी चलो मुँह मीठा करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक चम्मच खा लिया बस इस तरह से। फिर मैंने लास्ट ईयर 12 रबीउल अव्वल पे जो है ना वो ज़र्दा पकाया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकाया। मैंने अपनी अम्मी से भी पूछा कि भाई किस तरह, क्योंकि अम्मी का ज़र्दा बहुत मशहूर है माशाल्लाह, वो अच्छा बना लेती हैं। घर में कोई इवेंट है, कोई कुरान खानी रखी हुई है, कोई फंक्शन है छोटा मोटा, तो हम घर में ये चीज़ें कर लेते हैं। तो वो मैंने फिर उनसे पूछा भाई किस तरह से बनाया और ऐसे वैसे। तो मैंने फिर उसके बाद एक प्रॉपर मतलब दो चार रेसिपीज़ देखी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बन गया। नॉर्मली ये होता है कि चावल एंड जाते हैं वो जब मीठा शीरे में पड़ते हैं और सारा कुछ, तो मेरा अच्छा बन गया कि मुझे फिर उसके बाद उसको बांटने में भी मज़ा आया, जब अब मैंने लोगों के घरों में भेजा मतलब अच्छा लगा, इंजॉय किया मैंने। अपना अगला जो मेरा स्टेप था वो ये था, मुझे गुड़ वाले चावल भी नहीं पसंद हैं, लेकिन जो है ना मेरे मियाँ साहब को ज़रा पसंद है। तो मैंने इस दफ़ा ये सोचा है, अभी बल्कि मैंने चावल सेला चावल मंगवा के भी रखा है कि यार मैंने, मेरे पास शक्कर बहुत सारी शक्कर पड़ी हुई है, गाँव शाँव जाए ना आप तो वो आपको वहाँ पे गिफ्ट मिलता है इस तरह की चीज़ों का। तो गुड़ भी आया था, गुड़ ख़त्म हो गया, लेकिन शक्कर जो है ना वो अभी काफ़ी पड़ी हुई है। چونکہ میں شکر کو میٹھے کے طور پہ اس طرح پسند نہیں کرتی جیسے ہوتا ہے نا آپ کھانے کے بعد کچھ میٹھا آپ کو چاہیے, مجھے پراپر میٹھا چاہیے ہوتا ہے, کوئی رس ملائی ہو, کوئی آئس کریم ہو, کوئی کھیر ہو. تو ہمارے گھر میں مطلب میرے میاں صاحب کا بھی یہ ہے کہ میٹھے کے طور پہ جو ہے نا وہ شکر کا ہی تھوڑا سا مطلب منہ میں ڈال لیتے ہیں, گڑ ہے تو چلو جی گڑ ڈال دیا, لیکن میں نہیں اس طرح کی ہوں. تو وہ شکر کافی پڑی ہوئی ہے, مطلب اگر مجھے میٹھے میں شکر پسند ہوتی تو شاید وہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی, لیکن چونکہ مجھے اتنی خاص پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ بچی ہوئی ہے. تو میں نے اب یہ سوچا تھا کہ یار اتنی شکر پڑی ہوئی ہے تو میں نا کیوں نہ گڑ والے چاول ٹرائی کروں. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نا ایک دو دن میں میں نے چاول سامنے شیلف پہ سجا دیے ہیں کہ یار مجھے یاد رہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو میں تھوڑے اس پہ کوانٹٹی پہ کروں گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں. گڑ والے چاولوں پر جو ہے نا وہ ضرور میں نے وہ دہی اور اس طرح کی چیزیں بھی سنا ہے, جیسے میٹھے چاولوں پر آپ ڈال لیتے ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ گڑ والے چاولوں کے اوپر بھی ڈال دیا, سارا کچھ ڈال دیا. تو جو ہاتھ آ رہا ہے بس ڈالے جاؤ. اچھا جی ہمارے ساتھ فیس بک پر کون موجود ہیں؟ سائم تبسم ہیں جی. السلام علیکم, کیا حال ہے میڈم جی؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے, تعریف کریں شو کی, بہت بہت شکریہ. اور اوکے تھینک یو. ٹائم جو ہے نا وہ ہو چکا ہے 12:41, اور مزید ہمارے پاس میسیجز ہیں جی. علیشہ ہیں ہمارے ساتھ, دوبارہ سے کہہ رہی ہیں آپ کی وائس بہت پیاری ہے, آپ کے شو کی ٹائمنگ بتا دیں. ویل میں نارملی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں ایوری سیٹرڈے 11 to 1 لیڈیز لاؤنج میں, کبھی کبھی چھٹی بھی کر لیتی ہوتی ہوں میں, کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سی چھٹیاں کرتی ہوں, مطلب وہ اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ پلان کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چھٹی ہو جاتی ہے. مطلب میں نہیں چاہ رہی ہوتی, میرا پلان ہوتا ہے یار میں نے اب کوئی چھٹی نہیں کرنی, لیکن وہ کچھ نہ کچھ نہ ایسا آ جاتا ہے کہ چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے. بہرحال جی نیکسٹ ٹریک کی طرف بڑھتے ہیں. آئمہ بیک کی آواز ہے, انجوائے کی جگہ اس کو, اس کے بعد واپس آتی ہوں.

0: ओ हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो?
1: मैं उसका दोस्त हूँ।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। 12 बज के हो चुके हैं 47 मिनट। टाइम जो है ना वो शॉर्ट है और जल्दी जल्दी से एक दो कॉल्स और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ दी, दोबारा आ गए। अच्छा जी, सो आज हम बात कर रहे थे अपने खाने पीने के अजीब और गरीब किस्म के कॉम्बिनेशन के हवाले से। इसके अलावा जो है ना, मैं जॉइंट फैमिली अपनी याद कर रही थी, पुराना टाइम याद कर रही थी, और अब के लड़ाई झगड़ों पर हम बात कर रहे थे कि जी अब जो है ना वो अगर कोई जॉइंट फैमिली इसमें रहते भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ना वो दिलों में बातें चल रही होती हैं। लेकिन मैं अपना टाइम याद करी थी, यार हमने तो मतलब बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। और बहरहाल उसका हल जो अब समझ में जो आती है ना, वो यही है कि ठीक है, आप फिर ना इंसान को चाहिए कि अच्छे तरीके से जो है ना वो पहले ही अपने बच्चों को साइड पे कर दे, ताकि थोड़े से भरम रह जाएं, थोड़ी सी इज्जतें रह जाती हैं, कि आप फिर गमी खुशी पे किसी के जो है ना वो एक दूसरे से अच्छे से मिल लेते हैं। तो बहरहाल जी, ये आज का सारा जो है ना, मैंने एक वो कहते हैं ना एक निचोड़ वो दे दिया कि आज हम क्या बात कर रहे थे। और हम जो ख़ास तौर पे मैंने सोचा था ना, वो यही था कि जी अजीब व गरीब किस्म के जो कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं, वो क्यों बनाते हैं, ज़ुबान के जायके के लिए उसे मज़ा क्या आता है वैसे। अच्छा पूछो ना कि भई आपने ये अजीब व गरीब किस्म का काम क्या किया है, मीठा भी, नमकीन भी, हर चीज़ ऊपर डाल ली है, तो आगे से जवाब ये आता है कि भाई पेट में जाके भी तो मिलना ही है ना उसने, तो पहले क्यों ना मिला लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: अफ़ज़लस्तार मिस्री शाह से।
0: जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैंने आपकी आवाज ट्यून किया ना 101।
0: जी जी,
1: मैंने सुना, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, आपने अपने कभी जिंदगी में कोई उल्टी सीधी चीजें मिक्स करके खाई हैं? मीठा, नमकीन, सारा कुछ?
1: मसरों में चावल डाल के खाता हूँ।
0: नहीं, मसरों में तो चावल डाल के खाए ही जाते हैं, है कि नहीं?
1: जी जी,
0: सही कह रही हूँ ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। ओके
0: चलें, ठीक हो गया। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है,
1: आपका शो बहुत अच्छा है, प्यारा।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा मसरों पे चावल डाल के तो खा ही जाते हैं। मुझे अगर कभी कोई कह दे ना मसर के साथ रोटी खाने को, वो मुझसे नहीं होता ना। मसर जो है ना पक्के हो, वो चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं, और बॉयल चावल। मुझसे कभी भी मसर के साथ रोटी नहीं खाई जाती, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। मैं दोबारा चावल पका लूँगी, अगर चावल ख़त्म हो गए ना और मसर बच गए हैं, मैं चावल दोबारा बना लूँगी, लेकिन मैं कभी भी मसर के साथ रोटी नहीं खाती। पता नहीं, लोग खाते हैं, मतलब दाल ही है ना वो, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे लगता है उसका टेस्ट ही चावलों के साथ आता है। मसर चावल जो है ना, वो मसर चावल ही है। जैसे आप मूंग मसूर की दाल बनाई है, उसके साथ आपने खा ली है चावल, उसके साथ रोटी भी खा लेते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर खाली मसूर की दाल हो, उसके साथ रोटी नहीं खाई जाती मुझसे, उसके साथ चावल ही चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उस पर अच्छा जी नहीं, ये ऐसे ही खाना है। और जैसे मैं समोसों के साथ बता रही थी कि जी मीठी चटनी हो तो मैं नहीं खाती, मैं सूखा ही खा लेती हूँ समोसा, मुझे नहीं पसंद है। इवन के लोग वो चनों वाली चटनी भी डाल के खाते हैं, मैं वैसे भी नहीं खाती। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो नहीं, हमें ज़्यादातर जो है ना वो मुझे लगता है ये वाले काम जो है वो मर्द हज़रात करते हैं, सारा कुछ मिक्स करके खाने का। ख़वातीन ज़रा इस तरफ कम आती हैं, ख़वातीन को होता है वो नफासत और वो सारा कुछ जो है ना, उसके अपने स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं कि नहीं जी इससे नीचे हमने बात नहीं करनी, इसके इससे नीचे हमने कोई काम नहीं करना। तो मैं जो है ना वो बस उसी तरह चल रही होती हूँ। अच्छा जी, फ़खरुल हसन साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस आरिफ फ्रॉम शादबाग से, और कह रही हैं जी बहुत दुआएं आप और सबके लिए, लिसनिंग, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब के लिए हैप्पी बर्थडे कह रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। रेहाना खान भक्कर से मौजूद हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज ना मैं देख रही हूँ कमेंट्स थोड़े कम हैं, चूँकि आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम शॉर्ट था, एक कमर्शियल प्रोग्राम था, पहले 30 मिनट्स का, 30 to 35 मिनट्स का वो गया है, और उसके बाद मैं आई हूँ। हाँ जी, और मैं आज आ भी बहुत टाइम पर गई थी, 10:30 बजे मैं यहाँ पर मौजूद थी, और प्लान यही था कि जी काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ तो मैं अपना प्रॉपर क्यू शीट निकाल लूँगी। तो वो खैर मुझे बहुत ही लंबा फिर मार्जिन मिल गया कि अच्छा ठीक है, आप आराम से अपनी क्यू शीट ही रिवाइज करती रहे तो शायद लोगों को लग रहा होगा कि अब नहीं आना इसने, ये वजह हो सकती है। वैसे साजिद हैं जी लाहौर से, सलाम टू ऑल, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग अली बाय अली जफ़र। बाकी कॉम्बिनेशंस देखा था, हलवा और दही, ओ माई गॉड, हलवा कौन सा वाला हलवा? सूजी का हलवा, हलक से निकाले हलवा याद है ना, ये वो बचपन का एक लतीफा होता था कि कई सब जो है ना सफारा पढ़ा रहे होते हैं, वो हे बोलते हैं, बच्चे हलक से निकालो हे हलवा, तो वो माँ अंदर से आवाज़ लगाती है कि काई साहब ना बच्चे की हलक से ना निकलवाएं, मैं आपको हलवा पका देती हूँ। तो मुझे बात याद आ गई, हलक से निकालना है हलवा। अब ये कौन सा हलवा था, गाजर का हलवा है, सूजी का हलवा है, ये कौन सा हलवा है, ये भी तो निशानदही करें ना आप हमें। यार सूजी के हलवे की वैसे ना अपना ही एक टेस्ट है, बट वो अगर अच्छा पका हुआ हो, मतलब भुना हुआ हो अच्छी तरह, उसकी सूजी जो है ब्राउन हुई हुई हो, और सर्दियों में सूजी का हलवा जो है ना वो सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में मुझे सवैयाँ पसंद है। सवैयाँ और मज़ेदार किस्म की दूध वाली सवैयाँ, अच्छी तरह कड़े हुए दूध में पकी हुई हो, आहा मज़ा आ जाता है। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। 12:53 हो गए हैं, जल्दी से एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: कौन से बात कर रहे हैं और कहां से?
2: आतिफ अली बात कर रहा हूं, दीनानाथ से।
0: कहां से बात कर रहे हैं?
2: दीनानाथ मुल्तान रोड से।
0: ओके, मुल्तान रोड से आतिफ अली। आतिफ अली आप क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से?
2: टॉपिक मैंने आपको सुना है अभी थोड़ी देर पहले से, तो
0: अच्छा आपने
2: वाक्य सुना था मैं।
0: कौन सा वाक्य?
2: बचपन की बात। ओके
0: जरूर जरूर जरूर, जल्दी से सुना दें क्योंकि टाइम शॉर्ट है।
2: एक शादी पे वलीमे पे गया और जब खाना खुला तो खाना खाने लगे सब, तो मैंने ना जर्दा निकाल कर नानू के साथ खाया।
0: ओके
2: हाँ जी, तो ये बहुत अजीब टेस्ट भी था और मजा भी आया, लोग देख रहे थे।
0: अच्छा जर्दा और नान, मैं पता कौन सा नान नानो समझी थी मैं, नानो
2: जी।
0: मैं वो वाली नानो समझी थी।
2: रसगुल्ले, हाँ जी रसगुल्ले भी निकाल रहा था और इधर नान के साथ खा रहा था।
0: वेरी गुड वेरी गुड।
2: देखकर ये
0: सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, मेरा कोई कसूर नहीं है, सच्ची मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा नानो मैं ना वो वाली नानी अम्मी वाली नानो समझी थी, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बात अब वही बात है, लंबी हो जाएगी। ये बात करें ना उससे नान के साथ जर्दा खाने की, तो नान के साथ जो है वो बहुत सारे लोग चावल मतलब नॉर्मल जो बने हुए वो भी ट्राई करते हैं, और नान के साथ खीर भी खाई जाती है ना, और इसके अलावा गुड़ और देसी घी मिक्स करके, शक्कर या देसी घी मिक्स करके वो भी खा लेते हैं लोग। यार मुझसे नहीं होते ये काम यार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो, हमारे ज़िया अंजुम कहते हैं ना कैसे कर लेते हैं आप, वो वाली बात है भाई। अल्लाह ताला ज़िया के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज है मुझे पता लगता रहता है। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके बच्चों की खुशियां आपको देखना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा ख्याल है लास्ट हम ट्रैक ऑन ये करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप बल्कि उसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त ले लेते हैं। ये वाला गाना ऑन ये करेंगे, आतिफ का निकाल के रखा हुआ है इधर, और कुछ गाने निकाल के रखे हुए। अच्छा जी चलें इसको प्ले कर देते हैं। और जी बहुत मजा आया मुझे आज के प्रोग्राम में, आप लोगों से इजाजत लेने का टाइम आ गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआओं की जरूरत है और हमेशा रहती है। उन लोगों की कदर कीजिएगा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको सराहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से 11 से 1 में लेडीज लाउंज में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान।

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

Assalamualaikum and Assalamualaikum Lahore Punjabi chugan wale ganne aan di ron aalo mithe te ravi de kande vasan wale te zinda dilan de sheher Lahore ton ik wari fer thode sab naal mukhatib te maujood thodi apni RJ te mezban Zainab Arshad The listeners umeed nahi balki yakeen rakhde hain ki sade sare sunan wale jithe vi honge theek thaak honge khairiyat naal honge A1 honge first class honge te hamesha di tarah sade program bare desi beats bare udeek rakhde honge ऐसे ही उड़ीक ची जनाब ऐसे ही उम्मीद नाल प्रोग्राम च असी मौजूद हाँ हुणी मैं गलबात कर रही सी कुछ दिन जड़े ने ना बड़े खास हुंदे ने बड़े ही स्पैशल हुंदे ने ते अगर वो थोड़े वास्ते स्पैशल होन ते कोई दूसरा उन्हों हो ज़्यादा स्पैशल बना दे ते एहसास दवाए थानू कि तुसी उहदे वास्ते किन्ने स्पैशल ते किन्ने खास हो स्पैशल स्पैशल बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ते यकीन मनो बहुत ही चंगा एक एहसास हुंदा है बहुत सारियां मोहब्बतां चाहतां जिस वेले नाल होन बहुत

बर्थडे, थैंक यू सो मच, रब ताला थानू सेहत दे, खुशी दे, कामयाबी वाली लंबी हयाती देवे, थोड़ा दिन जन्मदिन जड़ा है बहुत प्यारा गुजरे। शरकपुर शरीफ तो अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरा हाल भी पूछ रहे हो, खुश आमदीद कह रहे हो, जी आया कह रहे हो, सब दा भला सब दी खैर, बहुत शुक्रिया जी। आ गई हैं आप, छा गई हैं आप, लो जी आ गई, बहुत अच्छी आरजे जैनब अरशद, बड़ी मेहरबानी। तुसीं कह रहे हो कि अपने नाल चलो, अपने दे नाल चलो या ना चलो, लेकिन अपने दे साथ कदी जिंदगी च चाल ना चलो, हाय हाय हाय। चलो या ना चलो पर चाल ना चलो, सही हो गया जी। बेस्ट विशेस दा बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक साहब साडे नाल मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तारिक भाई हैप्पी बर्थडे, थैंक यू जी, डेरा डेरा मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम आपी, थानू सालगिरह दी बहुत बहुत मुबारक होए, रब ताला थोड़ा नसीब अच्छा करे, अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे, जज़ाक अल्लाह सुमाम, इन तमाम खूबसूरत समाता नू, शमीम आपी नू फौरी तौर ते सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, फरी आपी नू सलाम, हाय हाय हाय, मैं लगी, मैनू इंज लगा जिवें फौरी लिखना सी। फरी आपी नू भी सलाम पहुँच गया, हमेशा दी तरह जबरदस्त शो है, बड़ी मेहरबानी तारिक भाई। बहुत सारिया चीजा ऐसा हुंदिया ने कि जिन्हां नूं वेखण लई अखां नहीं बल्कि एहसास दी लोड़ हुंदी है, क्या बात है। बरकत रमदानी जमाली बलोच जाफराबाद बलोचिस्तान तो शामिल होने का शुक्रिया। मोहम्मद आदिल मलिक अस्सलाम वालेकुम आरज ज़ैनब अरशद हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो वेरी मच जी, जज़ाकअल्लाह। गुल यासीन नाज आगे दिलनशीन रेडियो लिसनर्स क्लब मुल्तान की तरफों थानू गुल यासीन नाज, मोहम्मद हफीज़ुर रहमान, फौजी असलम, एम इकबाल मेहदी, महबूब रौनक, चक नंबर 6 फैज मुल्तान तो, खलूस भरिया मोहब्बतां भरिया असलाम वालेकुम असलाम। मलिक वसीम पंजाबी मुंडा रियाज पट्टी शादरा वाले, मोहम्मद रजा चौधरी लाहौर वाले, गुलियासीन नाज मुल्तान वाले, क्या बात है जी, सब दा शुक्रिया। ए क्या बात है, मैं क्यों क्या है, थानू पता लग जाएगा। अगला कमेंट आ गया आरजे वसीम अहमद दा, वसीम भाई बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम सानू कह रहे हो, वेलकम ते नाइस ते कह रहे हो, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू जी, जिंदे वसदे रहो आबाद रहो वसीम भाई, थोड़ी विशेज का दुआवां का हमेशा ही शुक्रिया, जिहड़ियां हमेशा मेरे कोल हुंदियां ने, हमेशा मेरे नाल हुंदियां ने, ते आज दे दिन भी तुसी याद रख्या है, बकायदा तौर ते पेज ते आके तुसी मैनू कमेंट राही विश कीता है, ये गल मैनू हमेशा याद रहेगी। जिंदे वसदे रहो आबाद रहो, साढ़े सब दे फेवरेट ने जी वसीम अहमद साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा अंदाज़ ते बहुत अच्छे इंसान,

This is FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

जी जनाब जी, इन्हों कहना है वेलकम ते खुश आमदीद रेडियो पाकिस्तान 101 FM दे लाहौर स्टेशन तो ज़ैनब अरशद है थोड़े नाल देसी बीट्स प्रोग्राम दा नाम रियाज भट्टी। थैंक यू सो मच जी, सलाम दे दे और तमाम रेडियो फैमिली नू रमजान गुजर, इकबाल मेदी, मलिक वसीम अवान, अनवर भट्टी, गुलियासी नाज, मोहम्मद उर्स लगारी नाल सानू कह रहे हो सलाम अलैकुम शादरा लाहौर तो बेस्ट पंजाबी शो है जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हैप्पी बर्थडे कह रहे हो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।

0: रमजान भाई हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच जी। नाल कह रहे हो जी मेरी कॉल ले लो, मैं जरूर कॉल पिक कर दी हाँ। सनी स्न्यूटी कह रहे ने दो दस्ते ते मैं ट्यून इन नहीं कर सकिया, हुणे ट्यून इन कीता है, हो सके ते सोंग चला दे, मैं जरूर कोशिश कर दी हाँ। थैंक यू सो मच सनी स्न्यूटी, तुसी विशेज दितियां दुआवां दितियां, जजाक अल्लाह, जुंदे वास्ते रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम,
0: कौन साडे नाल?
1: और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रमजान अनवर गुजर नाम ही काफी है, नाम ही सुना होगा
0: जी। बिल्कुल,
1: अर्ज किया मैं पागल एक यार दे पीछे मैं पागल एक यार दे पीछे, यार पागल किसे होर दे पीछे, ओ पागल किसे होर दे पीछे, असा सारे ही पागल अगे पीछे, दम दम खुश हर दम खुश, सत बिस्मिल्ला जी ऐनु, ते जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शो

0: भला।
1: थैंक यू, थैंक यू हमारा, बहुत शुक्रिया।
0: मेरे हाथों कामना शुरू हो गए हैं और मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। मैं जैसे गाना चाह रही थी वैसे मैं नहीं गा पाई।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया।
0: आप तक पहुंच गए, थैंक यू सो मच और हैप्पी बर्थडे टू।
1: थैंक यू सो मच हमारा बेग। ओके जी, अल्लाह हाफिज। असं दो कॉल्स लेनिया सन लेकिन वेला मजीद इजाजत नहीं दे रहा। अमारा ने बहुत सुरीली आवाज़ से बड़ा सोहना जहा ट्रैक सानू डेडिकेट किया है। अच्छा जी, सनी चनोटी ने कहा है कि अमल निसार नू, इरम शहजादी ते अनम मलिक नू सोंग डेडिकेट कर दियो, लास्ट वाला है। हैं जी, ठीक हो गया। अज पूरे 3 बजे तक तुहाडे नाल आ, बड़ी मेहरबानी जी, तुसी इन्ना सारा वेला कढ़िया साढ़े लई। सनी साढ़े बहुत पुराने लिसनर ने, इदा फिर गलबात होंगी है जी, बेतकल्फी जी होंगी है। नज़ीर खोसो सोहबतपुर बलोचिस्तान तो सानू सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हूँ पता नहीं सनी ये गीत कोई बहुत स्लो ना हो, लेकिन हूँ की करिए, इन्ने दिनों तो बाद आए हो तो रिक्वेस्ट भी की है। नहीं नहीं, गीत तो लगता साढ़े मुताबिक तो ही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया लिसनर, थैंक यू सो मच। मान वधाना बहुत जरूरी हूँ, एप्रीसीएशन बड़ी जरूरी होंगी है, हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी हूँ। अगर असी तनकीद कर लगे हाँ, कीड़े कड़न लगे हैं, नहीं सोचते किसी की दिल आजारी कर लगे हैं, नहीं सोचते तो आखिर तारीफ कर लगे हैं, क्यों सोचते हैं। तारीफ हमेशा हौसला देती है, अगे वधन की लगन देती है। जरूर मान वधाया करो, जरूर एप्रीशिएट करया करो। खड़े निकले दो बोल जेड़े मुँह निकलते ने किसी वास्ते, चीज़ों बड़ा आसान करते ने किसी वास्ते, किसी के काम हो डेडिकेशन कर लगन जी दिल च पैदा करते हैं, ऐसा करन तो कतराया ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने भी विशेस दितियां, दुआवां दितियां। यकीन मनो मैं बहुत अपने आप में खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ, बहुत ही मैनू अच्छा लग रहा है कि तुसी सारिया मैनू याद रखिया है। आज दे दिन, आज मेरे दिन नू बड़ा ही खास बनाया, बड़ा ही स्पैशल बनाया। हर एक एक लिसनर दा जिन्हां दी कॉल हुण भी मैं नहीं लै पाई, बिल्कुल मैनू एहसास है, मैनू अंदाज़ा है, जिन्हां दे मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पाई, बहुत माजरत करके जा रही हूँ। अपना रखिया जटेरो टेर ख्याल, दुआवां विच सानू साडी टीम नू जरूर रखिया करो याद, क्यों जे वाकई थाड़ियां दुआवां दी सानू बहुत लोड़ आंदी है, बहुत जरूरत रहिंदी है। हर हफ्ते नू मुलाकात हुंदी है 1 to 3 रेडियो पाकिस्तान 101 FM दिलाहो स्टूडियो तो थोड़े नाल मुखातिब ते मौजूद रहिंदी है जैनब अरशद। अज दे प्रोग्राम च साथ इतों तिकर ही सी, इंशाल्लाह तआला आउंदे हफ्ते मुलाकात करांगे। अपना रखिया जटेरो टेर ख्याल, मिलदे हां फिर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।

0: This is FM 101.
1: लगता है आज बहुत आंसू भरेंगे। हेलो,
2: अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है।

0: Like all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
1: From the Analog Roots.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: Kya keh rahi thi tum? एक बार फिर बोलो।
4: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

FM 101. There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: salón.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

certain.

वैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना ही सिर्फ कामयाबी नहीं होती, बल्कि उस चीज़ को मेंटेन करना और उसको उस हालत में रखना कि हम जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको एक ऐसी सिचुएशन में देकर जाएं जिसमें कि वो पहले से बहुत बेहतर हालत में हो, यही असल इम्तिहान होता है। हासिल कर लेने की तो सिर्फ शायद एक दफ़ा की मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद उस करिश्मा को, उस लेगेसी को लेके चलना जो है वो असल इम्तिहान होता है।

0: My dear good lovely and smarty smarty listeners, assalamu alaikum FM 101 and bonjour. आपके दिल पसंद रेडियो स्टेशन FM 101 से आपका अपना मसूद अहमद आपके साथ. वेल जनाब, आज हो गई है सितंबर की जनाब 12 तारीख. वक्त हुआ चाहता है 10:12. आज के प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजिया, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक है, बिल्कुल ठीक बदलती तारीख तक. अगर आप हमारे पास आना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं इस तरह कि आप हमें डायल करेंगे, हमें हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, द नंबर इन माय साइल इज 1711 0017 1, एंड इन योर साइल द नंबर इज 1111. दिस इज द मैजिकल मिस्टिकल एंड द म्यूजिकल नंबर ऑफ लाहौर, और यू कैन से द 111 नंबर. वज़रम कहिए कैसे हैं आप लोग. उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे. जहाँ तक मेरी बात है, अल्लाह का शुक्र और आप लोग की दुआएं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ. लास्ट वीक आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, बस कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से यहाँ मैं नहीं आ सका. मसरूफियत का क्या है जी, मसरूफियत तो हर वक्त होती है, कुछ ना कुछ मसरूफियत जो है वो ज़िंदगी में चल रही होती है, लेकिन चीज़ों को जो मैनेज करना है ना वो असल काम होता है. जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि किसी काम को एक दफ़ा कर लेना जो है वो कामयाबी नहीं होती, बल्कि कामयाबी जो है वो एक आदत है, और उस आदत को बनाना जो है वो एक मेहनत मांगता है, एक लगन मांगता है, एक मुस्तकिल जस्तजू चाहता है. तो इसी तरह कोई भी काम जो हम करते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी जस्तजू और लगन जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो जिस दिन वो लगन पैदा नहीं होती, उस दिन हम कहते हैं कि आज कोई और काम कर लेते हैं. और ऐसा होता है बाज़ुकात कि कभी किसी एक काम को करने को दिल ना चाह रहा हो तो फिर कोई भी काम करने को जो है इंसान का मन नहीं कर रहा होता. लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ज़िम्मेदारी बन जाते हैं, और ऐसी ज़िम्मेदारी बनते हैं कि उनसे जो है पर्दापोशी या चश्मपोशी जो है वो पॉसिबल नहीं होती, वो आपको हर हाल में करने हैं. आपका ख़ुद का हाल, दिल का हाल कैसा भी हो, लेकिन जो काम ज़रूरी करने वाले होते हैं वो हर हाल में करने होते हैं. और शायद यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है, और यही ज़िंदगी का इम्तिहान भी है कि जो करना है वो करना है, जो होना है वो होना है. और कुछ काम ऐसे होते हैं ज़िंदगी के कि जो आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरे नकूश छोड़ जाते हैं, इतने गहरे नकूश होते हैं कि उनका जो असर है वो चंद वर्षों तक, चंद दहाइयों तक नहीं होता. बल्कि वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं.
1: क्या आपको ये गीता कबूल है?
2: जी कबूल है.
3: जी कबूल है.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
0: माशाल्लाह माशाल्लाह. वैसे जी माशाल्लाह, आज हमने भी आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, और सरप्राइज अभी रास्ते में है. सरप्राइज का मैसेज आया था कि मैं रास्ते में हूँ,
2: मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊँ, मेरा इंतजार करोगी?
0: उन्होंने भी यही कहा था.
3: जी
0: बस मैं जल्दी आ रहा हूँ. मुझे कहते हैं जी मसूद अहमद, मेरा आपका साथ रहता है हर हफ्ते के रोज रात 10 से 12 में. ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए. आज बड़ा दिल कर रहा था कि इस गाने को स्टार्ट में चलाया जाए.

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की। मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक इन द शो दैट इज़ कॉल्ड शब खेजियाँ। वेल जी 111 111 तो हमारा नंबर है ही जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो लाइव कॉल्स हैं वो हम 11 बजे के बाद प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और उससे पहले जो हम आपकी कॉल शामिल नहीं करते, सिर्फ जो मैसेजेस आप हमें करते हैं 4471 पर उन्हें हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, या फिर आप जो फेसबुक पर हमारी जो पोस्ट है उस पर कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में अपनी शमूलियत का एहसास दिलाते हैं, उस एहसास को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जो कॉल्स हैं वो हम 11 बजे के बाद प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और उसमें आज के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो मैंने सोचा है, और मैंने कहा कि हमारे जो सरप्राइज़ आपके लिए हमने आज साथ एक रखा है, उस सरप्राइज़ को भी आ लेने दें, उसके बाद ही हम जो टॉपिक है उसको डिस्क्लोज़ करेंगे। वैसे भी अभी टाइम है हमारे पास। और वेल जी, अगर आप इस रोड पर ड्राइव करें तो ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए और वो तमाम लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन सब के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। और इसके साथ ही वो तमाम लोग जो कि आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं उनसे हम कहेंगे जनाब हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मैनी एंड मैनी मोर। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों सालगिरह देखने की तौफीक अता फरमाए, मगर सेहत और तंदरुस्ती के साथ।

0: वेलकम वेलकम बैक। और बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है और मेरा बहुत सुनने को दिल कर रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक को, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक का मूड के साथ बड़ा ताल्लुक होता है और मूड बनाने के लिए भी बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत होती है। वैसे जी, मेरा तो ख्याल था कि जिस सरप्राइज़ का हमने जिक्र किया तो वो सरप्राइज़ थोड़ा सा टाइम और लेगा, लेकिन बहुत जल्दी की उन्होंने आने में, पता नहीं किस बात की जल्दी थी उन्हें। एनीवेज, ये जल्दी जो है ये मोहब्बत की होती है, चाहत की जल्दी होती है कि जो इंसान को खींच लाती है, वरना बड़े लोगों के पास कहाँ टाइम होता है। एनीवेज, ये हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि आज जनाब आपके लिए एक सरप्राइज़ हमारे पास, और सरप्राइज़ अपनी जगह है और वो तोहफा है, और तोहफा हमारे लिए, सरप्राइज़ आपके लिए, ठीक है। और प्रोग्राम तो हम दो हफ्ते पहले से बना रहे थे, लेकिन लास्ट वीक चूँकि मैं भी नहीं आ सका तो इसलिए फिर हमारा ये जो प्रोग्राम है ये पेंडिंग हो गया। हमारे साथ जनाब आज FM 101 की एक बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत प्यारी सूरत, बहुत प्यारी सीरत और बहुत चाहत, बहुत प्यार करने वाले इंसान और आरजे और दोस्त और भाई मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं इतनी तारीफ़ें करूं, लेकिन माइकर में उनको ऑन ना कर सका तो मुझे उनको बहुत गुस्सा आएगा मेरे पे कि आपने मेरी इतनी तारीफ़ें तो कर दी लेकिन मेरा माइक जो था वो आपने ऑन नहीं किया, तो मैंने ये माइक भी सर आपको ऑन कर दिया। एनीवेज जी, मेरा ख्याल है कि मैं जितना ज़्यादा इस बारे में बोलूँगा उतना मैं उनकी शख्सियत को बयान नहीं कर सकूँगा, तो बेहतर है कि मैं ख़ुद ही उनको मौका दूँ कि हमारे साथ आज जनाब बहुत प्यारे, बहुत मोहतरम आरजे अली रज़ा मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला हमारे लिए।
1: मसूद भाई, आपका बहुत शुक्रिया और आपकी तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। और जो आपने कहा ना तोहफा है हमारे लिए, वो अक्सर हम किसी को कहते हैं ना ऐ तो तोहफा ही है। ये वो वाला तोहफा तो नहीं है?
0: नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला तोहफा बिल्कुल नहीं है, ये तोहफा है।
1: ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी तारीफ़ों का। मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप
0: नहीं, ये तारीफ बिल्कुल नहीं है, ये हमने जो आपके बारे में पाया वो हमने बयान किया।
1: तारीफ बिल्कुल नहीं है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। लिसनर्स, थैंक यू सो मच। और मुझे तो आप जानते होंगे, आरजे अली रज़ा हेयर।
0: बिल्कुल जी। और अच्छा रज़ा, आपका प्रोग्राम कब होता है सर?
1: मेरा प्रोग्राम फ्राइडे को होता है 5 से 7।
0: ओह यस यस यस यस,
1: ड्राइव टाइम में।
0: ड्राइव टाइम में, अच्छा। तो ड्राइव टाइम में आने का और इस टाइम आने का कोई फ़र्क आपको फील हुआ?
1: फ़र्क यही है कि मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है।
0: लेकिन कल तो वर्किंग डे नहीं है ना?
1: हाँ, क्या
0: कल वर्किंग डे तो
1: नहीं? नहीं बिल्कुल, कल वर्किंग डे नहीं है। हाँ, कल छुट्टी है जनाब। आप कहेंगे तो हम सुबह तक बैठे रहेंगे।
0: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो कि कल आपको वर्किंग डे भी हो और सुबह आपने जल्दी उठना हो, तो क्योंकि हम तो रात के पंछी हैं, तो हम तो रात को जागते हैं और आधा दिन सोते हैं और आधा दिन काम करते हैं, फिर रात को जो है वो काम चलता है।
1: मजदूर बंदे का हर दिन वर्किंग डे होता है।
0: होए होए,
1: ठीक है।
0: तो क्या बात है,
1: अभी भी वर्क, अभी भी वर्क पे होना
0: ये बिल्कुल।
1: तो कल का दिन भी वर्किंग डे। यार ये बंदा बहुत अच्छा है यार, मैं इसे कुछ और मांग लेता।
0: मैंने तो कहा था इस बंदे की 2-3 फोटोकॉपियां करवा लें, लेकिन मानते नहीं है हमारे।
1: इस बंदे को इस मैसेज का नहीं पता?
0: नहीं, इस बंदे को इस बंदे को मैं आपको बता दी भाई, इस बंदे को मैं कब से जानता हूँ?
1: कब से?
0: इस बंदे को मैं, हाँ इस बंदे को मैं तब से जानता हूँ कि जब
1: इस बंदे को इस मैसेज का नहीं पता।
0: नहीं, इस बंदे को इस बंदे को मैं आपको बता दी भाई, इस बंदे को मैं

0: रुला खुला वो मैं क्या अब इसके लिए प्यारे से अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे, लेकिन क्या बना लिया आपने अपना हाल, क्या हुआ?
1: बस जब आपको उनकी कहानी सुनने को मिलेगी ना तो आप भी उनके साथ उनके हमदर्द बन जाएंगे।
0: वैसे एक बात है, ये बंदा कहानी है बड़ी सुनाता है, ये बात है।
1: ये मुझे अक्सर बच्चों ने कहा है इसके बारे में। एनीवेज जी, अली रज़ा जी, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। हमने इस प्रोग्राम में ट्रैक शामिल करने और उस ट्रैक के बाद फिर से हमारी जो है वो खूबसूरत गुफ्तगू जो आपके साथ है उसका आगाज़ होगा। तो क्योंकि लिसनर्स को भी थोड़ा सा जो है वो हमने एंटरटेन करना है साथ साथ, और ये जब हम एक ही सिस्टम पे दोनों चीज़ें ऑन कर लेते हैं ना तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ओवरलैप हो जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: एनीवेज टॉपिक के हवाले से भी आपको बताएंगे इस ट्रैक के बाद। मुझे कहते हैं मसूद अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं आरजे अली रज़ा अपनी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत शख्सियत के साथ। हम दोनों का साथ रहेगा न जाने कब तक।

0: वेल इज वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं आप अली रजा की और मसूद अहमद की। वेल जी, मेहमान की हमने खातिर तवाज़ो तो कर दी है, मेहमान को हमने चाय शाय तो पिला दी है। नहीं नहीं, वो वाली खातिर थोड़ी वो वाली खातिर यहाँ नहीं होती अली भाई। ओह यस, देखा ना,
1: मेहमान की आपने आवाज़ तो बंद कर दी है।
0: वो आज मैं ना एक शॉप पे गया तो वहाँ पे जो है ना एक शायद वो दोनों रिलेटिव थे आपस में, जो जो दुकानदार था और उसकी दुकान पे उसको मिलने के लिए आया, तो वो जनाब इसी तरह कहते हैं ओए मेहमान आए ने, तो कहता है पूछो की ले आए ने।
1: आए तो की ले आए गए। वो जब कोई बाहर से आता है ना, कोई गेस्ट, कोई आपका कजन या कोई बहन भाई, तो बंदे का ज्यादा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, उसके बैग की तरफ होता है।
0: हाथ में क्या,
1: फिर बच्चे स्पेशली वेट कर रहे होते हैं बैग का, दो खोलोगे बैग कब खुलेगा, और फिर अगर बैग में से कुछ नहीं मिला है फारक साढ़े हस्ते को
0: ले आए। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, इनके आने से
1: भाई को ताल्लुक
0: ताल्लुक ही कोई नहीं है।
1: और शादियों में भी अक्सर होता है ना कि कार्ड पे नाम ना लिखवाएं तो रिश्तेदार नाराज़, कोई रिश्तेदारी नहीं जाना में आते।
0: बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अभी कुछ फैमिलीज तो शायद इस चीज़ से बाहर आ गई, लेकिन कुछ फैमिलीज में अभी भी बड़ा इस चीज़ का जो है वो रखा जाता है कि नाम नहीं आया हमारा, या ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। तो बहरहाल ये ट्रेडिशंस जो हैं ये अच्छी भी होती हैं समटाइम्स, लेकिन समटाइम्स ये वबाले जान भी बन जाती
1: है। कभी कभी ये शादियों का हुस्न भी होता है
0: और कभी कभी हुस्न को तबाह भी कर देते हैं,
1: तबाह भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। एनीवेज अली भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक मैंने पहले तो मैंने सोचा था कि आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे, फिर मैंने कहा नहीं, आपकी शख्सियत को ये जेब नहीं देता कि आपको पहले से कोई तैयारी करने का कोई मैं मौका दूं कि जी हमारा आज का टॉपिक ये, हम इस पे बात करेंगे। तो टॉपिक जो हमारा आज का ये है ना, वो ये है कि हमने लिसनर से भी पूछना है और आपस में भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो टाइम हमारे पास मजीद बचा है, कि जिंदगी का कोई ऐसा फैसला कि जिसने जिंदगी को अक्सर बदल दिया हो किसी भी सिमत में, और आप यानी एक नई सिमत मिल गई हो आपकी ज़िंदगी को,
1: बिल्कुल,
0: और आप उस फैसले से मुतमईन भी हो।
1: अक्सर हम ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले करते हैं,
0: हाँ,
1: और कहते हैं ना कि ये टर्निंग पॉइंट है,
0: टर्निंग पॉइंट,
1: वो टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं वो फैसले,
0: ऐसे ही है।
1: और वो फैसले आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और मैंने भी बहुत सारे फैसले किए हुए हैं, और बहुत सारे फैसले उनमें से अच्छे भी साबित हुए हैं, और बहुत सारे फैसले बहुत अच्छे भी साबित हुए हैं, और कुछ फैसले ऐसे थे जो बहुत बुरे भी साबित हुए हैं, लेकिन ये जिंदगी है, ये सिलसिला चलता
0: रहता है। बिल्कुल,
1: लेकिन फैसले करने चाहिए,
0: बिल्कुल
1: इंसान को डिसीजन मेकर होना चाहिए,
0: होना चाहिए।
1: ये नहीं यार, कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी बात आई, तो यार मैं अच्छा करके बताता हूँ, देखेंगे, कर लेंगे, कल कर लेंगे, टाल में टोल के साथ, या यार कोई पुराना रेफरेंस लेके आओ, क्या करना है इस पे। ठीक है, इंसान को ये सारी चीज़ें ठीक है होनी चाहिए, लेकिन एक डिसीजन मेकर होना चाहिए। कोई आपके पास सवाल लेके आया है, कोई आपके पास कोई फैसला लेके आया है, तो आपके इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसका फैसला कर सकें।
0: अच्छा, लेकिन फैसला करना जो है या फैसला लेना जो है, वो भी एक बहुत आपकी एनर्जी, दानिशमंदी और एक,
1: बिल्कुल,
0: आपको बहुत सारी चीज़ों का अहाता करना पड़ता है उसमें।
1: एग्जैक्टली,
0: और हम ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड जो फैसला होता है वो, तो खैर फिर बहुत ही एक बहुत ही ब्रेवरी का और बहादुरी का काम होता है कि आप वन साइडेड फैसला कर लें कि अगर ये है, मतलब ये ऐसे कह दिया मैंने, ये सोच लिया, तो ये ऐसे ही है, उसमें फिर आप गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ना छोड़ें अगर, तो उसके लिए भी एक आपको बंडल ऑफ एक्सपीरियंस, बल्कि नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ बंडल ऑफ एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं कि जिसपे आप उस फैसले को बिल्ड कर सकें। तो अगर कोई ऐसा छोटा फैसला हो तो फिर तो लोग कहेंगे तो बच्चों वाले, बच्चे वाली गाली की थी, इन्होंने बच्चे वाला काम ही किया, जो भी किया। तो एनीवेज इस बात पर हम भी डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह 12 बजे तक, और 11 बजे के बाद आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं, उससे पहले हम कोई कॉल्स प्रोग्राम में नहीं लेते, ये हमारी समझ ले कि गंदी आदत है कि अच्छी आदत है ये नहीं पता, लेकिन ये कि हम बस ऐसे ही करते हैं, ये हमारा
1: ऐसा क्यों करते हैं,
0: बस मैं ऐसे ही हूँ,
1: अब ऐसे ही बचपन से आते हैं,
0: मैं बचपन से ही ऐसा हूँ,
1: बचपन तक का वैसे ही रहेंगे, देख
0: बचपन से बचपन तक का जो सफर है वो ऐसे ही गुजरा,
1: ऐसे ही गुजरा, अब चलें आप ठीक हो जाएंगे,
0: कहते हैं सारे यही कहते हैं।
1: वैसे बताए आपको, आज मुझे आपके साथ शो करने से ज्यादा किस चीज की खुशी है,
0: किस चीज की,
1: कि आज मुझे आरजे निमरा मसूद भी सुन रही होगी।
0: नहीं वो तो अक्सर सुनती रहती है, वो तो घर में काम शाम भी कर रही हो तो वो तब भी अच्छा। वो सुन रहती है साथ साथ, और फिर बाद में फीडबैक जो है वो चल रहा होता है हमारा आपस में, ये सही, सही, ये ऐसे ये वैसे, इसको ऐसे इसको ऐसे होने चाहिए। लेकिन बाय चांस जो कह लें कि मेरा जो टाइम है उसमें तो मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं किसी आरजे को सुन सकूं। हाँ इतना ज़रूर होता है कि अपना प्रोग्राम जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसको सुनने के बाद कह लें किसी और आरजे को सुनने के। तो इसलिए जो है ना मैं कहता हूँ कि यार सब मुझसे बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो मतलब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, किसी और को क्या कहूँ।
1: आप ऐसे तो बिल्कुल ना कहें, आपका प्रोग्राम बड़ा हिट होता है, बड़ा हिट और फिट होता है आपका प्रोग्राम। मैंने अक्सर आपका प्रोग्राम सुना है, मैं आपको मैसेज भी करता हूँ,
0: बिल्कुल ऐसे ही आपका वो दिल का साइन जो है ना वो आ जाता
1: है। किसी को
0: अब वो पता नहीं आप ये शो करते हैं कि दिल में छुरियां चल रही है, आप वो दिल देते हैं
1: नहीं
0: बता सकते हैं।
1: मैं कहता हूँ दिल दिल
0: ऐसे ही ऐसे ही, उसमें वो होता भी रेड कलर का और उससे जाहिर होता है कि ये खून के आंसर हो रहे हैं,
1: लाल रंग फिर खतरे का निशान,
0: खतरे और मोहब्बत दोनों का ही है, और मोहब्बत भी तो खतरे का ही काम है।
1: अब आप जा रहे हैं
0: नहीं नहीं नहीं
1: जैसे जैसे जैसे रात जमा हो रही है आप जा रहे हैं,
0: ऐसे एकदम बढ़ेंगे ट्राई की जानेब, और इस ट्राई के बाद एक दफा फिर से आपके साथ होंगे। अगर आप हमारे पास आना चाहें तो 111 111 हमारा नंबर है, उस पर 11 बजे के बाद आप आ सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए, और उससे पहले अगर आप आना चाहें तो उससे पहले 4471 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पर हमारी पोस्ट है उस पर आप कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज अलीरजा मैंने आपके लिए स्पेशल वो वाला गाना भी क्यों किया हुआ है।
1: कौन सा वाला?
0: जिस आप प्रोग्राम सुन रहे थे और आपने कहा था ना वाह वाह क्या गाना है।
1: अच्छा हाँ होगा कोई अभी आप चलाएंगे तो मुझे पता
0: मैं चलाऊंगा, फिर मैं स्क्रीन आपकी तरफ कर दूंगा। वैसे मुझे कहते हैं मसूद अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। चलिए ये जो आवाज पाकिस्तान में आई है ना हीरा कैसर की, आपने सुनी है अभी तक कि नहीं?
1: मैंने सुनी है,
0: सुनी है ना,
1: अच्छी आवाज, अच्छी
0: कमाल ही लगा है मुझे तो।

0: सबसे पहले तो ये जो पेयरिंग थी, अमेजिंग पेयरिंग थी, ये दो वाकई में पावर हाउस हैं हमारे पाकिस्तान आइडल के.
1: थैंक यू. थैंक
2: यू. ये बड़ी जरूरी है.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स,
4: व्हाट्स न्यू? यू विल नो इफ

0: बल्दी एफ एम 101 टाइम चेक 10:00 हो चुके हैं 46 मिनट। एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं आप जल्दी आवाज़ सुन रहे हैं आप अली रज़ा की और मसूद अहमद की। ओहो ओहो
1: ये बस जो है ना
2: बस ठीक है ठीक है। नहीं नहीं बंद कर दो यार मेरा माइक बंद कर दो यार क्या चाह रहे हो आप?
0: शुक्र है आपने माइक का कह दिया हमने लाइटों का नहीं कह दिया। तो एनीवेज
2: आप सुन रहे हैं आरजे अली रज़ा की आवाज़ एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर और 10:47 हुआ चाहते हैं आपका हमारा साथ रहने वाले ठीक ठीक 12 बजे तक।
0: बिल्कुल ऐसी है और 12 बजे तक में जनाब आपकी जो कॉल्स और मैसेजेस हैं वो भी अब साथ साथ हम प्रोग्राम में ले चलें क्योंकि आप तो हमारे अपने मेहमान हैं। आपका अगर हम माइक नहीं भी ऑन करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं आप माइंड नहीं करेंगे।
2: मैं बस 5 मिनट के लिए मेहमान था अब मैं मेज़बान बन
0: गया। बस ठीक हो गया। तो वैसे जी आपके जो मैसेज हैं 4471 पे और जो फेसबुक पर आपके कमेंट्स हैं उन्हें हम प्रोग्राम में शामिल साथ साथ जो है वो करते चलेंगे। और उसमें जब किस किस ने हमें मैसेज किया है। अच्छा रिजा आपको भी प्रोग्राम में ऐसे होता है कि कुछ मैसेज जो होते हैं वो बड़े एक क्या कहें टिपिकल फॉर्मेट पे और एक टिपिकल अशखास की जानिब से वो मैसेज
2: वो मैसेजेस मिलते हैं और प्रोग्राम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था मैसेज आ जाते हैं वाओ वेरी नाइस प्रोग्राम ये लेकिन ये लिसनर्स की मोहब्बत है जी ये वो है। बताते हैं कि ऐसी है कि सी ते तुसी आगे हो
0: आगे हो ते एनीवेज जी मरीना मरीना बिलाल थी पहले अब मरीना ए आ रहा है सिर्फ लिखा हुआ। अच्छा। मरीना मैसेज कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह भाई वेलकम थैंक यू सो वेरी मच। और नज़ीर खोसो साहब हैं सोबतपुर से। साजिदा जहूर साहिबा हेलो आरजे मैं फैसलाबाद से आपके साथ हूँ बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफीज़ुररहमान साहब हैं। मोहम्मद रज़ा चौधरी साहब हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब ठीक ठाक हैं। आज दो चौधरी हो गए।
2: अच्छा जी
0: ए भी चौधरी ने तुसी भी चौधरी हो
2: क्या बात।
0: एनी वेज जी मलिक वसीम खान साहब ने मैसेज किया कह रहे हैं माशाल्लाह उम्दा प्रोग्राम थैंक यू। और रेहाना खान ने भक्कर से मैसेज किया। गुल यासिन नाज ने मैसेज किया है और भी मैसेज हैं। रज़ा चौधरी साहब ने फिर मैसेज किया और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा आपका सलाम पहुंच गया। मोहम्मद हफीज़ुररहमान साहब हैं भक्कर से और ये वही नाम रिपीट हो रहे हैं फिर
2: जी। हाँ मुझे एक मैसेज आया कि ज़िंदगी के सफ़र में मिल जाते हैं वो लोग। ज़िंदगी के सफ़र में मिल जाते हैं लोग मिलकर भी क्यों बिछड़ जाते हैं लोग। सफ़र तो सफ़र एक दिन कट ही जाएगा फिर क्यों रास्ते में छोड़ जाते हैं लोग। बताए ना ज़रा ये क्यों रास्ते में फैसला कर लेते हैं छोड़ने का।
0: देखें ये तो सिचुएशंस पर डिपेंड कर सकता है करता है हो सकता है अम्मी अबू ना माने हो तो इसलिए छोड़ के
2: अब्बा नहीं माने
0: अब्बा नहीं माने तो छोड़ के जाना पड़े।
2: और फिर वो कहता है उदो अब्बा की थे जान
0: बस वो बल्कि उससे किसी ने मुझे शायर का नाम नहीं शायद अनवर मसूद साहब का कि ऐसा अब्बा तुमने कहाँ से लगा था या वो जाहिद साहब हैं शायद उनका है वो लेकिन वो है सही ज़रूर के ऐसा अब्बा कितों लब्बा थी। तो उस पर फिर बंदा ये कहता है। अच्छा जो लोग छोड़ जाते हैं अली रज़ा
2: जी
0: उसमें क्या ख्याल है आपको कि जब वक्त गुजरता है एक हम फेज़ से उस फेज़ से जब बाहर आ जाते हैं और एक नेक्स्ट फेज़ में ज़िंदगी के दाखिल होते हैं तो कभी ये फीलिंग भी आती है कि यार अगर वो जो हुआ ना अच्छा ही हुआ था। वो
2: अक्सर होता है ये
0: अक्सर होता है
2: यकीन करें अक्सर होता है और ये अक्सर तब होता है कि जब आपको उस टाइम पे कोई उससे बेटर मिल गया हो उससे कुछ बेटर ऑप्शन आपके पास मौजूद हो फिर कहते हैं यार चंगा ही हो यार जान छोटी। अक्सर ऐसे होता है।
0: अच्छा बेटर ऑप्शन में आप किस तरह से उस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि ये बेटर ऑप्शन है।
2: अच्छा बेटर ऑप्शन इस तरह डिफाइन करूँगा कि देखें इस टाइम आप मेरे साथ मौजूद है ना आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है आपसे भी अच्छा कोई हो
0: यकीनन
2: ठीक है जब वो आपसे अच्छा मुझे कोई मिल जाएगा ना फिर मैं कहूँगा यार ये बेहतर है। मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँगा
0: तो लेकिन चलें ये हम विद इन सम सर्कमस्टेंसेस तो इस चीज़ को कह देते हैं लेकिन ज़िंदगी की जो जेन्युइन एक ज़िंदगी की जो हकीकत है उसमें बेटर की जो तारीफ है वो डिफरेंट होती है कि हो सकता है कि कभी हम एक सिनेरियो में जिसको बेटर समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बेटर है या ये उससे बेटर है
2: बिल्कुल
0: वो ज़िंदगी हो सकता है कोई फेज़ ऐसा लाए या कोई एक ऐसा ट्विस्ट ले कोई ऐसा टर्न ले कि आपको लगता हो कि जो मुझे उस वक्त बेटर या जिसको मैं बेटर समझ रहा हूँ अगर इसकी जगह वो शख्स होता
2: तो वो ज़्यादा
0: उस वक्त इससे ज़्यादा बेहतर
2: होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी होता
0: तो ऐसे कभी कभी हो जाता है ना।
2: मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ हुआ है ऐसे।
0: मैंने इसलिए आपकी उस सोच को ज्यादा आगे नहीं जाने दिया मैंने उसको काबू कर लिया क्योंकि आप मुझे बहुत गहराई में जाते नजर आने लगे तो एनीवेज ही हमारा टॉपिक भी आज कुछ इसी से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ सीरियस टॉपिक हमने इसको नहीं बनाना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही कोई हम, क्योंकि मैं उम्मीद कहता हूँ कि मैं बहुत ही बेअदब सा इंसान हूँ, तो मुझसे इतनी अदब वाली गुफ्तगू जो है वो मुझसे नहीं होती।
2: कैसी गुफ्तगू होती है आपसे?
0: मैं मुझसे जैसी होती है वो ली भाई हम माइक पे नहीं कर सकते, ठीक है ना?
2: तो
0: इसलिए हम एक मीडियम से रास्ते पे रहते हुए चलेंगे और साथ अपने लिसनर्स को भी लेके चलेंगे। 4471 पे हमें मैसेज किया है जी, एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, और ये मैसेज हमें सिद्रा ने किया है, कह रही है कि जी मैं उसे रिजेक्ट करके आज तक मुतमईन हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो गई है।
2: तो रिजेक्ट कर दिया
0: इन्होंने,
2: और वही बात के अब्बा
0: उन पता नहीं हालात की,
2: पता नहीं क्यों रिजेक्ट किया। हर किसी का अपना एक वो होता है ना,
0: पॉइंट ऑफ व्यू होता है, रिजेक्शन
2: का होता है, रिजेक्शन का, और हर एक की सिचुएशन अलग होती है।
0: ऐसे ही है
2: कि उसने उसके साथ क्या किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया।
0: अच्छा वैसे आप कभी जब कोई फैसला लेते हैं
2: जी,
0: या कोई आपने अभी तक कोई डिसीजन अगर लिया है जिंदगी में, ऐसा कोई बहुत ज्यादा सीरियस डिसीजन की हाँ, बात नहीं हमने करने की, हम उसकी बहुत ही गहराई में चले जाएंगे,
2: हाँ, हाँ,
0: तो आपने क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखी थी?
2: अच्छा मैंने जब भी कोई डिसीजन लिया ना, मैं आपको FM की बात करता हूँ, मैंने जब ये डिसीजन लिया कि मैंने RJ बनना है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा। सबसे पहली चीज़ मैंने ये सोची कि यार जब मैं माइक पे जाके बोलूँगा और जब माइक पे आर्जेस बोल रहे होते हैं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि ये आर्जेस कैसा बोलें, मैं कैसा सुनना एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। तो मैंने खुद को वैसा बनाने की कोशिश की और कोशिश की कि मैं उस तरह से बोल पाऊँ। अच्छा फिर मैंने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना शुरू किया, इस चीज़ को मैंने बड़ा अपनी आवाज़ में बड़ा मैंने फोकस किया कि यार आवाज़ तो अच्छी होनी चाहिए और एक अंदाज़ भी होना चाहिए। आवाज़ को मैं बहुत रिकॉर्ड करता था और रिकॉर्डिंग करके मैंने घर में एक स्टूडियो बनाया हुआ था अपना।
0: अच्छा
2: हाँ, उसमें मैंने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाना, आवाज़ को रिकॉर्ड करना, फिर उसको मैंने सुनना, फिर मैंने अपनी आवाज़ें कुछ लोगों को भेजनी। अच्छा। उन्होंने सुन के मुझे उस पर रिव्यूज़ देने, फिर मैंने कुछ वेब रेडियोज़ पे शो करना शुरू किया। तो मैंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा कि यार एक तो अगर मैंने RJ बनना है तो मुझे अपनी आवाज़ पे काम करना पड़ेगा, अपने स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, अपने
0: डिलीवरी जो है
2: काम करना पड़ेगा, और जैसा मैं सोचता हूँ कि RJ को ऐसा बोलना चाहिए, या मुझे जैसे RJs पसंद आते हैं मुझे उस तरह का बनना चाहिए।
0: बिल्कुल सही। तो उसमें यानी कि आपका ये कहने का मकसद है कि सिर्फ फैसला लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए कुछ थोड़ा सा अपने आप में भी एडजस्टमेंट्स आपको अपने आप में भी करनी पड़ती हैं,
2: करने पड़ते हैं,
0: तो फिर ही आप उस फैसले को सही साबित कर पाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर देखें ना, हम शादी का फैसला कर लेते हैं कि मैंने फलां जगह शादी करनी है, लव मैरिज कर लेते हैं, तो फिर वो फैसला जब हम कर लेते हैं, फिर ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी हमें उस फैसले पर अटल रहना पड़ता है। उस फैसले पे हमें हमें ये नहीं साबित करना होता कि यार ये मैंने कोई गलत फैसला कर दिया, चाहे वो गलत ही हो रहा हो,
0: चाहे दिल में इंसान अपने आप को गालियां दे
2: रहा हो, कुछ भी हो रहा हो,
0: लेकिन मुंह पे नहीं खा सकती,
2: मुंह पे नहीं खा सकती। बहुत नॉटी है।
0: मैंने आपसे कहा था मैं बेअदब सा बंदा हूं, लेकिन इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। एनीवेज ये तो जस्ट एक ऐसी मजाक के लिए बात थी, और वो इसलिए कि अली रजा कुछ सीरियस होते जा रहे थे, मैंने कहा नहीं अली भाई को सीरियस नहीं होना,
2: सीरियस नहीं होना। तो अच्छा, मैंने लास्ट कंबाइन शो फरहान के साथ किया।
0: अच्छा।
2: बड़ा मजा आया उसके साथ भी ना। अच्छा। प्रोग्राम करके और
0: फरहान को मैंने वो झुकते मारे फरहान को। वैसे आज मेरे जहन में हो सकता है नहीं, फरहान को भी इनवाइट कर लेते आज तो, ठीक है, लेकिन
2: फरहान को होना चाहिए।
0: हाँ, होना चाहिए था। वैसे फरहान का चेहरा देख के ना तो बंदा वैसे ही सीरियस हो जाता है।
2: अच्छा फरहान का चेहरा देख के आप सीरियस होते हैं? मैं नहीं सीरियस हुआ कभी। मैं उन्होंने कभी सीरियस लिया नहीं।
0: लिया नहीं। नहीं वो तो सुने कार वाले नहीं लेंदे, लेकिन
2: नहीं यार फरहान भाई यारों के यार हैं
0: और बिल्कुल ऐसे ही,
2: लेकिन मेरे कोई नहीं यार। मेरे तो भरा नहीं।
0: हाँ बिल्कुल ऐसी है जी, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे उन्हें, और एक बिल्कुल हमारा फैमिली चैनल तो जो है सो है, हम आपस में भी एक फैमिली की तरह है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और फैमिली में सभी लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और यही ख्याल जो होता है यही हमें जो है वो बाकी लोगों से منفرد کرتا ہے اور ایک مضبوطی دیتا ہے. اور دیکھیں جب انسان تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے نا,
2: بابا ہو جاتا
0: ہے, ایسے ہی ہے جب بچپن سے پچپن کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا, تو پھر چاہے سامنے لکھا ہوا بھی ہو کہ یہ میوٹ ہوا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا.
2: نظر جیسے میں کہتا ہوں کھول دے آواز, نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا بھائی ٹھیک ہے میں چل رہا.
0: Anyways, مجھے کہتے ہیں مسعود احمد, میرے ساتھ موجود ہیں علی رضا, ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا 12 بجے تک.
2: کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا ویسے میں نے بہت سنا ہے کہ آپ کے شو میں گانے بڑے الگ سے چلتے ہیں, یہ کیا سین ہے,
0: یہ
2: کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں؟
0: وہ میں آپ کو بھی ایسا ایسا دکھاؤں گا,
2: یہ پاور آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟
0: یہ آمد ہوتی ہے علی بھائی,
2: آمد
0: آمد ہوتی ہے
2: کس کی,
0: کیفیت کی.
2: ویسے جتنی لائٹیں چل رہی ہیں یہ کیفیت ہونی نہیں چاہیے,
0: یہ جو نہیں نہیں یہ کیفیت یہاں تاری نہیں ہوتی. یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ مجھے بولنے کے لیے ٹاپک نہیں چاہیے, میں کیو شیٹ اپنی ضرور بنا لیتا ہوں, کیونکہ جو سانگز ہیں نا وہ مجھے ہوتا ہے کہ میں سانگ پہلے سنتا ہوں خود, اس کے بعد انہیں پروگرام میں شامل کرتا ہوں کہ اگر مجھے خود کو وہ لگ رہا ہے نا تو پھر میں کروں گا کہ اس پروگرام کو میں شامل کروں, اور اس کو پھر میں نے کس سیاق و سباق کے ساتھ شامل کرنا ہے تاکہ وہ اپنا پورا جو اثر ہے نا وہ چھوڑ کر جائے.
2: واہ واہ,
0: تو اس لیے جو ہے نا کچھ تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ سانگ سلیکشن جو ہے
2: بہت اچھا کرتے ہیں. ویسے آج آپ نے شرٹ بھی بہت اچھی پہنی ہے.
0: خالی شرٹ اچھی لگ رہی ہے, شرٹ میں بھی اچھا لگ رہا ہوں,
2: آپ تو ہیں ہی اچھے. وہ اکثر ہوتے ہیں نا فٹ بال میچ کے بعد شرٹس ایکسچینج کرتے ہیں تو جان لگے کر لیں گے.
0: اب میری سائز بھی مجھے لگتا ہے رلدا مل رہی ہے ساڈا,
2: نہیں میری میری باہر سے آئی ہوئی ہے,
0: میری بھی باہر سے آئی ہوئی ہے.
2: اچھا یہ باہر
0: شیخوپورے کے,
2: آئی تھنک نیوز بریک بھی آنے لگی
0: ہے. یس نیوز بریک بھی آنے لگی ہے اور گانا ہمارا جو ہے وہ باتوں میں نکل گیا, تو اس کو ہم بعد میں پھر چلا لیں گے.

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की और मेरे साथ आरजे मसूद मौजूद हैं। उनकी आवाज़ को मैंने थोड़ा सा ना दबा दिया, मैंने ये मेरे साथ शरारतें कर रहे थे ना, मेरी आवाज़ को बंद कर रहे थे, हूँ मैं तुम्हारी आवाज़ को बंद करता हूँ, बोल के वहाओ जरा। 11:18 हो गए, आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक ठीक 12 बजे तक। कॉल करें 04221100101। आज का सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा फ़ैसला था जो आपको आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, आपके लिए बहुत अच्छा फ़ैसला साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं परवीन आसिफ कराची से बोल रही हूँ।
0: जी कैसी हैं आप, ठीक हैं?
1: जी मैं ठीक हूँ, आपको खुश आमदीद।
0: थैंक यू सो मच।
1: मसूद साहब,
0: मसूद साहब को मैंने ना ये मेरी आवाज़ बंद कर रहे थे ना बार बार, मैंने इनकी आवाज़ को ऐसा दबाया ये बोल नहीं सकते। ठीक है, ठीक सही किया मैंने आपके साथ, इसको इनको मैंने साइड पे लगा दिया। हाईजैक कर लिया मैंने, प्रोग्राम हाईजैक कर लिया। देखें
1: ये क्या हो रहा है मसूद,
0: ये हो गया है, वो नहीं सुन पाते आपको अब। अच्छा मुझे बताएं, प्रोग्राम सुन रही हैं आप?
1: जी बिल्कुल मैं सुन रही हूं।
0: कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम?
1: और मैं ना सुनूं? अच्छा, तो हमेशा ये हर हफ्ते इनका।
0: चलिए मसूद को तो आप सुन रही हैं, लेकिन अली को भी सुन रही हैं आप?
1: बिल्कुल सुन रही हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूछने वाली थी कि आप कहां पर होते हैं?
0: मैं FM 101 लाहौर पे ही होता हूं और मैं फ्राइडे को 5 बजे आता हूं।
1: अच्छा अच्छा, जो कि मैं नहीं सुनती हूं दिन में बिल्कुल।
0: क्यों नहीं सुनती आप?
1: बस मेरी अपनी कुछ मसरूफियात होती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: अली रजा। हाँ हाँ,
0: अली रजा। अली रजा
1: तो अली वैसे बहुत खूबसूरत नाम है, मुझे पसंद भी बहुत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अली मैं क्योंकि बिल्कुल मेरी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो मैं रेडियो से मेरा 10 बजे ऑन होता है।
0: अच्छा,
1: 4-5 दिन हाँ, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, सब बंद, पता नहीं चलता।
0: अब मैं आपके लिए 10 बजे आया करूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मसूद भाई को कौन बताए कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी?
1: मसूद को आने दें, मैं बताऊं।
0: चले वो अभी आ जाते
1: कौन है मुझे ये बताएं, जो मसूद ने कहा कि आज तो निमरा मसूद जरूर प्रोग्राम सुन रही होंगी क्योंकि अली कर रहे हैं साथ साथ।
0: पता नहीं उन्होंने क्यों कहा है, अभी आते हैं ना तो मैं इनसे पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ
1: जी। जरा ये तो पूछने वाली बात है ना, पता तो चलेगी।
0: अच्छा मुझे ये बताएं कि जिंदगी के सफर में आपने कोई फैसला किया और वो फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ?
1: जनाब अली मैंने तो नहीं किया, मेरे बड़ों ने किया था और वो बहुत अच्छा साबित हुआ, जबकि मैं बहुत खड़ो रही थी क्योंकि मैं इंतहाई बॉडम थी। बड़ी जली कूटी लेकिन बाद में पता चला कि बहुत अच्छा फैसला था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मेरे हक में बहुत अच्छा था,
0: जबरदस्त। अच्छा कुछ फैसले हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जैसे आपने मुझे बताया कि हमें शुरू में वो फैसले हम कबूल नहीं कर पा रहे होते दिल से, वो हमें उनसे एक राहत सी आ रही होती है, शायद हम उन फैसलों के लिए तैयार नहीं होते या हमारा दिल तैयार नहीं होता, क्या कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। और
1: हाँ हाँ प्लीज़ बोलिए, आप बोलिए।
0: अच्छा तो आपका जो फैसला था वो फिर अच्छा साबित हुआ?
1: मेरा नहीं था, मेरे बड़ों का था। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं किया, जो उनका फैसला था उसे मैंने दिल जान से कबूल किया और मेरे हक में बहुत अच्छा रहा।
0: सही सही सही सही सही, बिल्कुल ठीक।
1: एक हस्ती मेरी फैमिली में ऐसी है जो कि मुझे बहुत नापसंद है, हद से ज़्यादा नापसंद। मैं किसी को ऐसा कहती नहीं हूँ कि बाहर अल्लाह ताला के बंदे हैं सब, लेकिन कुछ हरकत की वजह से ना कोई कोई इतना, यानी उनके साथ वक्त गुजारना या बस मैं क्या बताऊँ आपको, क्या कयामत।
0: चले हमें ना ही बताएं। अच्छा अच्छा, आप मसूद भाई का पूछ रही थी ना, मैंने अब इनकी आवाज़ खोल दिया, बोले अब हाँ खोल दिया, बोल सकते हैं।
2: मैं सारी बातें सुन रहा था अली भाई, जो ये देखे मैं हैंडफ्री लगा के गया,
0: मैंने सही
2: आप पीछे कोई बात आप ऐसी ना कर दें।
0: नहीं नहीं, मैंने लिसनर्स को बताया है, मैंने इनकी आवाज दबा दी है
2: बिल्कुल, लेकिन आवाज दबाना जो है वो आसान काम नहीं होता, आपको पता है। वो कहते हैं जुबान खामोश हो जाएगी तो वो क्या लहू पुकारेगा आस्तीन का। ओए होए होए, ये इन्होंने जनाब बड़ी कोशिश की कि मैं जो है ना जो माइक, मैं तो देखें गलती से भूल जाता था आपका माइक ऑन करना, लेकिन आपने जो है ना वो मेरी आवाज़ बड़ी बहुत दबा दी हुई थी और मुझे तो बस ऐसे लग रहा था कि शायद अब ये आवाज जो है वो कभी ख्वाबों में भी
0: मैंने बहुत कोशिश की कि आप ना आए
2: मैं इसीलिए आपको बता के नहीं गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ
0: तो दिल्ली देर आ गए हो
2: मैं अगर बता के जाता फिर आपने दुआएं करनी थी अल्लाह छेती आ जाए ठीक है
1: तो
0: थैंक यू सो मच कॉल
2: अरे भाई कराची वाली आपने अपना फैसला बताया कोई
0: हाँ इन्होंने फैसला बताया है जो शुरू में इनको पसंद नहीं आया इनको अच्छा नहीं लगा लेकिन बाद में कहती है बड़ा अच्छा साबित हुआ अच्छा
1: नहीं, मुझे ये बात नहीं थी जनाब वेली मैंने कहा मैंने कोई फैसला किया ही नहीं था मेरे बड़ों ने किया था
0: हाँ हाँ बड़ों ने किया
2: अच्छा अच्छा बड़ों ने यानी तुझे बड़ियां पाती सारी
0: बड़ियां सारे
2: चले चले आप वैसे लाहौर आने का फैसला नहीं किया कभी
1: लाहौर तो मैंने काफी देखा हुआ है मसूर
2: अच्छा गुड
1: बहुत ज्यादा हम लोग हर गर्मियों में छुट्टियों में ना वही होते थे लाहौर में नानी रहती थी वहाँ नहरों में बहुत नहाए बहुत कूदे मड़ा उदम मचाए बागों में घुस के आम चुरा ले
2: इसीलिए बड़ों ने आपको कराची भेज दिया अब ठीक चले आप अपना ख्याल रखिएगा ठीक
0: है शुक्रिया
1: में याद रखिए एक बात तो सुनिए
2: जी
1: आपने ये कैसे कहा कि आज निमरा मसूद आज प्रोग्राम सुन रही होंगी क्योंकि अली आए हैं तो भाई इस अली से क्या रिश्ता है उनका आपका क्या नहीं सुनती
2: थी उनका रिश्ता देखें रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता होना तो जरूरी नहीं होता आपा
1: ये तो है ये तो है
2: कि नहीं
1: तो
2: एक खलूस का तो एक प्यार का एक मोहब्बत का भी रिश्ता होता है
1: होता है बिल्कुल होता है जमरा तो सुनने उनके मेरा बहुत बहुत सलाम
2: जी
1: हालांकि आज तक मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई बाखुदा क्योंकि वो आपकी बेगम है तो हमें बहुत अजीज है
2: और मैंने देख लें ये कैसा रिश्ता है
1: ये तो रिश्ता है वैसे है हमारा रिश्ता तो बहुत प्यारा रिश्ता है आप मुझे आपको कहते हैं मुझे बहुत खुशी होती है जीते रहे
2: आप भी जीते
1: रहे आप जीते रहे बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है
0: अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच
1: अल्लाह हाफिज़
2: जनाब ने कहा था आप मेजबान है तो मेजबान की सीट वो है यार anyway, कुर्सियां यहाँ ऐसी बदल जाती हैं एकदम से सुबह बंदा किसी कुर्सी पे होता है शाम को किसी कुर्सी पे होता है एनीवेज एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के
0: एक मुझे वो याद आई है पहली भी
2: अच्छा
0: वो एक बंदा शादी में जाता है ना किसी के यहाँ तो सर्दियों का मौसम होता है वो उसको उस बंदे को कहते हैं जी आपने यहाँ पे सोना है
2: अच्छा।
0: वो बंदा लेट जाता है अच्छा आधा घंटा लगा के वो अपनी ज़रा कंबल जो है रज़ाई जो है उसको ज़रा गर्म शर्म करता है बिल्कुल थोड़ी देर बाद आके उसको कहते हैं जी आप मेहमान थोड़े ज़्यादा आ गए हैं तो आप दूसरे कमरे में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको कहता चलो ठीक है यार शादी वाला घर
2: है
0: उसको उधर ले जाते हैं फिर वो वही प्रोसेस करता है अपना अपना बिस्तरा वो सेट करता है और निगाह होता है फिर कहते नहीं जी वो सब ने प्लान बनाया लड़के लड़के उधर सोएंगे तो आप ना उधर आ जाओ हमारे पास छत पे वो छत पे ले जाते हैं छत पे जाके फिर यही होता है वो बंदा कहता मुझे मेनू सुवाओगे कि मेरे को बिस्तर ही गर्म करवाओगे
2: काम भी कराओगे कुर्सियां बुलाते
0: रहोगे कॉल ले लें फिर
2: बिल्कुल जी कॉल मैं तो गाना चलाने लगा था यार ऐसे
0: चलो कॉल ले लो एक
2: जी कॉल
0: अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम क्या हाल है
0: बिल्कुल ठीक ठाक साजिदा
3: हाँ जी बिल्कुल
0: साजिदा कैसी हो
2: फिंगर टिप्स भी याद रखा
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक आप कैसे हैं
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ
2: प्रोग्राम ही करने आते हैं ना
0: क्या कह रही हैं
3: मैंने कहा आज तो हंसों की जोड़ी आई हुई है दोनों
0: हंसों की जोड़ी
3: जबरदस्त आवाजें और कमाल का शो है
0: थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया
3: जिसको कहते हैं ना आला शो आज मजा आ रहा है
0: वाकई
2: चले ये इन्होंने फरहान भाई के साथ भी शो में यही कहा था
0: नहीं तब मैंने कुछ और कहा अब मैं नया स्क्रिप्ट लिख के लाया
2: तब आपने ये लतीफा नहीं सुनाया था
0: नहीं तब नहीं सुनाया था
3: नहीं वो मैंने अलग अल्फाज कहे थे इधर अलग कह रही हूँ
0: अच्छा ठीक है थैंक यू सो मच
2: और साजिदा आप हमारे टॉपिक के हवाले से बताएं क्या कहेंगे?
3: और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने अली भाई आपके लिए मैंने वैसे ही दुआएं की थी आपको, अल्लाह ताला दो तीन शोज दे,
2: शोज शुक्र है,
3: दुआ कबूल हो गई।
0: देख लें लिसनर्स कितनी दुआएं करते हैं।
2: मैं जिस खलूस से उन्होंने स्टार्ट लिया था, मैं कोई और ही दुआ करेंगी
0: दो
3: अभी जो आपने बोला लतीफा,
2: लेकिन उन्होंने शोज पे जाके ना सांस तोड़ दिया।
0: कौन सा लतीफा?
3: अभी जो आपने वो गरम पिस्टल बात बताई ना, इतना ज्यादा मैं हंसती हूँ ना, बहुत ज्यादा मजा आया।
2: अली भाई बड़ी मजे मजे की बातें करते,
0: थैंक यू सो मच। थैंक
3: यू, ऐसे ही है ना, वो हल्ला गुल्ला होने से मजा आता है।
2: बिल्कुल ऐसे
3: ही करके शो करके चले गए, वो मजा नहीं आता,
2: मजा नहीं आता।
3: ऐसे ही हंसने खेलने से एंजॉय करने से तो मजा आता है।
2: बिल्कुल ऐसे ही
0: हंसियां खेडियां
2: ध्यान ना लाज डॉग्स भी बाहर ही फिरते पेने, जरा ध्यान रखना लियो। चले साजिद साहब ने ख्याल रखिएगा, जीती रहे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
3: अच्छा मैं टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं ना फैसला, आपने कौन सा किया? फैसले मैंने काफी किए हैं, लेकिन एक फैसला मैंने किया वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं ना इधर की ना मैं उधर की, ऐसा फैसला हो गया।
0: अच्छा।
3: तो वो बहुत ज्यादा मुझे चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं ना फैसला, आपने कौन सा किया? फैसले मैंने काफी किए हैं, लेकिन एक फैसला मैंने किया वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं ना

0: हाँ शमी माफी को और बद्दी जट को बसी वाले भाई को छोटे तारीख को बड़े कोई वाले तारीख को
1: ठीक है
0: और वो उस्ताद जीरा को
1: ठीक है बाकी बाकी अगली दफा याद करके आना
2: पामी रह गया
0: भाई नहीं वो नाम काफी है मैं एकदम से भूल गई
1: ठीक है थैंक यू सो मच फिर बात
2: अपना ख्याल रखिए जीती रहे वेल जी ये थी साजिदा हमारे साथ और हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में इस ट्रैक की जानिब और इस ट्रैक के बाद हम इंशाल्लाह अली भाई वो वाला ट्रैक प्ले करेंगे और वेल जी मुझे कहते हैं मसूद अहमद मेरा आपका साथ रहेगा हमारा बल्कि साथ रहेगा बदलती तारीख तक और देखें तारीख भी बदलती है कि नहीं बदलती
1: वो बदल चुकी है
2: बदल चुकी है Enjoy this beautiful track. Feel your fingers straight. You will be right back.

0: वेल लिसन, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एफएम 101। टाइम चेक 11:00 हो चुके हैं 36 मिनट, और मैं और अली रजा आपके साथ हैं 12 बजे तक। और अली रजा, ये तो गलत बात है यार।
1: मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ।
0: मैं हूँ और मेरे साथ मैं हूँ।
1: मैं हूँ,
0: लेकिन ये तो मैंने तो सिर्फ आपको इन्वाइट किया था अली भाई। तो ये क्या मामला है,
1: क्या हुआ?
0: बाकी मेहमान कहाँ से आए? मेहमान
1: है यार, मेहमान है।
0: बिल्कुल, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, और फिर ऐसे मेहमान तो अल्लाह की खास रहमत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एनीवेज, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आरजे डॉक्स, और अभी वो जरा एक कॉल पे बिजी हैं, किसी ऑफिशियल कॉल पे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करें, मैं इंशाल्लाह मैं आशीर्वाद दे के जाऊँगा। एनीवेज जी, हम बात करें इस हवाले से कि ज़िंदगी का कोई ऐसा फ़ैसला जो आप, जिसने आपकी ज़िंदगी को अक्सर बदल दिया हो, और उसके बाद आपके सोचने के अंदाज़ में, आपके ज़िंदगी को गुजारने के अंदाज़ में कोई तब्दीली ऐसी आई हो, तो
1: आप हमें बता सकते हैं,
0: उसको डिस्कस कर सकते हैं। और वी हैव द नेक्स्ट कॉलर विद अस, और लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मसूद साहब और अली रज़ा साहब।
0: जी
1: जी,
2: आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
2: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: सलमान भट्ट
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: कल बात, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक।
1: कल आपकी मुझसे बात हुई थी।
2: हाँ जी, वो छोटे बच्चे बने हुए थे।
1: हाँ,
0: कौन, अली रजा?
1: नहीं, ये बने थे।
0: अच्छा, ये
1: इनको भी मैंने छोटा बच्चा बनाया था।
2: हाँ, वो ना मेरी पोती है ना, वो दादी नहीं कहना था, दी कहती है, दी। तो मैं जब आती है ना, मैं कहता हूँ दी ने मुझसे काम करवाए हैं, ये देखो सारा कमरे की डस्टिंग की है, और मुझे खाना नहीं चाहिए। दादा मैं भली होगी ना, आपको खाना बहा के दूंगी। मैं कहा मैं उन्हें तो उन्हें दिन भुखा ही रहा फिर। अच्छा नहीं, मैं अभी दी को बुला के लाती।
0: अच्छा,
2: फिर दूसरे कमरे में जाएंगे, दी उठो, दादा को भूख लगी हुई है, आपको पता नहीं चलता।
0: ये
2: है बच्चों की बातें।
0: तो
2: मैं हर उम्र के बच्चों के साथ बन जाता हूँ, बड़े बच्चों के साथ, उससे बड़ों के बाबों के साथ बाबा बन जाता हूँ।
0: बुद्ध
2: बाबा हो गया हूँ मैं से।
0: अभी
2: बाकी
0: तो...
2: वो जो है दूसरा, आज का आपने सवाल किया कि आपने फैसले, यकीन करें कोई फैसला नहीं किया, सारी जिंदगी बस अल्लाह पे यकीन किया और भरोसा किया और काम करते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं, और अल्लाह ने दुआएं कबूल की हैं, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। फैसले तो अल्लाह की ज़ात करती है।
0: क्या बात,
2: हमने क्या फैसले करने हैं?
1: कोई फैसला नहीं किया तो कोई फैसला ही कर लेना सी।
2: फैसले बड़े आए हैं अल्लाह की मेहरबानी से, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं।
1: अच्छा,
2: अल्लाह का शुक्र है, आप भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: शुक्र है, हमें से कोई फैसला नहीं है, बड़ी बिस्ती होनी थी।
2: नहीं, आगे कितने आरजे आ रहे हैं, इंटरनी जो है ना, उसने कोई फैसला शायद आ ही जाए। मेरी और आपकी उससे पहले कोई फैसल गुजर चुका हो,
0: वो चेक करो अपने आर्जन की फैसल है।
1: आप देख रहे हैं, एक तीली लगानी होती है। बट साहब छागे हो, छागे हो।
2: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: बहुत शुक्रिया जी तेरे। बातें सॉरी के वक्त से पहले बटन दबा, कुछ कहना चाह रहे थे मैं, माजरत के जो है ये भी फैसला जो है ना, ये गलत फैसला हो गया,
1: वक्त और हाथ किसी की जरूरत
0: नहीं। ये भी ठीक है। एनीवेज जी, इस वक्त हम बढ़ते हैं ट्रैक की जानेब, और इस ट्रैक के बाद हम, मेरा ख्याल है कि एक और ट्रैक प्ले करेंगे, तब तक हम अपना जो है वो क्या
1: कर लें,
0: हाँ मनोरंजन। यही कहा ना आरजे डॉक्स ने, क्या मनोरंजन करें मैं आता हूँ। एनीवेज जी, ये हम ट्रैक प्ले कर रहे हैं। वैसे मैंने जो ट्रैक अली रजा के लिए रखा था ना, मैं
1: वो कोई और था,
0: वो कोई और था,
1: वो अब बैन हो चुका है।
0: अब बैन हो चुका है, ये सही ले, ये सही कहा आपने। वैसे मौके और वक्त की मुनासबत से जो है ना, अली भाई कहते हैं ट्रैक ठीक नहीं है सूद भाई।
1: आपने अदील को नहीं देखा, कपड़ा पकड़ के ले आया बाग, और इसके सांस खुश्क हो गए।
0: तो एनीवेज जी, ऐसा तो हो जाता है फिर ऐसे कामों में,
1: बिल्कुल,
0: तो हम भी फैसला बर वक्त तब्दील कर लेते हैं। मुझे कहते हैं जी मसूद अहमद, मेरे साथ मौजूद हैं अली रजा, हमारा आपका साथ है ठीक है, बिल्कुल ठीक, 12 बजे तक इन द शो दैट इज कॉल्ड शब खेजियां। इसके बाद हम आपके ऑफर मैसेज ऑन एयर करेंगे जी।

0: वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। और चांदनी रातें जो हैं वो अली भाई, अब आने वाला ये सीजन उनका बस, और मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल, और सर्दी आने वाली है, और सर्दी के मौसम की क्या ही बात है यार।
0: बिल्कुल ऐसी, बस कोई बार बार बिस्तर ना चेंज कराए बाकी सब खैर
1: हम तो गल याद रहेगी
0: याद मैं चाहे तो दुख ही याद आ रहा दुख ना बिस्तर गर्म करता हो चुके चल चुका दे
1: वो एक और बात याद आई कहते हैं कि ना किसी के घर पे मेहमान आते हैं तो मेहमान बैठे हुए हैं, अब वो हस्बैंड वाइफ जो मेज़बान हैं उन्होंने देखा मेहमान आ गए हैं और उन्होंने कहा जी मेहमान को वेलकम किया, बिठा दिया, बातें शातें शुरू हो गई, बातें शातें चल रही हैं, काफ़ी बातें हो रही हैं और मेहमान को बैठे हुए घंटा हो गया।
0: अच्छा
1: ठीक है, मेहमान के आगे ना चाय ना पानी कुछ नहीं आया। अच्छा अब गेस्ट भी फील कर रहा है यार, इनको पूछा नहीं। मेहमान ने कहा जी ठीक है मैं जाने लगा हूँ, ओके जी इजाज़त दें, जैसे मेहमान कहते हैं इजाज़त दें। तो वो जो वाइफ थी ना मेज़बान की जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि क्या आप चाय पियेंगे, तो जो मेहमान था उसने कहा आपके घर गेस्ट खुद चाय बनाते हैं
0: उठ के चले तेन पूछे
1: चाहिए
0: अच्छा ऐसे ऐसे हो जाता है। और समटाइम कुछ तो मेहमान ऐसे होते हैं जो चुप करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो बड़े मतलब कह बेसाख्ता अंदाज में कह देते हैं कि जी हुन ते असीं चले आं ते हुन तुहानूं रोटी पानी का ख्याल आ गया।
1: हाँ, तो कुछ होते हैं जो खुद ही फ्रिज खोल के सारा कुछ कर लेते हैं ऐसे भी होते हैं
0: और मेहमान
1: साडा अपना घर
0: है, टेंशन ही कोई नहीं। तो एनीवेज मैंने भी इसीलिए आप मैंने कैसे पहले कि आप किसी को कहीं को लतीफा सुनाए मैंने पहले बंदोबस्त कर लिया था। ठीक है ना,
1: ठीक है चलें कॉल ले लें फिर।
0: यस कॉल
1: किसी खुशी में
0: किस खुशी में अस्सलाम वालेकुम
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम लियाकत भाई, कहां सुनना बात।
0: ओए लियाकत भाई कहां थे आप?
2: मैं बाजी
1: सर लियाकत आ गया
0: सर लियाकत आ गया सर
3: जनाब लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाई, ठीक
3: है? कैसी तबीयत है आपकी? बैठे बैठे आपका शुक्र
2: अल्लाह का, ठीक ठाक है, वन जबरदस्त और प्रोग्राम ही जबरदस्त और मौजू भी अच्छा रखा हुआ है आपने।
3: मैंने तो रखा ही नहीं हुआ जी।
2: नहीं वो भाई ने रखा ना, मसूर भाई
3: कौन से भाई ने रखा?
2: मसूर अहमद साहब ने।
3: अच्छा मसूद साहब ने,
2: जी जी
3: मसूद साहब की क्या ही बात है
2: मैं क्या आपको ये और समय रहते भाई।
3: हाँ हाँ हाँ, मैं कौन बोल रहा हूँ
2: जी? जी
3: मैं कौन बोल रहा हूँ?
2: आप तो मने तरन में वो क्या कहते हैं वो जबरदस्त ओनर है आप, वन ओ वन के
3: सरकारी इदारा सरकारी इदारा चिकड़े चिकड़े पै गए पान सरकारी इदारा जी
0: सरकारी क्यों जी रिपोर्टें जा रही हैं आगे सर
3: तुसी मैनूं इत्थों कढ़ाना चाह रहे हो, आप मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे
0: भाई? आपका सब भाई ने पता तो लगे।
2: हाँ पता होता है भाई, आए हैं खड़ाक हुआ है क्या बात आज डॉग्स भाई की तो क्या ही बात है।
0: बिल्कुल ऐसी जी, आज डॉग्स हमारे साथ हैं। सर मौसम हमारा ये है कि जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जिसने आपकी सोच को अक्सर बदल दिया हो।
3: इन्होंने यकीनन शादी के बाद महसूस किया होगा नहीं ना भी होए, बस आपकी जिंदगी में खातून की एंट्री काफी है
0: किसी भी चीज को बदलने के लिए, जाविये को बदलने
3: के लिए, जाविये को बदलने के लिए
2: वो कहते हैं ना नाम ही काफी है।
3: हाँ सही कह रहे हैं,
2: खातून का नाम ही काफी है।
3: मेहरबानी लियाकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी।
2: चले बड़ा अच्छा लगा,
0: थैंक यू लियाकत भाई, जीते रहे, खुश रहे, सलाम। वेल जी सर अभी जो हमने गाना क्यों किया हुआ था ना, वो हमने पहले सोचा था कि हम नहीं करेंगे।
3: अच्छा
0: ठीक है, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम कर लेंगे,
3: फिर देख लेना कोई एहो जा गाना ना ला देना
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं, बड़ा अच्छा गाना है सर,
3: फिर बात मसला ना बने जी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं इंशाल्लाह,
3: आप आपके आपके गाने लगे होते हैं अक्सर ग्रुप में मसूद साहब ने ये गाना प्ले किया था,
4: ट्रेंडिंग में चल रहे थे
0: ट्रेंड,
3: इनकी की हुई बातें, इनको इमोजीज, इनके और जिया के बहुत मशहूर हैं। एक कॉल आ रही सर, कॉल तो ले
0: लो, हम हैं, कॉल ले लें सर, चलें
3: कॉल ले लो, ले लो। हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम सर।
4: सर बोधी जट सर।
3: हो तुसी फेरा आ गए।
4: अच्छा जी,
3: की हाल है? ठीक ठाक
4: ठीक ठाक सर, शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह तुसी आए थे, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया सर।
3: सर मुझे एक सवाल आपसे पूछना है।
4: जी सर।
3: सर आप क्या सारा दिन रेडियो सुनते हैं?
4: जी सर बिल्कुल।
3: कैसे सर?
4: असि जरा भी अपना सारी दिहाड़ी सर बड़े बंदे पखे लै आते सर, असि अपना बंदे के तरीका भी छावे जबरदस्त प्रोग्राम सुनते रही
3: उड़ाते रहते
4: सर, मक्खिया क्यों उड़ालिया ने सर?
3: ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਧਰੇਕਾਂ ਥੱਲੇ ਪਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4: ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
0: ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ।
4: ਬਖਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲ ਬੋਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਸਰ।
0: ਮਿਹਰਬਾਨੀ
4: ਜੀ,
5: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
4: ਸਰ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਰ। ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੂਠਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੂਠਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਠ ਹੈ?
4: ਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਲ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨੀ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ
0: ਅੱਜ
3: ਬਿਮਾਰ ਸੀ,
0: ਕਿਉਂ ਸਰ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ?
3: ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? लाहौर से इरम बात कर रही।
6: जी दाऊद भाई, आप कैसे?
3: जी ठीक ठाक।
6: और मसूद भाई के प्रोग्राम में मेरी पहली कॉल है।
3: कैसा लग रहा
0: है? और
6: भाई सबको, अली भाई को सलाम, मसूद भाई को भी सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
6: सुनने वालों को सलाम। और मेरा जो जिंदगी का फैसला है वो यही है, आप लोग रेडियो सुनिए।
3: रेडियो सुनना गलत फैसला?
6: अच्छा फैसला, बहुत अच्छा साबित हुआ,
3: इसने आपकी जिंदगी बदल दी।
6: जी बहुत बहुत
3: जी। आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई
0: रेडियो से?
6: बहुत ज्यादा तब्दीली है। पहले मुझे गुस्सा भी आता था छोटी छोटी बात पे,
3: लोगों पे आता था, अब आरजेस पे आता है।
6: नहीं अभी किसी पे नहीं आता, बस बहुत ही किसी ने कोई गुस्सा दिला दिया, कोई बात कह दी तो किसी को कोई बात नहीं कहनी, और
0: रेडियो की नेचर आ गई है। हाँ कि वो बेचारा बहुत जज्बात जो है वो सिर्फ अपने अंदर ही रखता है, वो बेचारा बाहर नहीं निकाल पाता।
6: सलामत रहें, सलामत रहें आप सबको, ऐसे
0: आगे आगे। थैंक यू
6: सलाम, अनिल आप ही को सलाम।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। वेल जी, अब हम वो फिर ट्रैक प्ले कर ही
3: देते हैं। प्ले करें
0: वैसे तो आप हमारे साथ शामिल होते हैं, हमने आपके लिए
3: सर, नहीं, आप खाएं सर, प्लीज।
0: सर हम तो खाते रहते हैं, सर हम तो खाते रहते हैं।
3: सर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जिंदगी का हर फैसला जो है ना आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली ले आता है, किसी और किसी एक चीज का नहीं, रोज का फैसला रोज ही लेके आता है ना।
0: सर हर दफा फैसला करना जरूरी होता है?
3: हाँ जी।
0: कुछ चीज़ों को छोड़ भी दें तो कहते हैं कि वो सबसे अच्छा फैसला होता है,
3: वो भी फैसला ही है ना।
0: नहीं वो हमारा नहीं होता, वो कहते हैं ऊपर से फैसला आता है।
3: फैसला आपको करने का इख्तियार दिया गया है, इतना इख्तियार आपके पास है। फैसला बहरहाल आप करते हैं कि मैंने छोड़ दिया, ये भी मेरा फैसला, अपना लिया ये भी मेरा फैसला, फैसला तो आप ही कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ऐसे
3: ये भी फैसला कि मैंने कोई फैसला नहीं करना, ये भी एक
0: फैसला है।
3: फैसले तो हर वक्त करते हैं ना, विदाउट मेकिंग एनी डिसीजन यू कैन नॉट लिव अ डे, विदाउट मेकिंग एनी डिसीजन यू कैन नॉट सर्वाइव अ सेकंड। ये थॉट जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं थॉट प्रोसेस, ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग करवाता है आपसे। लोग कह रहे होते हैं मैं कंफ्यूज हूँ,
0: देखिए दरअसल वो
3: कंफ्यूज हूँ मेरे से डिसीजन नहीं होते, وہ ڈیسیژن نہ ہونا بھی ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ دیٹ آئی کین ناٹ ڈیسائیڈ اینی تھنگ دیٹ از آلسو اے ڈیسیژن.
1: بالکل.
0: میں نے اسی لیے علی بھائی سے کہا تھا کہ علی بھائی ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا پتہ نہیں کب تک. میں نے اسی لیے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ ہم سر سے کہیں گے سر ہم تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لے لیں تو گڈ ہو.
1: میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا, فیصلہ باد.
0: شکر ہے انہوں نے فیصلہ باد کہہ دیا, ابھی فیصل پہ بات ہو رہی تھی. بہت شکریہ سر, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, بہت
3: شکریہ آپ کا شکریہ. اگلا گانا مجھے ڈیڈیکیٹڈ ہے
0: سر, یہ آلریڈی آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے سر. بس یہ سر آپ
3: نے
0: صرف آپ نے سننے, آگے نہیں بتانا کسی کو. ٹھیک ہے.

0: असली भी कुछ लोग होते हैं जेड़े नहीं मुड़ते, बार बार उन्होंने गवो लेकिन नहीं मुड़ते।
1: मुझे तारे नजर आने लग गए अभी
0: मुझे आने लगे थे लेकिन मैंने कंट्रोल किया।
1: आपको तो आएंगे दिन में
0: जो आएंगे वो तारे हैं
1: जी बिल्कुल। अच्छा एक मैसेज भी आया हुआ है, पता है आपको एक मैसेज आया हुआ मुझे?
0: बताएं।
1: मैसेज आया कि मैं आपको सुन रही हूँ बहुत देर से और बहुत सबर के साथ। अब ये आपको पता किसका मैसेज है?
0: ये आप मुझे पहले बता चुके हैं इसलिए मुझे हैरत नहीं है। नहीं ये सबर उनका अपनी जगह मेरे लिए ज्यादा है।
1: नहीं नहीं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं आज शो करने आ गया हूँ ना।
0: ऐसे ही उनको असल में ये शक है कि आप जो है मुझे खराब ना कर दें। अच्छा पिछले दिन बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ। पिछले वीक की शायद बात है, मेरा एक दोस्त है तो बस कुछ उसकी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन आए कि उसको ना एक आप कह लें कि अपने ज़िंदगी का फैसला करना पड़ा कि वो एक और शादी करना चाहता था।
1: अच्छा तो यार आपका यार आप क्यों इस तरह आए हैं ये बताएं मुझे।
0: मैं सबर की बात कर रहा हूँ।
1: नहीं आप दो घंटे से सबर किए बैठे थे कि ये टॉपिक किसी तरह से चिढ़ जाए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं ये अब्रप्टली आया है क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ना इसलिए ये अब्रप्टली आया है।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा मैं बात आपको सबर की बता रहा हूँ।
1: ठीक है
0: ठीक है। तो वो कुछ मामला ऐसे हुए कि उसने ना जिम्मेदारी मेरी लगाई कि जी निकाह खान का बंदोबस्त जो है ना वो सारा अरेंजमेंट जो है वो तुमने करना है। इसको मैंने बैकग्राउंड में खुद ही रखा हुआ। ठीक है
1: ठीक है हटा दे हो।
0: एनीवेज अच्छा वो बंदोबस्त मुझे मिल गया कि जी निकाह खान का बंदोबस्त आपने करना है और ये वो सब कुछ। मैंने भी नेकी का काम समझ के तो जो है कर लिया कि यार एक अच्छा काम है नेक काम है तो उसमें जो है इंसान को किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो वो जनाब अरेंजमेंट मैंने हमारे एक दोस्त हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं हाफिज़ साहब हैं कारी साहब हैं उनकी मैंने खदमात हासिल की इस काम के लिए।
1: आपने खुद ही कारी बन जाना था?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं मैं इस काबिल नहीं। अच्छा। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरे पास नहीं थी। तो अच्छा अब हुआ ये कि हमारा ना लास्ट संडे का जो है वो दिन तय हुआ कि जी संडे को 2 बजे के करीब जो है ना वो निकाह का टाइम जो है वो तय हुआ। खैर मैं कारी साहब को लेके तो वहाँ पहुँच गया। तो अब पीछे ना मेरी बेगम को बड़ी तशवीश, इसको 2-3 दिन पहले से तशवीश हो गई कि क्यों जा रहे हैं, क्यों आपने ऐसा काम किया, क्यों आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, इस तरह के काम में नहीं आना चाहिए था, ये है वो है।
1: अच्छा उनको पता चल गया ना कि होने नू सारियां गल्लां दा पता लग गया
0: लग रहे ये
1: किवें किवें हुंदा है
0: किवें किवें ये सारे राज जड़े
1: सारे राह
0: देख रहे हैं। तो इसलिए जो है ना उनका सबर बजा बनता है। ये बात करने का मकसद ये था कि सबर जो है ना बजा बनता है।
1: कॉल ले लें फिर।
0: यानी कि आप कह रहे हैं कॉल ही ले लें फिर।
1: ले लो
0: कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से?
2: रजा भाई।
1: जी जी
2: मसूद भाई को भी सलाम। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से।
1: हाशमी साहब क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। डॉग्स भी हैं कि चले गए हैं?
1: अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हमने डॉग्स का माइक बंद कर दिया।
0: नहीं वो माइक पे नहीं है लेकिन कह रहे थे मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ।
1: हाँ बिल्कुल।
2: बड़ी कोशिश की मैंने, टाइम भी खत्म हो रहा था आपका।
0: बस ये हमने स्पेशल जो है ना उनसे अप्रूवल ले लिया कि सर हम आपको अगर कोई अच्छी चीज दिखाएं और सुनाएं तो आप हमें एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कैरी ऑन बॉयज। तो हमने कहा ठीक है सर।
2: और अच्छा आपने एक शेर पढ़ा था उसका, वो खालिद मसूद खान का शेर है।
1: कौन सा
0: कौन सा?
2: उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका
0: अब्बा था।
2: अब हरियाद थे उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा
0: से लब्बा था।
2: समय नहीं आती बत्ती धारे में किसे बख्शाए, उसकी माँ तो फीडर थी और सक्के दूध का डब्बा था। वो साथी भी है बड़ा मिजाइया शायर भी है।
0: हाँ जी,
2: तो दूसरा अली रजा साहब ने वो इलेक्ट्रिशियन का काम कुछ थोड़ा सा सीखा क्या? नहीं।
1: हाँ
2: मैं सीख रहा हूँ बिजली का काम।
1: नहीं मैंने नहीं सीखा फिर मैंने छोड़ दिया। ये मैंने फरहान के शो में बताया था।
0: बचपन के हवाले
1: यार मेरी बातों को इतनी सीरियस क्यों लेते हैं आप लोग?
2: थोड़ा बहुत काम पता होना चाहिए ना।
1: पता होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो अब टॉपिक पे आता हूँ मैं।
1: आ जाएं।
2: टाइम है कि खत्म हो गया?
1: आ जाएं जल्दी से।
0: आज टाइम हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया जी।
2: अच्छा अच्छा। तो मेरा इरादा था शुरू में कैरियर प्लानिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का।
0: माशाल्लाह।
2: तो बीकॉम के बाद मैंने पहला पार्ट भी क्लियर कर लिया था मीटर का, आई कैप इसका एग्जाम लेता है
0: बिल्कुल ऐसे।
2: तो कुछ हालात ऐसे हुए, वाले साहब की डेथ हो गई,
0: अल्लाह पाक मगफरत करे।
2: तो फिर मैंने फैसला किया भी अब मुझे बिजनेस की तरफ आना चाहिए। तो मैंने कुछ ट्रेनिंग ली और कारों का स्पेयर पार्ट में जॉब शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ा, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो फिर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, आपने पिंडी में भी ब्रांच बना ली, मुल्तान में भी बना ली। तो मैं समझता हूँ ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम और बड़ा अच्छा फैसला था। तो अल्लाह ताला मेरे जरिए कई खानदानों को भी पार रहा है, तो ये मैं इसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का। और बस आखिर में ये कहूंगा, दुआओं में याद
1: जाते जाते
2: जी मांगे।
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया,
0: जीते रहें, खुश रहें। अच्छा मैं एक बड़े मज़े की बात आपको अब्दुल्नूर हाशमी साहब के बारे में बताऊं।
1: जी जी बताएं।
0: आप इस सीट पे क्यों नहीं आ जाते ली भाई?
1: मैं सीट पे आ गया, अभी चार बजेंगे।
0: कोई बात नहीं, आज बजने दें चार।
1: आए आए आए।
0: अच्छा मैं मज़े की बात ये बताने लगा था आपको कि अब्दुल्नूर हाशमी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कॉल करते थे, अभी भी मैसेज करते हैं अपने 4471 पे। तो कहते थे मसूद भाई मैं आपके शो में पता क्यों नहीं कॉल करता। मैंने किसी बताएं क्यों नहीं कॉल करते, कहते आप शायरी नहीं पढ़ते।
1: अच्छा
0: हाँ, तो मैंने कहा जी देखें शायरी जो है ना वो एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और बादब लोगों का काम है। वो मैंने तो बताया मैं बेअदब बंदा हूँ, तो मुझसे शायरी जो है वो उस अंदाज से नहीं पढ़ी जाती कि मैं जो उसका हक बनता है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता। तो कहते चलें ठीक है फिर मैं आपको बस मैसेज कर दिया करूँगा, मैं आपके शो में कॉल नहीं करूँगा। क्योंकि वो कहते हमें ना शायरी सुनने का जो है वो बड़ा, शायरी करने का और शायरी का जो है वो बड़ा शौक होता है, और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि हमने सिर्फ एक छोटा सा वो एक एक एक लाइन ही प्रोग्राम में शामिल की थी उस हवाले से कि वो तू एहो कि एहो जे अब्बा कितों लभिया सी, वो आ गए कॉल में, और उस पर जो आपने जो शायरी की वो उसकी वजह से जो है ना उनका वो जो था ना पैशन जो था वो ट्रिगर हो गया था कि अब मुझे कॉल करनी है प्रोग्राम
1: करनी करनी है अब तो।
0: अच्छा अब क्या प्रोग्राम है भाई, नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करें,
1: कर लें फिर आखिरी कॉल ले लें।
0: ओके
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी क्या नाम है आपका?
2: सर मैं मकसूद भाई लाहौर शादबाग से मोहम्मद नवीद यूसुफ बात कर रहा हूं।
0: शादबाग से कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद
2: नवीद यूसुफ।
0: मोहम्मद नवीद यूसुफ, नवीद भाई आपने पहली दफा प्रोग्राम में कॉल किया क्या?
2: सर मैंने आपके शो में तो पहली बार किया, लेकिन वैसे आपके पास वहाँ पे जाना ना लगा रहता, मैं सर से भी मिला हुआ हूँ, असद भाई से भी,
0: अच्छा
2: दया भाई से भी, रहमान भाई से भी।
0: गुड गुड गुड गुड, चलें बहुत अच्छी बात है जी, आप मिले हैं सब लोगों से, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए।
2: जी ऐसा ही है, यहाँ पे जो भी हमारे उस्ताद हैं सब इनको यकीन करें कि सुनने का मज़ा आता है, चार चार घंटे का भी शो हो तो सुनने का मजा आता है।
0: बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हम चार घंटे का शो कतन करने का मूड नहीं रखते। तो हमें जो है ना वो भूख लग जाती है जल्दी।
1: नहीं हमें मार पड़ सकती।
0: सही बात है, ताड़ा तो पता नहीं मैनू तो पै ही जानी है लगता।
2: मकसूद भाई
1: जी जी
0: जी,
2: मैं क्या भूख तो याद आया ताड़े को अली भाई नहीं बैठे,
1: बैठा वहां खलो जावा
2: साथ। अली भाई ना किसी ने पूछा कि केड़े हाल से खुश रहते, कहते भाई शादी हाल।
0: नहीं जी चौधरी ने चौधरी
1: इन्हों भी किसी ने पूछा कि हाल च खुश रहते हो, कहते मैं बेहाल खुश।
0: सही हो गया सही हो गया। एनीवे जी नवीद भाई साडे प्रोग्राम दे फॉर्मेट दे बारे च की कहोगे?
2: सर जी मैं यही कहूँगा कि जिंदगी दे विच फैसले इंसान नूं करने चाहिए ने, भारी भावे एक बारी गलत होएगा दो बारी गलत होएगा तीसरी बार सही होएगा ना।
0: बिल्कुल सही है, ये भी गल ठीक है। अच्छा
1: तुसी गलत ही करया करो, तुसी सही हल ना जाओ।
0: अच्छा बाज़ुकत नवीद भाई इस तरह भी होंदा है कि एक फैसला असी लै के जदों छड्डने आ ते ओ फैसला फिर असी दोबारा भी वापस लै सकने आ, कदी इस तरह भी होया जिंदगी च?
2: हां जी फैसला लै सकने आ, भारी जे बंदा
0: मतलब मेरे कहने का उसमें ये था कि एक इंसान है उस पे वक्त ऐसा है कि आज जिस तरह भी हमसे नूरुल हाशमी साहब ने पहले बात की थी कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इनका प्रोग्राम था लेकिन हालात की वजह से वो नहीं हो सके, तो बाज़ुकात होता है कि आप एक रास्ते पे चलते हैं लेकिन हालात ही अक्सर तब्दील हो जाते हैं,
1: तब्दील हो जाते हैं बिल्कुल,
0: और उसके बाद हालात फिर ऐसे होते हैं कि आप वो सिलसिला वहीं से तोड़ते हैं, जोड़ते हैं दोबारा जहाँ से वो टूटा होता है।
1: ऐसे ही
0: तो इसी तरह तालीम भी एक ऐसा उसमें फैक्टर है कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको अगर तालीम किसी वजह से आप पूरी नहीं कर पाते और उसके बाद हालात कुछ बेहतर होते हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो आप उसी सिलसिले को वहाँ से दोबारा शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने उसको छोड़ा होता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे
2: हैं, ऐसे ही है,
0: ऐसे ही है। तो इसलिए वो भी एक ज़िंदगी का एक अहम फैसला होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक दफ़ा छोड़ के दोबारा से शुरू करते हैं।
2: तो जी मसूद भाई, मैं आपके बात से बात करूँगा, इतफाक़ करूँगा, शायद लोगों को बात का माइंड लगे या बुरा लगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ें लिखें सब कुछ करें, बिजनेसमैन बने, लेकिन कुछ ना ये काम भी करें कि जिंदगी में अपने हाथ में कोई ना कोई ऐसा हुनर रखें जो आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जाकर ना वो आपको फायदा दे सके।
0: बिल्कुल ऐसी है, और हुनर तो एक कह लें कि ऐसी चीज है कि जो आपको बहुत सारी मोहताजियों से बचा लेती है।
2: जी ऐसा ही है, आगे हाथ फैलाने
0: पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया नवीद भाई, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।
2: अच्छा मसूद भाई, वैसे आपसे एक बात करूं, माइंड ना करना थोड़ा सा, कान मेरे पास करो जरा।
0: मैं कान काफी पास है,
1: कान बंद कर लें।
2: नहीं कान बंद नहीं कर लें, मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं कि आप ये 3-4 दिन तक ना आपको जो पसंद है ना आप गुड़ वाले चावल खाएंगे ज्यादातर।
1: यार मैं तो कोई और
0: मैं ये कैसी खुशखबरी, तो मैंने नहीं पता,
1: मैंने क्यों पता लग गई रात भी जमा हो चुकी है और
0: आरजे डॉग्स भी इधर ही है।
1: मैं आपको शायरी सुनाता हूँ।
0: जी जी वाह, अच्छा अच्छा ये बात थी, मैंने कहा शायद आप कुछ और तमीज बांधने लगे।
1: मैंने कहा रात का ये पहर है तो, और आपने शायरी का जिक्र भी कर दिया है,
0: यानी कैफियत तारी हो रही है,
1: कैफियत तारी हो रही है, वो कैफियत आ रही है मुझ में। तो चलें आपको एक
0: जरूर जरूर
1: गजल सुनाता हूँ, एक पोएट्री सुनाता हूँ कि आया तेरा ख्याल बड़ी मुद्दतों के बाद, आया तेरा ख्याल बड़ी मुद्दतों के बाद, पूछा किसी ने हाल बड़ी मुद्दतों के बाद, लिखता तो है वो खत मुझे चाहत भरा मगर, लिखता तो है वो खत मुझे चाहत भरा मगर, होता है ये कमाल बड़ी मुद्दतों के बाद, आई है आज याद भी तेरी हवा के साथ, आई है आज याद भी तेरी हवा के साथ, ओढ़ी है गम की शॉल बड़ी मुद्दतों के बाद, उसको जवाब देने की जल्दी मुझे है क्यों, उसको जवाब देने की मुझे जल्दी है क्यों, जिसने किया सवाल बड़ी मुद्दतों के बाद, लिखा है उसने खत में आऊंगा अगले साल, लिखा है उसने खत में आऊंगा अगले साल, गुजरेगा अब ये साल बड़ी मुद्दतों के बाद, तर के ताल्लुकात में उसका है दुख उदास, हमको हुआ मलाल बड़ी मुद्दतों के बाद।
0: क्या बात है, क्या
1: बस हूँ शो खत्म कर दिया,
0: बस कर दिया, हूँ एंड हो गया, एंड हो गया। एनीवेज जी, प्रोग्राम का वक्त तो हमारा बहुत देर पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन ये सिर्फ आपकी चाहत और मोहब्बत है जिसकी वजह से हमने कुछ टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया, और अली भाई का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अली भाई
1: आपका बहुत शुक्रिया
0: कि आपने टाइम निकाला अपनी फुर्सत में से और हमारे वक्त को जो है वो 4 चांद लगा दिए, बल्कि 4 भी नहीं ज़्यादा ही चांद लगा दिया आपने।
1: तो
0: आप इसी तरह अपनी रौनक जो है, अब देखें एक दफ़ा इन्वाइट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद अब आपको इनविटेशन की जरूरत नहीं,
1: आप ही आ जाना
0: हम तुसी जद जिस दिन तुसी वेले होवोगे ना, जिस दिन भरजाई ने खाना नहीं बनाया होएगा, तुसी मैं बेल करनी है, सुदे में आ रहे हैं, मैं समझ जावांगा, ठीक
1: ठीक ठीक है मसूद भाई, थैंक यू सो मच, बाकी बड़ा मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करके, और अक्सर मैं आपको सुनता था, बल्कि मैं बचपन से आपको सुनता था।
0: यार अब बाकी वगैरह प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए।
1: अब मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता,
0: इसलिए तो कह रहा हूँ खत्म कर देना चाहिए।
1: नहीं बाकी सीरियसली बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करके, और मैं ये सोचा करता था, मेरा एक ख्वाब था कि मैं
0: यार मैं पिक्चर ले लूँ अली भाई।
1: नहीं नहीं बाद में मैं सेल्फी बनवाता हूँ।
0: ओके ओके ठीक है ठीक है।
1: अच्छा मसूद भाई, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, काफ़ी देर से रेडियो कर रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी किए हैं, बड़े इंटरव्यूज़ भी किए होंगे, बड़ी जगहों पर आपने प्रोग्राम किए होंगे, कभी आपने सोचा था आपको मौका मिलेगा आरजे अली रजा के साथ शो करने का? ये मेरा सवाल है, पर्सनल क्वेश्चन।
0: अच्छा ये मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, तो बड़े अरसे से मेरी एक ख्वाहिश थी आपको, अब इंसान अब क्या कहते हैं, इतनी गहराई में न जा गालिब, वो गला और निकल आई है मेरे को। तो मैं तो बहुत अरसे से इस चीज़ के हक में था कि आरजे इसको कंबाइन शोज़ करने का मौका देना चाहिए, और आपको मालूम होगा कि आप भी उन दौर में थे शायद जब इस चीज़ पर सख्त पाबंदी लग गई थी कि जी कंबाइन शोज जो हैं वो अलाउड नहीं होते थे। तो बहरहाल अब चीज़ें चेंज हुई और बहुत अच्छी चेंजेस आई जिसके बाद हमें शोज़ करने का भी मौका मिला। तो बहुत अरसे से ख्वाहिश थी इस चीज़ की, मैंने तो सर से भी रिक्वेस्ट की थी एक दो मरतबा, फिर मैं मतलब वो कहना है ना कि बड़े लोग हैं, बहुत सारे आरजेज हैं माशाल्लाह जो टॉप ऑफ द टॉप आरजेज हैं, तो उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि आप शो में आएँ साथ, तो लेकिन वो बड़े लोग हैं उनके पास टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने कहा चलें हम ट्राई कर लेते हैं, शायद अली भाई भी मान जाएं कि
1: देख लें। मैं मान गया।
0: हाँ आप मान जाते हैं अली भाई, आपकी ही बात अच्छी है सबसे। तो बड़े अरसे से ख्वाहिश थी इस चीज़ की कि मुझे आपके साथ भी शो करने का मौका मिले और आपसे भी सीखने का मौका मिले, आपसे भी।
1: सर, हम सीखते हैं आपसे।
0: नहीं ऐसी कतन बिल्कुल कोई बात नहीं है, इंसान सबसे सीखता है। और जैसे मैंने बताया ना कि मैं तो बाज़ूकात शो इस वजह से नहीं सुन पाता किसी का, या ज़्यादा नहीं सुनता किसी का कि यार ये तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक वो ना फीलिंग आती है कि यार नहीं अभी मुझे और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं फिर या तो म्यूट लिसनर बन जाता हूँ कि उनको बताता नहीं हूँ कि मैंने सुना आपका शो, सिर्फ जो चीज़ें नोट करने वाली होती हैं अपने लिए वो मैं नोट कर लेता हूँ, और अपने शो के बारे में मैं ये फिर ये कहता हूँ कि आपने सिर्फ मेरा शो सुनना है, दिल पर नहीं लेना,
1: दिल पर नहीं,
0: और किसी को मेरी बातें बतानी नहीं है। ठीक है। तो एनीवेज ज़िंदगी के फैसलों के हवाले से बात हो रही थी, और ये भी तो एक फैसला है ना अली भाई, देखें आपने फैसला किया कि मैंने आपको एक ऑफ़र दी कि आप अली भाई आप अगर अवेलेबल हैं तो आप रात में शो के लिए आ जाएं मेरे पास, हम इकट्ठे शो करेंगे, तो आपने भी फैसला किया कि ठीक है हम इसको जो है वो करते हैं, डन करें इसको। तो ये भी एक फैसला है और एक अच्छा फैसला साबित हुआ कि आपके साथ बैठ के बात करके आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि, और बहुत जो है एक इंसान सीखता भी है उससे, तो जो है बहुत अच्छी फील आई कि यार ये एक मेरा भी अच्छा फैसला था और एक आपका भी, उम्मीद करूंगा कि शायद अच्छा ही हो। अब दिल की बातें हैं तो अब आप दिल में
1: बहुत अच्छा
0: दिल में रख रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। हालांकि मैंने दिल की बातें निकालने का बंदोबस्त भी किया। तो एनीवेज जी, ज़िंदगी में फैसले लेने चाहिए, बल्कि जैसे आरजे डॉग्स कह रहे थे कि अगर कोई फैसला नहीं ले पाता तो वो तब भी कोई फैसला होता है कि वो फैसला नहीं ले पा रहा होता। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर इंसान को पता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक स्विमिंग में एक फार्मूला होता है कि जब आप थक जाए ना, बेबस हो जाएँ, और आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरी जिस्मानी ताकत जो है इस पानी की लहरों का मुकाबला नहीं कर सकती, तो आप फ्लोट करना शुरू कर दें। आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपना मुंह आसमान की तरफ करें और अपने हाथ पांव चलाने छोड़ दें,
1: बिल्कुल
0: तो पानी आपको कभी नहीं डुबोएगा।
1: बिल्कुल ठीक। जब आप घबराएंगे
0: नहीं, और जब तक आप अपने हाथ पांव मिलाएंगे तब तक पानी आपको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे ना कि बस अब मैं, मेरी बस हो गई और अब मैं इस आस में हूँ कि ये मुझे नहीं डुबोएगा, तो तब पानी आपको नहीं डुबोता।
1: क्या बात की।
0: तो इसी तरह कुछ फैसले ये भी होते हैं कि जब इंसान अपने सब फैसले छोड़ देता है कि मेरा कोई फैसला नहीं है, बस जो होगा मुझे उस पर यकीन है, मैं उस पर भरोसा है कि जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो जनाब इंशाल्लाह जो होता है अच्छा ही होता है, और अल्लाह ताला से अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए, इसलिए कि वो मालिक है, खालिक है, वो राजिक है, और अल्टीमेट मालिक वही है। हमसे पहले भी वही मालिक था और हमारे बाद भी वही मालिक रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो जो उसका फ़ैसला होगा वो यकीनन सबसे बेहतर होगा, और उसमें ही हमें अपनी रज़ा को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी इंसान से वफा की तो जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते के रोज़ रात 10 से 12 में,
1: और मेरी मुलाकात होगी अगले जुमे को 5 से 7 में।
0: क्या बात है। और अगर हम फिर से आपको दावत दें तो फिर आप आएंगे कि हम नहीं हाजिर, उनको मैंने पता लग गया हूं नहीं मैं आंदा।
1: हाजिर हाजिर सर।
0: बहुत शुक्रिया अली भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए और आपके कामों में बरकत अता।
1: बहुत शुक्रिया।
0: हमें दीजिएगा इजाजत, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह।

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छूटी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: Stop browsing flights and start booking them. Fly Emirates Business Class. Enjoy regional fine dining and an unforgettable experience.
2: Status dekha ki maine program ke hawale se lagaya, unhone tune kiya to unhone kaha bhai jan class mein to aap baat nahi karte the aur hamesha aapke 50 mein se 13 नंबर आते थे और आज आप लोगों को कह रहे हैं जी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा, मती साहब इसीलिए मैं खुद नहीं किया तो लोगों को कह रहा हूँ कि अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन टाइम क्या है दोस्तों, या आज आप मुझे बचा रहे हैं 4471 पर, इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर लाइव कॉल्स आपके 12:30 के बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कॉन्सर्ट के हवाले से दोस्तों मैंने बात की थी प्रोग्राम के आगाज़ में, जो कि इस्लामाबाद में हो रहे हैं और ये आखिर के जो सीज़न होते हैं नवंबर दिसंबर, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट जो हैं वो ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि हर जगह पर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ जो नज़र आती हैं इस तरह होती हैं। चूँकि मौसम उस वक्त खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला माहौल नहीं होता, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मुझे तो रश वाला फोबिया जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ कोई काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हों तो जाते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो सांस जो है कहते हैं कि दम घुटने वाला मामला शुरू हो जाता है। क्या आपके साथ भी, चूँकि डिफरेंट चीज़ों का फोबिया होता है, किसी को हाइट फोबिया, जैसे यूसुफ भाई इनको हाइट का फोबिया है, मुझे एक रश का है और एक रूम लॉक होने का बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं रूम जो है लॉक ना हो जाए, अल्लाह ना करे अगर लॉक हो जाए फिर मैं बाहर की करूँगा। तो इस हवाले से एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आपको अब से कुछ ही देर बाद सुनाऊँगा। 12:23 हो चुके हैं, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। बंदे ना चीज़ को कहते हैं जी गज़नफर महमूद ख्यानी, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा।

कुछ बताना चाहते हैं या दिल की बात करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आपकी खिदमत में मौजूद हैं। हमें कहते हैं जी 101, मुझे कहते हैं जी गजनफर महमूद क्यानी, हमारे साथ निशा मौजूद हैं। क्या बात है जी, आपने कहा जी निशा पूमी आपने लिख भेजा है और ठीक हो गया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शरारती हैं आप जी। आपने अपना नाम नहीं लिखा और नाम लाजमी लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके। और इसके अलावा हमारे साथ फरहान मौजूद हैं रावलपिंडी से। फरहान कहते हैं मेरे भाई सारा दिन फ़ोन का काम है, जो जॉब नेचर है मेरी वो ऐसी है कि फ़ोन देखना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन जब फ्री होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो टिकटॉक यूज़ करता हूँ, इसकी आदत जो है वो मेरी नहीं जा रही, घंटे गुजर जाते हैं, जब सोने के लिए बिस्तरे पर पहुँचता हूँ तब 5 मिनट देखने का कहता हूँ लेकिन फिर भी 2-3 घंटे गुजर ही जाते हैं। यूसुफ शाह साहब एदा कोई ला दे मैनू।

लाहौर और कराची से काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, लेकिन मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आज 4471 पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैसेजेस करने हैं, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके अलावा फेसबुक पे जो चीज़ें हैं उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम 4471 को ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए देते हैं चूँकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कबूतर है, हमारे एक आरजे हुआ करते थे, आरजे बिलाल हैदर, वो उसको कहा करते थे इलेक्ट्रॉनिक कबूतर, जो है रात के इस पहर आपके पैगाम लेकर हम तक स्टूडियो में पहुंचता है, तो हम इसके पैगाम लाजमी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कुछ जो रिसेंट टाइम में जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं पाकिस्तान में या इसके अलावा जो बहुत हॉट टॉपिक होते हैं उस पर भी हल्की फुल्की बात करते रहते हैं। सबसे पहले तो आपने मतलब घबराना नहीं है, पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि महंगा हुआ है लास्ट 3-4 दिनों में, तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास गाड़ी है और बाइक है तो आप अल्टरनेट चीज़ें यूज़ करें। आप अगर बारिश का मौसम है तब आप अपनी कार इस्तेमाल करें, या खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है या आपने कहीं किसी फैमिली विजिट पे जाना है तब आप गाड़ी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ जो है वो बाइक जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक या दो किसी जगह आपने रोज़ाना ऑब्वियसली ऑफिस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, घरेलू काम के लिए, तो बाइक का इस्तेमाल करें, वहाँ से आप कुछ अपना जो है वो फ्यूल कंजप्शन जो है वो कम कर सकेंगे और आपके अमाउंट जो है वो भी कम होगी। इसके अलावा अगर आपके एरिया में मतलब जिस जगह आपने ऑफिस जाना है वहाँ से कोई और भी ऑफिस जाता है तो आप लोग आपस में टाइप इन कर सकते हैं, 2 से 3 लोग मिलकर अगर गाड़ी पे भी जाना चाहें वो भी बेस्ट ऑप्शन है कि जो एक बंदा खर्चा करे वो 3-4 मिल मिला के अमेरिकन सिस्टम करके आप वो भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी जो है वो जो ज़्यादा खर्च है उसको बचा सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि हर किसी की अपनी जॉब ऑफ नेचर है, अपना मूड पे डिपेंड करता है, उसने ऑफिस से छुट्टी करके दोस्तों के साथ घूमना है या कहीं चाय के ढाबे पे बैठना है या कहीं पर भी जाना है तो फिर बाज़ औक़ात ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमेशा एक फार्मूला इस्तेमाल किया करें अपनी ज़िंदगी में, ये कोशिश किया करें कि आपकी वजह से ना कोई दूसरा शख्स डिस्टर्ब ना हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि आप अगर कोई बंदा प्यार मोहब्बत में या रख रखाव के तौर पे आपको फैसिलिटेट करता है किसी भी तरीके से, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उसकी जो चीज़ें हैं इस तरह की छोटी मोटी उनको आप अडॉप्ट करें या आप समझ जाएं चीज़ें कि यार नहीं इन्होंने कहीं जाना या नहीं आना, तो इस चीज़ पे लाजमी आप लोगों ने फोकस करना है। तो सुने ये ना सोचे कि पेट्रोल सस्ता होएगा, फिलहाल चूँकि पता है आपको पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही हैं, तो इस पर आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है, नहीं तो मुझे जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं 3-4 साल बाद असी सारे ने साइकिलों पर होना फिर।

इसके अलावा दोस्तों आपकी लाइव कॉल्स हम अब से कुछ ही देर बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे, 12:40 के बाद। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। और आजकल का जो दौर है चल रहा है दोस्तों, पॉडकास्ट का काफ़ी ज़्यादा सिलसिला आप लोग देख रहे होंगे अपने जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल की तरफ दुनिया सारी जा रही है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जो टेलीविज़न देखने का जो एक एक रिवाज हुआ करता था रोज़ाना

की बुनियाद पे रात 9 बजे का खबरनामा जो है वो लोग बहुत जो है वो गौर से सुनते थे रात को सब इकट्ठे हो के, घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो भी। अब वो सिलसिला ना काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पर बाकायदा इस तरह टेलीविज़न देखा जाता है, चूँकि आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है यही आपका टेलीविज़न भी है, इसमें तमाम टीवी चैनल्स भी आप देख सकते हैं, ख़बरें भी ताज़ा सुन सकते हैं। हाँ, आप कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जैसे फेसबुक की कुछ वीडियोज़ होती हैं, टिकटॉक पे कुछ फेक न्यूज़ टाइप चीज़ें होती हैं, उस पर भी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं बाजू का यकीन कर लेते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो एक तो उनको ये गाइड करना चाहिए कि आपने अगर ख़बरें ही सुननी हैं तो आप बाकायदा टेलीविज़न की वेबसाइट्स हैं या उनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनको फॉलो करें, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं। अब तो बड़े बड़े टेलीविज़न जो हैं उनके भी पॉडकास्ट का सिस्टम शुरू हो चुका है, और जो जर्नलिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं अपने भी करीबी एक दो दोस्त हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो टैलेंटेड हैं, उनसे काफ़ी अच्छे से कहता हूँ यार आप लोग अपना कोई सिलसिला शुरू करें। जैसे हमारे यूसुफ भाई हैं, ये सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं बड़े अरसे से, बल्कि मेरा एक मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था उस पे, जो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो शायद काम करना छोड़ दिया, इसलिए हम वापस पीछे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा ज़ीरो पे आ गया ऑलमोस्ट, चूँकि वो एक साल का क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, वो मुकम्मल नहीं किया था, तो उस पे जो मोनेटाइजेशन का जो पीरियड पूरा हुआ था वो मैं और यूसुफ भाई एक दफ़ा कमेंट्री कर रहे थे ऑडियो में क्रिकेट की, तो उसकी वजह से हुआ था। यूसुफ भाई ने सिंधी में पंजाबी में कमेंट्री की थी, और एक दफ़ा इन्होंने गाना गाया था जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। तो इनसे मैं कहता हूँ कि यार आप कोई अपना इस तरह का सिलसिला शुरू करें, चूँकि सारी दुनिया डिजिटल के दौर पर जा रही है, अपना आपको जो है वो लाजमी आपको कैश करना चाहिए अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी भी किस्म का टैलेंट दिया है। मैं हाउस एट में बात करता हूँ कि आपके पास कोई टैलेंट है, आप अच्छे बॉलर हैं बैटर हैं, तो वीडियोस बना के पोस्ट करें, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपका वसीला बनाएगा। तो इन शॉर्ट ये कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हम तो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि एक पॉजिटिव चीज़ आप लोगों तक पहुँचानी है। कहते हैं कि सबसे ख़तरनाक जो दुश्मन है वो आपका करीबी दोस्त होता है। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उससे आपकी किसी बात पे अनबन हो जाती है या नाराज़गी हो जाती है, तो जितने राज उसको पता है किसी तीसरे बंदे को नहीं पता होंगे। तो हमेशा चीज़ें भी ऐसी ख़राब होती हैं कि जिनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, किसी भी रीज़न से खुदा ना खास्ता अगर वो ख़राब होते हैं तो उसके बाद मामलात कहाँ पहुँचते हैं। तो एक रिसेंटली बड़ा हाई प्रोफाइल केस आपने देखा होगा, वो एक साबिक MP हैं, बल्कि साबिक नहीं रिसेंटली वो MPA भी हैं, और एक पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की एक सुपरस्टार हैं, उनके दरमियान जो मामलात हुए, फिर उसके बाद अब वो फीमेल की शादी भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे पे डिफरेंट तरह के इल्ज़ाम लगाना, वो केस ऑलमोस्ट अदालत में भी है, वहाँ से भी कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन सबसे हैरान कन बात ये है कि अब जो पॉडकास्ट कर रहे हैं दोनों, हैरानगी की बात से उनसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बिलो द बेल्ट किस्म की बात है, और सीनियर लोग कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, हम तो खैर अभी इस फील्ड में इतना टाइम नहीं हुआ, उनको 25-25-30 से साल हो गए हैं, और सवालात ऐसे पूछना कि मतलब अब हर दोनों की डिफरेंट पैरामीटर्स पे ज़िंदगी गुजर रही है, अपनी अपनी ज़िंदगी में वो खुश हैं, लेकिन सवाल ऐसे पूछ लेना कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हो, और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि वो ऐसी जगह पर जाके क्यों अपनी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करना करते हैं लोग। तो इसमें मैसेज ये था दोस्तों कि कभी भी खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ अगर किसी भी बात में कोई नाराज़गी वाला मामला होता है, तो जो राज आपको उसके पता हैं या एक दूसरे की बातें में कोई भी बातें पता हैं, तो उसको राज ही रहने दिया करें। आज अगर आप किसी का राज रखेंगे तो रब ताला की ज़ात आपके राज रखेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये एक चीज़ हमेशा आपने नोट करना, और आपके इर्द गिर्द भी इस तरह के किसी किस्म के कोई मामलात होते हैं तो उस पर लाजमी ये फोकस ज़रूर किया करें कि जब आपके बहुत अच्छा रिश्ता गुजरे, बहुत अच्छा हो, किसी भी वजह से वो अलग हो जाए तो उस पर किसी भी किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये एक दोस्तों मेरी जानिब से मैसेज था, एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसके बाद वापस आएँगे, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। मुझे ट्रैक सर्च करने का कहा गया है, मैं वो सर्च कर लूँ शादी, फिर लाजमी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 12:39 बंदा है नाचिस को कहते हैं जी गज़नफर महमूद, क्या नहीं आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा।

0: वेलकम बैक तमाम दोस्तों को, खुश आमदीद कहते हैं जी। अब आपके लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे 0511100101 और इसके अलावा 0519202540 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट यही है कि सेगमेंट को आपने फॉलो करना है, और अगर आप शायरी सुनाना चाहते हैं या कोई गाना वगैरह आप सुनाना चाहते हैं तो वो हम 1:45 से ऑनवर्ड जो है वो सिर्फ उसी सेगमेंट में प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज़ सुनें तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक अफराद का आपने ख्याल रखना। आज की पहली कॉल देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मानो सत्ती बात कर रही हूँ, भूपेंद्र भाई के लिए कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक। मानो सत्ती ने कहाँ से कॉल की है?
1: कोटली सत्या से भाई कॉल की है।
0: कोटली सत्या से कॉल की है। मानो सत्ती, आप पहली दफा आपसे बात हो रही है?
1: नहीं भाई, असल में मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करती थी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, उसके बाद मेरा लैपटॉप नहीं हो सका।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैंने सोचा कि मैं आज भाई से लाजमी भाई का शो सुनूंगी और भाई को कॉल करूंगी।
0: चलें, आपने ऑनर बता दिया कि आपको फोन चोरी हो गया, तो आप मिल गए वापस या क्या हुआ था?
1: नहीं कुछ नहीं मिला।
0: तो कहाँ चोरी करवाया फोन आपने?
1: सेंटोरस चोरी हुआ था।
0: सेंटोरस में चोरी? पर्स कहीं रखे भूल गई थी आप?
1: नहीं, गाड़ी में रखा था, गाड़ी में।
0: अच्छा अच्छा, गाड़ी से अंदाजा करें कि लोग मतलब चलें। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्क्रीन टाइम क्या है आपका, फोन अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो रोजाना कितना टाइम कंज्यूम करती हैं उसमें?
1: अगर रात की बात करें तो 2 बजे, और अगर दिन की बात करें तो 12 बजे।
0: 12 बजे तक मतलब मिला के कुछ 6-7 घंटे बनते हैं।
1: मेरा मतलब ये है कि शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक,
0: 6 से 2 बजे तक, ठीक हो गया, अच्छा खासा टाइम बनता है। इसको थोड़ा बहुत कम करें, बहुत ज्यादा टाइम बनता है, ठीक है। अच्छा कुछ और कहना चाहेंगे इसके अलावा?
1: नहीं भाई बस।
0: चलो बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। मानो सती हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: और सारी साहब,
2: मेरे शौक दा मैं अखबार तनो और देख मेरा इंतजार आ जा। जनाब जनाब अली साहब, मैं सारी बोल रहा हूं, हैदराबाद में आपकी नशरियात नहीं आ रही है।
0: हैदराबाद में नहीं आ रही नशरियात?
2: हाँ जी जनाब अली, आपके नहीं आ रही, उसके बावजूद हमारा शौक देखे, हमारा प्यार देखे, हमारी इंतहा देखे। मलिक इश्तियाक साहब ने मुझे बताया है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं और काम देना शुरू करना है, हम देख रहे हैं।
0: अंसारी साहब बहुत मोहब्बत का शुक्रिया। मैं अभी एमसीआर से पूछ, हमारी जो मास्टर कंट्रोल रूम है वो अभी ठीक कर देता है, ठीक है।
2: वो तो ठीक है, बस अगर आप कहें तो जिस तरह आपके यहाँ बारिश हो गई, अगर बारिश के मुताबिक कहें तो छोटा सा नगमा सुना दो।
0: अंसारी साहब, नगमा और वो सारी चीजें 1:45 पे मैंने रखी है, वो बाहर प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए, वो आंखें दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है।
2: मैसेज मैं दे दूँ अनिला बहन के लिए, मैसेज देना मुझे।
0: दें जी अनिला बहन के लिए मैसेज दें।
2: अनिला बहन तवज्जो फरमाए कि मैं शाहिद अंसारी आपको अपने अल्लाह अल्लाह वाजिद ने जान के मैं आपको अपनी दिल की गहराइयों से अपनी बहन कहता हूँ। मैं आपको, मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है अपने डॉक्टर साहब के पास।
0: क्या
2: मेहरबानी, आप डॉक्टर साहब का रास्ता कायम करके वो गिफ्ट हासिल कर लें, अगर वो ले लें उसके बाद अगर हेलो
0: जी जी अंसारी साहब मैं सुन रहा हूँ।
2: हाँ, उसके बाद अगर वहाँ से अगर मेरा फोन नंबर आपको मिल जाए तो बड़ा मेहरबानी, जिंदगी में एक दफा कार मुझे जरूर कीजिएगा।
0: अंसारी साहब ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਿਫਟ ਆਪ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
2: ਅੱਲਾ
0: ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਥਾ, ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਕੋ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਕੈਸਾ ਆਪਕੋ ਲਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ।
3: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया जी आपके?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपके कद्दू जी का ख्याल है?
3: जी मेरे कद्दू को बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको कोई और स्वीट या क्यूट सा नाम नहीं मिला था, आपने हस्बैंड का नाम कद्दू रख दिया?
3: नहीं मैंने, वही चंगा लग गया, मैं कहा उनकी सेहत के मुताबिक कद्दू सही है।
0: नहीं बहुत ज्यादा बल्कि है वो माशाल्लाह।
3: नहीं नहीं इतने भी नहीं है, उनको मैं प्यार से बस कद्दू खिलाती हूँ, मुझे कोई और नाम पसंद नहीं था, मैंने कहा चलो बस आई रख लेना।
0: अच्छा, प्यार नाल कद्दू, तो गुस्से नाल की कहंदे तुसी?
3: गुस्से नाल नहीं, फिर आ गया कद्दू कहंदी हां।
0: अच्छा, गुस्से से भी कद्दू कहते। अच्छा, स्क्रीन टाइम क्या आपका आरिमशा?
3: कोई नहीं है, जो मर्जी।
0: अच्छा, मतलब शादी से पहले ज्यादा था, अब कम है?
3: हाँ, यानी शादी से पहले यानी कि ज्यादा था, हर टाइम यानी काम करने के बाद फौरन से, अब ये है कि अब कम कम यूज होते हैं।
0: अच्छा, अब कम कम फोन यूज होते हैं, ठीक हो गया। कुछ और कहना चाहेंगी रमशा आप?
3: और जाते जाते इश्तियाक अंकल को, बर्फी वाले अंकल, शहजाद अंकल, मारिया आपिया, नीला आपिया, साजदा, जुलेखा, सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अगर मेरे कद्दू अगर आपको कॉल करे तो उनकी भी प्लीज कॉल कर लेना।
0: वो है किधर इस टाइम?
3: वो इस टाइम मैं इस टाइम लाहौर में हूँ और इस टाइम वो गुजरा वाले में है।
0: अच्छा, गुजरा, आप मतलब अपने माँ जी के घर आई हैं आप?
3: जी जी, अपनी मामा की तरफ आई हुई हूँ, वो क्योंकि अभी उनके कुछ काम है तो उन्होंने दोबारा से कराची जाना, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं।
0: चलो ठीक हो गया। लास्ट टाइम आपसे गेम खेली थी वो आप पूरा नहीं कर सकी थी, याद है आपको?
3: बिल्कुल भी नहीं पूरा कर पाई थी, वो बीच में से कुछ लफ्ज़ मैं भूल गई थी, दो नाम भूल गई थी मैं, आगे पीछे कर पाई थी।
0: चलो फिर कभी खेलेंगे, ख्याल रखना अपना, ठीक है? दोस्तों आपकी लाइव कॉल हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहा है? सिदरा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मंदरा से। सिदरा, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक। सिदरा, आपकी ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप?
4: भाई।
0: हाँ, बताएं स्क्रीन टाइम क्या है, फोन कितना इस्तेमाल करते हैं आप? मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या खाया था रात को, क्या बनाया था घर पे? हाँ, आज क्या बनाया था?
4: मैंने खाना नहीं खाया।
0: खाना नहीं खाया, क्यों, नाराज है किसी से आप? अच्छा, घर में किसी से नाराज है?
4: नहीं।
0: अच्छा, बाहर किसी से नाराज है?
4: जी।
0: उन्होंने खा लिया होगा मेरे ख्याल से।
4: हाँ, उन्होंने तो खा लिया होगा।
0: तो आप भी खा लें, क्या फायदा किसी ऐसी नाराजगी से, कोई खाना खा ले और आप भूखी रह जाए।
4: लेकिन भैया यार, थोड़ा यार, नहीं करना।
0: अच्छा, मैं उनको कहता हूँ कि वो आपसे राजी हो जाए, ठीक है?
4: नहीं, वो नाराज नहीं है मेरे से।
0: अच्छा चले, अपना ख्याल रखना। ओके,
4: लेकिन जिशान भाई को कहें यार कोई शो नहीं करने आए।
0: अच्छा, जिशान भाई आज प्रोग्राम करने नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं आए, ठीक है?
4: पक्के वाला पूछना है यार।
0: ओके जी, ओके,
4: गलत बात है।
0: ठीक ठीक हो गया, ओके, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए आपने। ख्वाब हसी जो आते, वैसे ये भी बड़ी जबरदस्त सी एक अटैचमेंट होती है। मैं पहले भी एक दफ़ा, बल्कि बारहा अपने प्रोग्राम में बात कहता रहता हूँ कि मनपसंद शख्स जो होता है उसके पास एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है कि वो दूर रहकर भी आपके मूड को अच्छा भी कर सकता है और आपके मूड को बुरा भी कर सकता है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि मतलब खाना नहीं खाया, क्यों भाई, किसी से नाराज़ है, मतलब ऐसे कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। मैं तो हैरान होता हूँ कि आजकल के दौर में खा ले आप भी खाना, किसी को फर्क नहीं पैंदा, तुसी भी खा लो, अल्लाह लियो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम ज्ञानी भाई, तेरे रहमान बोलना था।
0: और जी बिस्मिल्लाह करा, क्या हालत सुना?
5: अल्लाह ने शुक्र है, अल्लाह ने एहसान है।
0: तरेर साहब, टॉपिक सुनया तुसी?
5: कोशिश की।
0: चलो मैं तो दसना ना,
5: मैं सुन ला।
0: अच्छा,
5: मोबाइल कितना यूज करेंगे?
0: हाँ, कितना यूज करेंगे ये दसो ना।
5: मैं तो भाई एक अनपढ़ जो बंदा, बटन वाला मोबाइल रखा हुआ, उत्ते रबड़े चढ़िया वाइया हम, ते कहीं दी गल भी कदी सुना, दुई बार कॉल आनी, शार्ट पे चार कॉल सुनना।
0: अच्छा,
5: क्योंकि यार एक मिनट ऊ कीमती होवे जो ऊ पूरी तैयार मैं तो आप ना आना।
0: अच्छा
5: सुबह तो वेन के सुबह ने नमाज का ग्रह बजे तो सारी दिहार परेशान राना ए ओ जड़ा मिनट है वो एक एक मिनट जड़ा गिनती है सुबह तो वेन के ते शाम तक मर के मसे काम भी पूरे करने तक रोटी भी जिस टाइम से खाना तो आना उस टाइम से भी दरू शरीफ जड़ा उतर भी मेरी चल नहीं पी होनी है
0: माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये बस अल्लाह ताला की तरफों ने सारी शाबाश जी
5: 20,000 दरूद शरीफ शाम तक मुकम्मल तादाद होनी है जिसने बेच दरूद ताज भी है अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद वाला आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या गार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने बेच 1,000 बार दरूद इब्राहिमी भी है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
5: सारी तादाद जी रला के ये सारा जरा 20,000 शाम तक मतलब कि ज्यादा ही है लेकिन 20,000 पूरा करना होना शाम तक
0: त्रेड़ साहब अल्लाह ताला
5: जी
0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ
5: ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਮਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਤ ਲਗਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਨਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣਾ ਬਈ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਛੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ
0: ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ
5: ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਬਈ ਤੂੰ ਜਰਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਆਉਣਾ
0: ਗਿਣਤੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
5: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਮਲਾਇਕਤ ਯੁਸੱਲੂਨ ਅਲੈ ਨਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਖੂਬ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਭੇਜੋ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
5: ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਪੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਪੜਨਾ ਵਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਂ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ
5: ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਖੜਾ ਵਾ ਇੰਜ ਅੱਖ ਚੋ ਆਸੂ ਵਨ ਤੋਂ ਮਨ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
5: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਬੰਦਾ ਪੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਜਦਾ ਕਹੀਂ ਤੁਝੇ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਇਕਬਾਲ ਕਿ ਝੁਕਤਾ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਹੈ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
5: ਦਰੂਦ ਬੰਦਾ ਪੜਨਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਬਰਤੁਲ ਬਸ ਸਭ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲ ਨੇ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਰਫ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤ੍ਰੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ
5: ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੀ ਕੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੇ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਲੇ ਕੁੱਤੇ ਸੇ ਬੰਦਾ ਬਚਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਇਸ ਸੇ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨ ਹਾਸਤੋ ਸੇ ਬਚਾਏ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੇ ਬਚਾਏ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਾ ਦਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਹਨਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
0: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
5: ਸਭ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਸਲਾਮ
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤ੍ਰੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਕਾ ہمیشہ بہت محبت سے بہت پیار سے کالز جو ہیں دوستوں ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم کا آپ لوگ خیال رکھا کریں چونکہ ایک تو ٹائم دوسرا فارمیٹ کیا چل رہا ہوتا ہے آپ لوگ بہت سینئر لوگ ہیں کافی عرصے سے جب میں کوآرڈینیٹر ہوا کرتا تھا تب سے آپ لوگوں کو ہم سن رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں کوشش یہ کیا کریں کہ اس کو ریلیجس سے چیز نہ ٹیگ مت کیا کریں میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی ریلیجس پروگرام کرتے ہیں اس میں ایک باقاعدہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے چیز کا آپ جب اس پروگرام میں آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے آپ حدیث یا کوئی بھی اس طرح کا ریفرنس دیتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا جو ہے وہ امیج نہیں جاتا اور میری عادت نہیں ہے کال ڈراپ کرنے کی تو میری بس ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس چیز کو تھوڑا بہت آپ پلیز فالو کیا کریں

0: ओके जी, 12:59 हो चुके हैं आपका, मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक जी, 10 चुके हाउस एट 8 से 10 कह के ना, मतलब वही जहन में रहता है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, कैसे हैं आप? ठीक
0: यूसुफ भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा आपको ये सामने वाली चेयर पे बैठ के देखा, आपके साथ प्रोग्राम्स किए, आज
1: जिंदा पाया आपने।
0: हमेशा आपको माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, लेकिन आज टेलीफोन के उस पार है। कैसे जी? आरजे मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शर्मीले आरजे हमारे।
1: जी ना, रामा तो आया ना, रामा की सलाम।
0: ना तो वापस चले जावा।
1: कैसे आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। त्रेड साहब की कॉल आपने एंजॉय की?
1: जी जी माशाल्लाह, बड़ी ही हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़े मैच्योर हमारे दोस्तर हैं, तो जो रिक्वेस्ट आपने की है बिल्कुल सेम रिक्वेस्ट है। जैसी बात है, उन्होंने अपनी बात करनी होती है और हमेशा बड़ी वैल्यूएबल उनका इनपुट होता है प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल ऐसे। अच्छा यूसुफ भाई, आज आप हमारे शो में भी आए, हमें अच्छा सा गाना भी सुनाएंगे।
1: फर्स्ट आई थिंक, मुझे लग रहा है कि मेरी फर्स्ट कॉल है किसी भी शो में।
0: मेरे ख्याल जी पहली दफा, चूंकि असली तो मिलता करते रहते हैं कि भजन कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप खैर चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ स्टूडियो में होते हैं, तो खैर एक बड़ी एक डिफरेंट वाइब होती है कि आप फोन, मैंने तो बहुत दफ़ा किया आपके प्रोग्राम में, शायद इतफाक नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रेगुलर कॉल करता रहा। अच्छा यूसुफ भाई, स्क्रीन टाइम क्या है? वैसे भी 4 बजे तक फोन तो थोड़ा बंद ही होता है, उसके बाद बताएं कि
1: स्क्रीन टाइम ऑफिस में भी होता है, वो जो ऑफिस में यूज करते हैं वो स्क्रीन टाइम में ही आता है।
0: अच्छा, तो वो
1: मोबाइल का जो टाइम है वो आई थिंक आपको मालूम ही कि आपकी भी कॉल आ जाए तो 3 घंटे बाद कहीं जाके कॉल वापस कॉल बैक करनी पड़ती है।
0: तो क्यों इतने क्यों जिंदगी मसरूफ कर रखी है आपने?
1: बस आई थिंक अकेला अब वो फील होने शुरू हो जाता है सम टाइम के, बस ठीक है, खुद के साथ ही बंदा बिजी रहे तो बेहतर है।
0: अच्छा,
1: है कि आप किसी से टाइम मांगते रहे या किसी से आप कुछ पल के लिए भी जो है वो तवज्जो के, वो कौन से बेहतर है कि आप अपने साथ ही बिजी रहे।
0: ठीक हो गया जी, बड़ी गहरी बातें करते हैं आप ऐसे।
1: हाँ, वो तो खोरी का कोर्स किया।
0: वो तो खोरी का आपने कोर्स किया, ठीक हो गया। अच्छा शायद कुछ प्यारा सा कुछ हमें कुछ सुना दें, अगर आप आज आए गए तो।
1: इस टाइम अभी रिसेंट वैक्सीनेशन हुई है तो गला बिल्कुल अभी जो है ना इजाजत नहीं रहा, कल अपना शो है इंशाल्लाह उसमें भी।
0: लंपी स्किन की वैक्सीन तो नहीं करा बैठे हो?
1: नहीं नहीं नहीं, कुछ एक शेर तो आ रहा था जहन में, अब आपने बात की वो भी भूल गया।
0: नहीं नहीं, आप याद कर लें, एक बड़ी प्यारी सी लाइन आपने मुझे भी भेजी है, वो भी आप अगर अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़ के सुना।
1: वो एक शेर था, है तो फारसी में, उसको उर्दू में भी मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ कि गाफिल दे दिया दिल हमने अपना तुम्हारे हाथों में, हमें याद रहा और तुम भूल गए।
0: हमें याद रहा और तुम भूल गए, क्या बात। वो एक शेर इस तरह भी है ना कि तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, हमें याद है जरा
1: याद है जरा जरा,
0: क्या बात है यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया। और कुछ ऐड करना चाहेंगे यूसुफ भाई?
1: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और एक आपको ऑर्डर किया हुआ है, रिक्वेस्ट हम नहीं करेंगे, ऑर्डर आपको किया हुआ है, बस वो
0: मैं चेक करता हूँ। आपको पता है इस मामले में भाई आपका बहुत मासूम है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 2:15 तक, 1:45 से ऑनवर्ड हम शायरी सुनते हैं। आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया जो आप लोग फीडबैक देते हैं। और मेरे जहन में आज एक और चीज़ भी आ रही थी कि आप तमाम दोस्तों से ना कारोबार के हवाले से भी कोई बात की जाए कि कम पैसों में कारोबार के क्या आइडियाज़ हैं जो आजकल आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सैलरी से आपका गुजारा नहीं चल सकता। सैलरी जो है वो आने से पहले आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है, और आजकल जो प्राइवेट सेक्टर का जो हाल है वो आप बयान नहीं कर सकते। फौरन से आपको कह दिया जाता है जी आज आपका लास्ट डे है या महीने बाद आपका लास्ट डे है, तो अल्लाह ताला किसी पे ऐसा वक्त ना लाए किसी को फौरन से जॉब जो है, चूँकि आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामलात चल रहे होते हैं वो आपके नौकरी से रिलेटेड ही होते हैं। आपकी अच्छी जॉब है तो आपके सारे ज़िंदगी के मामलात अच्छे चल रहे होते हैं, और आजकल जो महंगाई का दौर है वो आप सबके सामने ही है। पहले भी हमने पेट्रोल के हवाले से बात की है, और अब अगर आप वन टाइम घर से बाहर जाते हैं, आप अगर आप माशाल्लाह कोई हमसफ़र आपके साथ है तो एक दफ़ा का खाना ही आपको 4-5 हज़ार रुपये का पड़ जाता है, जो कि महीने में वन टाइम ही आप जो है वो एफर्ट करके उसको कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होती हैं। तो इसलिए अपनी इनकम के ज़राए जो हैं वो उसमें इजाफा करना चाहिए। कहना बहुत आसान है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अपनी इनकम के ज़राए बढ़ा दें, इजाफा करें, आप भी समझ नहीं आती कि कैसे बढ़ा देने। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। बंदा ना चीज़ को कहते हैं जी गज़नफ़र महमूद कियानी, हफ्ते में 3 दिन आपसे मुलाकात रहती है। आरजे गज़नफ़र कियानी के नाम से एक पेज है, उसको आप फॉलो कर दें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उसको थोड़ा सा एक्टिव करेंगे, एक दौर में बहुत एक्टिव था, अब थोड़ा सा उसको दोबारा जगाएंगे। ये ट्रैक आप सुने थोड़ा सा पुराना है, कोई गागर की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी गागर से पानी पिया था। और मीनवाइल एक चीज़ हमने और भी सर्च करनी है, साथ रहेगा।

0: ओके जी, वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं तमाम दोस्तों को। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात आपसे कही थी, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, उनके मैसेजेस भी ऑन एयर करना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है। क्या आप क्या कहें, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे आरजे और बहुत अच्छे अदाकार भी, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा है और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, पर्सनैलिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है, लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट 3-4 वो बोल लेते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंको, पश्तो, जिस महफिल में बैठते हैं बंदा कहता है कि ये यहीं के हैं। आरजे अदील खान इनका नाम है जी, और वो 89.4 पे प्रोग्राम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका प्रोग्राम होता है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत भारी और बहुत बेसी वॉइस उनको दी है, और कहीं गलती से उन्होंने ट्यून किया और उस वक्त हम कारोबार के हवाले से बात कर रहे थे, एक लाइन जो उन्होंने लिखी वो तो मैं उन्हें नहीं बता सकता। सेकेंडली उन्होंने कहा कि होल सेल का काम कर लेना चाहिए। अदील भाई, बहुत शुक्रिया आपका, होल सेल के हवाले से बताइएगा कि क्या होल सेल करना चाहिए, मतलब की शेयर ख़रीद के की बेचनी चाहिए, ये आपने लाजमी बताना है। अदील भाई बहुत शुक्रिया, आपने 101 ट्यून किया, इस तरह का हमारा एक प्रोमो भी है, उसमें भी हम ये कहते हैं कि शुक्रिया आपने 101 ट्यून किया। तो अदील भाई बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, अपना बहुत प्यारा सा नाम तो बता दे।
1: सर मेरा नाम उस्मान है और एबटाबाद से आपको सुन भी रहा हूँ सर।
0: अरे क्या बात है, एबटाबाद से उस्मान भाई आपने कॉल की है, क्या कहना चाहेंगे, स्क्रीन टाइम क्या है आपके उस्मान भाई, कितना फोन यूज करते हैं आप?
1: सर आप यकीन जाने के ये इस कोशिश में लगा हूँ आजकल की, यार ये स्क्रीन टाइम कम करके किताब का टाइम ज्यादा कर,
0: अरे
1: हो नहीं पा रहा।
0: क्या बात है, किताब का टाइम, ये वैसे बहुत गोल्डन टाइम था वो बुक्स वाला, अभी भी वैसे अगर आप देखें ना यूके, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पे भी लोग ट्रेन में या मेट्रो पे जब सफ़र कर रहे होते हैं बुक्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पे फोन इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है सर, इवन हम ड्यूरिंग जो है वो सर बस में, गाड़ी में सफर कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये भी एहसास नहीं करते साथ जो बंदा बैठा हुआ है वही वो डिस्टर्ब हो रहा होगा या कुछ होगा, ऊंची आवाज में गाने लगे होते हैं या कुछ ना। एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा, हुए इस तरीके से, एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे, अक्सर आपको पता है सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, वो सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, साथ एक अंकल बैठे हुए थे ना,
0: एक
1: बार कॉल ही करते हैं हेलो, फिर उस बंदे को आवाज अंकल की नहीं जा रही थी, फिर कहते हैं हेलो, फिर उन्होंने बहुत ऊंचा किया ना हेलो, मैंने बोला अंकल जी थोड़ा सा और ऊंची कर देते आवाज, तो डायरेक्ट उस शहर उस बंदे तक आती आवाज चली जानी थी,
0: डायरेक्ट पहुंच जानी थी, है ना।
1: बिल्कुल ऐसे ही है सर। सबसे पहले तो बहुत ग्रेट प्रोग्राम आपका, और बिग फैन ऑफ यू, इवन मे बी एक जो है वो वाबस्तगी है रेडियो से मेरी भी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, इवन मैं छोटा था कुछ टाइम पहले, अभी भी छोटा ही हूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही है, तो मैं हाउस एट आपका जो प्रोग्राम है,
0: अच्छा, अच्छा।
1: जो स्पोर्ट्स का होता है, सुना करता था, इतने शौक से आप इमेजिन नहीं कर सकते।
0: क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और अपनी फील्ड में आपको कामयाब करें, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है?
1: आमीन सर, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अदील भाई इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, अदील भाई बहुत शुक्रिया, ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा, ज़्यादातर आपको मतलब बाइक पे ही दूर दराज इलाकों में जाते हुए देखा है, और माशाल्लाह आपने गाड़ी भी ली है, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और घूमते फिरते रहते हैं माशाल्लाह, बहुत लाइवली, हेल्दी और बहुत स्माइली फेस है आपका, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। तो ये दोस्तों कुछ है जुले हो, नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी, है कॉल जड़ी है ना साड़ी, अस्सलाम वालेकुम जी, नजर लगी है जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल, कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक सर।
0: प्यारा सा नाम तो बताएं दोस्त।
2: नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा सा,
0: नेटवर्क का
2: इशू,
0: अच्छा नेटवर्क का इशू आ रहा है,
2: अब ठीक है, अब ठीक आ रही है
0: बात, अच्छा अब ठीक आ रही है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे मेरे दोस्त?
2: टॉपिक के बारे में, मैं शो पूरा सुना है आपका शुरू से लेके ना,
0: अच्छा
2: अभी तक सुन रहा था, काफी मतलब बीच में अच्छे लोग भी हैं, तो वैसे सारे अच्छे थे ओवरऑल, तो सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्क्रीन टाइम है ना, मैं वो बहुत यूज करता था,
0: अब कम कर दिए,
2: तो मेरा 37-37 घंटे लगातार भी मैंने यूज किया है।
0: मैं वही पूछ रहा हूँ, ब्याह तो नहीं हो गया थोड़ा?
2: ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ठीक हो गया, ठीक है, चले मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखना मैं, ठीक है।
2: अच्छा सर
0: जी,
2: रिक्वेस्ट है ना
0: जी,
2: ये जो आप 12:30 लगाया था ना ट्रैक सॉन्ग इंग्लिश वाला,
0: हाँ हाँ,
2: इसको मैं कहता हूँ अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बना लें।
0: चलो मैं थोड़ी देर तक प्ले करता हूँ उस पे, ब्रोकन एंजल का वो एक।
2: नहीं, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये रेगुलर बना लें आप, इसको बैक पे अपने चलाया करें जब गुफ्तगु करते हैं ना,
0: डन हो गया,
2: तो आप बैक पे लगा दें।
0: ठीक है, बैक दिला देते, ठीक है, बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक
0: यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी। आदिल भाई तरलाई, अगर आप खन्ना पुल वाली साइड से जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये पार्क रोड पे जो एक पुल बन रहा है, अल्लाह करे जल्दी मुकम्मल हो जाए, चूंकि ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा का अर्सा हो चुका है, बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन इन 6-7 महीनों में जो अजियत देखी है ये पार्क सिटी, तरलाई, तरामड़ी, अलीपुर जाने वाले लोगों ने, अल्लाह जानता है कि बहुत मुश्किल जो है वो सिनेरियो देखा, अभी भी प्रॉपर मुकम्मल नहीं हो सका, तो ये जब बन जाएगा ये फ्लाईओवर, फिर इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। 1:13 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। हमारे साथ डॉक्टर आयशा ने मैसेज किया है, आप कहती हैं कि वो जो आपने दुश्मन और दोस्त वाली बात की थी वो काफ़ी ज़्यादा, देखें जी इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपका बेहतरीन दोस्त होता है, खुदा ना ख्वास्ता अगर आपके उसके साथ मामलात ख़राब हो जाते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है आपके लिए, बजाय इसके कि एक बंदे को आप जानते नहीं हैं और उससे आपके किसी किस्म के मामलात ख़राब होते हैं। और इसी हवाले से ये चीज़ें सोशल मीडिया का जब से फैलाव ज़्यादा हुआ है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी मिलती है और बहुत ज़्यादा आप हैरानकुन चीज़ें भी देखते हैं, कि आपने बारहा ऐसे देखा होगा कि किसी भी रीज़न की वजह से दो ख़ानदान या दो फैमिलीज या दो लोग जब अलग होते हैं, ज़्यादातर डिस्कशन उन्हीं की होती है कि जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, जिनको पब्लिक फिगर कहा जाता है, जो लोग एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस, या इसके अलावा सिंगर या बहुत मशहूर लोग होते हैं, उनकी जब सेपरेशन होती है तो आपने बाद में इल्ज़ामात की एक बौछाड़ देखते हैं दोनों तरफ से, तो पर्दे के हवाले से सख्त अहकामात हैं कि मतलब पर्दा रखना चाहिए, और जब इस तरह के रिलेशन आपके ख़त्म हो तो उस पे पर्दा ही रखना चाहिए, एक दूसरे के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। और ये जो हमारे यंग जनरेशन, या मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग भी हैं, जब वो उनके इंटरव्यूज़ करते हैं तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन, खाली व्यूज़ के लिए इसकी बहुत एहतियात करनी चाहिए, चूँकि छोटी सी दुनिया है जी, मोड़ फिर के ना मामलात काफ़ी ख़राब होते हैं। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ले केड़े पास से टुर पे, आपकी कॉल मिल जाती है भाईजान, ध्यान किया करें इधर। अस्सलाम वालेकुम,
3: वालेकुम सलाम,
0: क्या हाल है आपका
3: बेटा, क्या हाल है, ठीक है आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
3: मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैं एक बात कहना चाहती हूँ।
0: जी जी,
3: मैं एक बात कहना चाहती हूँ।
0: जी जी, कहें कहें।
3: अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सब बहन भाई भी लड़ सकते हैं, मियाँ बीवी माँ बाप के साथ भी बात हो जाती है, अगर बंदे को ना ये इस तरह लंबी बात नहीं करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए बात।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात।
3: ये जो झगड़ोली लोग होते हैं, कोई पसूरी लोग होते हैं, घर में एक बंदा जरूर है,
0: पसूरी पाना लेक बंदा लाजमी होता है,
3: बात खत्म नहीं करने देते हैं, ये बात खत्म करनी चाहिए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात,
3: कभी भी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात की आपने,
3: बात को खत्म कर दें, गुस्सा खत्म कर दें, गुस्सा आए भी बर्दाश्त कर लें, बात को बढ़ाए ना। अच्छा इंसान वही होता है जो बात को बढ़ाए ना, बात को खत्म करे।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही
3: है बेटा। और दूसरी बात, आपने खुद ही आज कह दिया कि कोई पुराने नगमे पुराने गाने आपको सुनाएंगे, ये जो आपने आज जो लगाया हुआ है म्यूजिक, ये तो हमारी समझ से बाहर है।
0: नहीं, थोड़ी देर पहले वो गागर वाला मैंने चलाया था,
3: मैं
0: लाजमी
3: हमारे जमाने का कोई म्यूजिक लगाया करें, हम सुनते हैं सारी रात जागते रहते हैं।
0: चल
3: तो बहुत अच्छी मैं सुनती हूँ, ये जो मैं बार बार मैं काले करती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ मेरा सारा शो खराब करते हैं ये यार।
0: अच्छा चले तो आपके लिए हम ना अच्छे अच्छे गाने लेके आया करेंगे, ठीक है?
3: ठीक है बेटा, जरा पुराने भी लगा।
0: लेकिन आपको आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने बहुत अच्छा म्यूजिक भी सुनना है, पुराना नया मिक्स, पुराने खास कर और बहुत अच्छी आवाज में भी, तो कल रात 10 बजे वाला प्रोग्राम आपने जरूर सुनना है, वो मेरे भाई हैं यूसुफ भाई, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है,
3: सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूं बेटा।
0: यूसुफ भाई का सुना आपने?
3: सुनती हूं सारे प्रोग्राम, सुनती हूं, मेरी आदत बन गई है ना, मैं क्या करूं।
0: चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना आपने, ठीक है?
3: ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है, कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कैन साहब आप खुश हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, सेहत ठीक है आपकी?
4: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
0: क्या कहना चाहेंगे भैया?
4: सर मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ डेली, मेरी ड्यूटी है इधर अपना रहमान इनक्लेव में, सिक्योरिटी गार्ड।
0: अच्छा अच्छा, मैं बर्मे से थोड़ा सा आ गया जो?
4: जी हाँ, बर्मे के साथ।
0: अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात, ठीक है सर, क्या जी कहना चाहेंगे?
4: जी सर,
0: मैंने कहा आप स्क्रीन टाइम फोन, मतलब जाहिर बात है आप रात को थोड़ी ड्यूटी मुश्किल होती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सर, स्क्रीन मेरे पास था, मोबाइल मैंने वो इसी वजह से बेच दिया, क्योंकि मैं जब सोता हूँ तो वो फोन जो है ना बच्चे यूज करते थे और सारा दिन फोन की वजह लड़ते रहते थे।
0: अच्छा अच्छा,
4: और जो हम चलाते थे रात को फोन तो 2-3 बज जाते थे, इस वजह से जो ना फजर की नमाज हमसे जो है ना निकल जाती थी।
0: ठीक है,
4: उस वजह से मैंने फोन जो है ना वो बेच कर मैंने कीपैड सेट ले लिया अपने लिए, बस वो काफी है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब आपने वो फोन सिर्फ इस वजह से बेचा है?
4: जी हाँ सर।
0: अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, और अपना ख्याल
4: रखिए,
0: ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर इंशाल्लाह गपशप होती है, ठीक है?
4: जी जी सर,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। 051-111-000-101

दोस्तों, ये जो इस वक्त लाइन आप सुनेंगे ना, इसका मैं कह रहा था, ये इस ट्रैक के आगाज में भी थी और अब भी है, सुन साइया। और ये बड़ा जबरदस्त ट्रैक है, इसके लिरिक्स बड़े कमाल के हैं, ये सुनिएगा।

एक बजकर 33 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक 2:15 तक। 1:45 से ऑनवर्ड आप जानते हैं कि हम शायरी सुनते हैं आप तमाम दोस्तों से, और बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक उस सेगमेंट के हवाले से आया है। जैसे ही सजाद भाई जब अपने प्रोग्राम मोजा शो का आगाज़ करेंगे, देन फिर इंशाल्लाह हम उसको 2 बजे तक क्लोज़ करेंगे, चूँकि सजाद भाई का अपना ही वो सेगमेंट ही शायरी के हवाले से है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। रिसेंटली आपने सुना होगा FM मोरवन इस्लामाबाद स्टूडियो से आज मुश्तबा हैदर जो हैं वो 2 दिन प्रोग्राम आपके लिए करते हैं, जुमेरात और जुमा रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। जो लोग शायरी से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, शायरी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए वो प्रोग्राम करते हैं। और पहले बहुत दूर से आया करते थे एबटाबाद से प्रोग्राम करने के लिए, अभी रिसेंटली लास्ट में जब उनसे मुलाकात हुई तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। तो शौक़ का जिस जब कहते हैं ना कोई मोल नहीं है, तो आप अंदाज़ा करें कि वो रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो प्रोग्राम था इसके लिए वो एबटाबाद से आया करते थे, और 4 बजे प्रोग्राम करने के बाद सुबह फिर वो वापस आया करते थे अपने गांव। तो अब वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये रेडियो का जो क्रेज़ है या जो पैशन है, ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। माइक्रोफोन इस बार जब आपको यहाँ पर बैठने का मौका मिलता है, इसके बैकग्राउंड में ना बहुत एफर्ट होती है लोगों की, और अल्लाह ताला सब असाज़ा को जो भी जिस भी शख्स को यहाँ पहुँचने का मौका देना और उसके साथ मेहनत करना, उन सबको हमेशा खुश रखे। और ये बड़ी एफर्ट वाला सिलसिला रहता है, वन टाइम वन गो में, या आप कह दें कि एक हफ्ते में ये मामलात इस तरह नहीं होते, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम। और आजकल के दौर में चूँकि एक्सेस थोड़ा इजी इसलिए भी है कि आपका सेल फोन ही आपके लिए आपका टेलीविज़न भी है, आपका रेडियो भी है, आप बस जस्ट कैमरा ऑन करें और आप कुछ भी रिकॉर्ड करके अपने जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन राइट पर्सन तक, राइट जगह तक आप अगर कोई भी आपका शौक़ है, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जब बात करते हैं कि रेडियो ज्वाइन करना है, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको एक्सेस दी जाए टॉप मैनेजमेंट तक।

हमारी मैडम सदफ जो हैं वो हमेशा मौका प्रोवाइड करती हैं जो भी यंगस्टर होते हैं, और वन वन से आपने बहुत अच्छी आवाज़ें सुनी होंगी। रिसेंटली जो हमने लोग ऐड किए हैं वो हाउस एड के सेगमेंट में हैं, मॉर्निंग में भी काफ़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं, कुछ फीमेल्स ने ज्वाइन किया, कुछ मेल्स हैं, और इसी तरह हम मजीद भी इंशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ों को आपके तक पहुँचाएँगे इस माइक्रोफोन के ज़रिए। 1:36 हो चुके हैं, वक्त हमारे पास कम है, और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए वो शायरी का सेगमेंट भी हमने शुरू करना है, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें जस्ट आपने अपना नाम बताना है और आप शायरी सुनाया करें, उसमें हम बहुत ज़्यादा लंबी गपशप आपसे नहीं करते ताकि टाइम ज़ाया ना हो। हमज़ा मलिक की आवाज़ जी अल्फाज इसका टाइटल है, और जिन्होंने सजेस्ट किया है वो हमेशा बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करते हैं। दिल लगाने से डरते थे लेकिन लग गया दिल।

चला जी, 1:44 हो चुके हैं दोस्तों। अब से ऑनवर्ड जो है आप लोग जो कॉल करेंगे, आप लोगों ने शायरी के सेगमेंट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक तो हेलो हाय वाला मामला हम इसमें नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, आपने नाम बताना है और जस्ट आप पोइट्री सुनाते हैं। और ये जो टॉपिक था इसको हमने क्लोज किया, इस पर इंशाल्लाह आखिर में कुछ बात करेंगे। सेल फोन की जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आप अपने बुजुर्गों के दरमियान बैठते हैं तब भी इसका इस्तेमाल जारी रहता है और बड़ा ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है। खैर, बुज़ुर्ग भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टेलीफोन। आपके अगर बुज़ुर्गों का आपने ये जो एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके लेके दिए हुए हैं तो वो भी एडिक्ट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे बच्चे होते हैं। और वेल, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और टेक्नोलॉजी इसी तरह ही जो है वो हर घर में दाखिल होती है और इसी तरह ये निज़ाम चलता है। तो एक मज़ीद अब से जो ऑनवर्ड हम कॉल शामिल करेंगे वो आपकी वही करेंगे जो आप लोग एक सेगमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं। 0511100101 पर दोस्तों आप लोग कॉल करेंगे। इसके अलावा 0519202540 हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल करेंगे तो देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से ज्वाइन करेगा। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद की आनी, हफ्ते में 3 दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सिलसिला रहता है। आरजे गजनफर महमूद की आनी के नाम से एक पेज होगा, आरजे गजनफर की आनी के नाम से, उसको आपने फॉलो ज़रूर करना है जी।

बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम दोस्तों का 4471 facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान और आपके लाइव कॉल्स पे बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिली हैं। हम अनीला जो लाहौर से कॉल करती हैं उनको मिस किया, उन मैडम को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से वो शायरी सुनाती हैं और एक शायरी तो हम हमेशा उनसे कहते हैं कि वो अलमारी वाली आपने लाजमी सुनानी है। ऑब्वियसली हर किसी की ज़िंदगी में मसरूफियात होती हैं, कोई नहीं ज्वाइन करना कर पाता या शायद किसी मसरूफियत की वजह से वो आज उन्होंने नहीं सुनना प्रोग्राम। नज़ीर कियानी साहब आज नहीं ज्वाइन कर पाए, आज शुक्र है हमीद भाई आए, उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी सुनाई। आप लोग सब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिन दोस्तों की सालगिरह है अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखें। ये सितंबर का महीना बहुत ख़ास लोगों की इसमें सालगिरह होती है और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जो आपके दिल को अच्छे लगते हैं वैसे बहुत ख़ास होते हैं। ख़ास लोगों की कदर किया करें और उनसे मोहब्बत किया करें। और स्क्रीन टाइम के हवाले से आज प्रोग्राम के पहले हाफ में हमारा मौजू था वो यही था कि स्क्रीन टाइम देखें कुछ भी कर लें और बहुत मुश्किल है अब इस चीज़ को कम करना। और हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से कि बच्चों को फ़ोन कम देने चाहिए। एज ए पेरेंट जब आप देखेंगे ना प्रैक्ट एक तो या तो हो ना शुरू से आदत हो कि दिया ही नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। अभी जो माशाल्लाह जिनकी शादियां होंगी आगे अक्टूबर नवंबर में अल्लाह ताला उनको आगे जाके वालिदैन का रुतबा देगा, उनके लिए ये पैगाम है कि तुसी शुरू तो ही नहीं देना है। मतलब अब जो लोग पहले बच्चों को देते रहे हैं फ़ोन वो उनसे आदत छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। कम करवा सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं करवा सकते। तो नए जो कपल्स हैं उनके लिए कि वो शुरू से आदत ना बनाए बच्चों को फ़ोन देने के लिए। बाकी स्क्रीन टाइम अब जॉब्स ऐसी हैं लोगों की, ऑनलाइन रहना पड़ता है हर वक्त ऑनलाइन। कुछ लोग टीचिंग करते हैं उनका हर वक्त ऑनलाइन रहना और ये मेंटली भी स्ट्रेस वाली जॉब रहती है। लेकिन क्या करें, वही बात कि किचन चलाना है, ज़रूरियात पूरी करनी है, ज़िंदगी की भाग दौड़ में बाकियों के साथ भागना है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज फीडबैक दिया। मैं इस प्रोग्राम को इसलिए कहता हूँ कि ये फिज़िकल और मेंटल थेरेपी है कि सुकून मिलता है मुझे ख़ुद इस प्रोग्राम के बाद और जब ख़ासकर आप लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक आता है। जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात की ज़िंदगी में कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे। अल्लाह ताला से एक दुआ ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सब को इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करें, आमीन। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये कहता हूँ कि वो दौर ख़त्म हो चुका है ख़त लिखने का, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ बारहा। एक दो ख़त आए भी हैं वो मुझ तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन आप लोग ज़रूर लेटर लिखें। हम इस प्रोग्राम में जैसे ये सेगमेंट है ना 5-6 मिनट का एक सेगमेंट रख के वो भी शामिल किया करेंगे, हाथ से लिखी बातें दिल की गहराइयों से लिखी जाती हैं। तो आप लोग लाजमी ख़त लिख लीजिएगा अपने मनपसंद आरजे को। Sector G5 रेडियो पाकिस्तान FM 101 इस्लामाबाद लिख के आप आरजे का नाम लिख के भेजेंगे तो वो तक पहुंच जाएगा। और जाते जाते ये उस्ताद आसिफ मेहदी की आवाज़ में ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आप भी इमेजिन करें कि जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं या आपकी जानिब से उनको डेडिकेट हम करते हैं, एक दुआ अपने भाई के लिए ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी थर्सडे नाइट प्रोग्राम हाउस एट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आरजे गज़नफर कियानी के नाम से एक पेज है, उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। अल्लाह हाफिज़।

लेजिस्लेटिव पावर है वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या सेनेट होनी चाहिए। वहाँ के ऊपर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर या प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर,

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: Thank you.

101 FM。

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।